0: हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए, उनके सामने आइए, हमें बताइए आप कहाँ हैं, क्या करती हैं।
1: मेरा नाम टीवी भी रोहिणी है। बेसिकली मैं हैदराबाद की नेटिव हूँ और रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में। ऑल माय लाइफ, जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक तो हम लोग सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड काम कर रही थी। बाय प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉरेक्स मैनेज करती थी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, ही वाज अ डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वी लिव्ड इन पंडारा रोड। तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा ये हमारा।
0: दैट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों, आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पंडारा रोड बहुत ज्यादा हैपनिंग प्लेस है, और वहां पर रहकर हम बात करेंगे रोहिणी जी से, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया, समझा दुनिया को, जिंदगी को समझा। तो रोहिणी जी, इस प्रोग्राम के तहत हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, अपने आप को पहचानने की। तो आप मुझे थोड़ा एनलाइटन करने कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है क्या, और सबसे पहले आपको आध्यात्म के बारे में कब पता चला, किसने बताया?
1: ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे आपने इस सुंदर दिव्य दर्शन नाम से जो चैनल आप कर रहे हैं काम, इस नाम से उस पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और सुंदर तरीके से अगर बताएं तो आध्यात्म तो हर घर में, एवरीवन, एवरी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो पूजा पाठ अपने घरों में करते ही हैं। तो आस्था ही हमने समझा कि स्पिरिचुअलिटी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा शुरुआत हुआ था, आई वुड से कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि मेरी आत्मा ने या मेरे सोल ने ऐसे पेरेंट्स को चुना जो आंध्रा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं।
0: जी।
1: तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग यू नो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करना, उनको मैं बचपन से देखती रही हूँ, और मुझे लगा कि वही आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है। बट दैट इज ओनली रिचुअल दैट वी वर डूइंग इट, और आत्मा को अपने इवोल्यूशन के लिए जो चाहिए था वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर ये प्रश्न उठना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे आई हूँ, इस पृथ्वी पे आके क्या मकसद है मेरा और मुझे कहाँ जाना है
0: जी।
1: अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर उठे तो आप समझो कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हो। देयर एक्चुअली योर फर्स्ट स्टेप बिगिंस। और वो कब होता है, जनरली हम देखते हैं कि या तो मन बहुत ही खुश है या फिर बहुत ही सैड है। जैसे घर पे आपने अपने क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को, किसी को देखा, ही हैज पास्ड अवे और शी हैज पास्ड अवे, एंड यू सी द बॉडी एंड यू सी दैट ही इज नो मोर इन इट, देयर इज नो लाइफ, आत्मा कहीं चली गई। ये सिर्फ शरीर है। और वो जब देखते हैं, वो वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है अंदर कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है।
0: जी।
1: तो ये वाला जो प्रश्न आपने बोला मेरे स्पिरिचुअलिटी का कब शुरू हुआ, तो ये तो मेरे को लगता है कि 35-36 years old जब मैं हो गई, I lost my mother when I was 34. उसके बाद से ये डीपर सर्च जो है, ये हमारा जर्नी इस सर्च पे शुरू हुआ।
0: ओके,
1: सो दिस इज व्हाट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी।
0: जी।
1: तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को समझ

0: जो मुझे समझ में आया अभी तक, तो मैं ये बता सकती हूँ, आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी,
1: जी
0: और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, मुझे ये ऐसा लगता है। आई एम देयर फ्रॉम 1996 पे मैं कुछ साधना कर रही हूँ, जिससे मुझे इस बात पे कॉन्स्टेंटली विथ कमिटमेंट चलने का मौका मिला।
1: जी बहुत खूब। इसी तरीके की यात्राएं हमारे अपने जीवन में भी होंगी। आज जब रोहिणी जी ने कहा है तो हो सकता है आपको भी आपकी यात्रा याद और आ रही हो। दोस्तों चलिए उस यात्रा पर चलते हैं अपने को समझने की और इस भजन को सुनते हुए।

0: बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर बात रोहिणी जी। तो आज के प्रस्पेक्टिव में, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है, जिस वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, उस समय में और समय में बहुत फर्क आ गया है। तो आज के यूथ के लिए आपको क्या लगता है, जो आज की जनरेशन है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारे परिवार में ही लोग हैं, उनके लिए आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज में ट्रेंड फॉलो करते हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पार्टनरशिप, कपड़े और जॉब और एवरीथिंग। सो आर दे फॉलोइंग ट्रेंड ओनली, या स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी मायने है उनका?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं अपने आपको ब्लेस्ड बोल रही थी, उसी तरह से मैं तो बोलूंगी कि आज का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर रियली ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उनको ये चीज तो समझ में आ जा रही है बहुत अच्छे से कि वेल्थ एंड नेम एंड फेम इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो भी कभी भी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या परमानेंट खुशी जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको कहाँ से तलाशना है, और उस परमानेंट खुशी के लिए क्या करना है, ये नॉलेज उन लोगों में बहुत यंग उम्र में ही मिलने लग गई है। मैंने जैसे बोला कि 36 इयर्स मुझे लगे कि वहां मेरा सर्च शुरू करने के लिए, तो मेरा बेटा जो 7 साल का था, ही वॉज रियली ब्लेस्ड। उसको अनोइंगली वो दीक्षा मिली, अनोइंगली उस पाथ को चुनने का मौका मिला, एंड देन ही कुड गो मूव फॉरवर्ड। उसी तरह से मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त किया, देन माय पैशन, इट वाज माय पैशन टू टेक अलोंग पीपल ऑन दिस पाथ, हैंड होल्ड करके लोगों को, जिसको भी इंटरेस्ट है अपने आत्मज्ञान के रास्ते पे चलने का, उसका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाने का मेरा पैशन रहा है। हीलिंग वाज माय पैशन। पहले मैं बीमार थी, उसमें से मैंने अपने आप को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इस जर्नी पे चलती रही, और चलते चलते जितने लोगों को पॉसिबल है, जितने लोगों को चाहिए, इच्छा है, उन लोगों का हाथ होल्ड करके मैं आगे लेके चलना ही मेरा मकसद बना लिया अपने जीवन का
0: जी।
1: तो इसमें मैंने पाया है कि 8 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक तब को मैं इस रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ। आई फैसिलिटेट द कोर्सेस फॉर देम। तो वो कोर्सेस के माध्यम से उनको अनोइंगली नोइंगली वो कौन है ये जानने का मौका मिल जाता है। और जो अल्टीमेट चीज है, हम इस पृथ्वी पे आए क्यों, क्या करना चाहते हैं, उसके रास्ते पे उनको ले जाना शुरू कर देती हूँ। तो आई फील दैट यंगर जनरेशन इज रियली ब्लेस्ड। और मैं देखती हूँ कितने यंगस्टर्स हैं जो एक बार इस रास्ते पे एक चख लेते ना, जैसे कि आंखें बंद किया और आपने ध्यान अपने सांस पे लेके गए, सी हु यू आर, आपको समझ में आना लगता है।
0: Wow.
1: और आज के डेट में बच्चे से लेके बड़े तक सारे स्ट्रेस में ही है, और जैसे स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ भी रास्ता अगर थोड़ा सा भी उनको चखा दो तो दे आर गोइंग डीपली इनटू इट। तो आई वुड से कि इवन इफ दे आर फॉलोइंग ए ट्रेंड, इट नेवर माइंड, बट वो रास्ते पे चल पड़े ना
0: जी।
1: और वो जो चलना शुरू करते हैं, फिर उनको और कुछ चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ इस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। So they are enjoying that ultimate bliss and परमानंद जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। तो उससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं हमें।
0: बहुत सुंदर विचार करने वाली बात है, और हमें विश्वास कई बार हो जाता है कि हम यूथ से या आज की जनरेशन से थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबली हम चाहते हैं कि वो हमारी तरीके की जिंदगी जिए, लेकिन उनको भी पूरा हक है अपने तरीके से जीने का। तो रोहिणी जी ने बहुत प्यारे ढंग से हमें क्लैरिफाई किया, समझाया है। आइए विचार करते हुए इस भजन को सुने और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत सुंदर। और जाहिर से बात है रोहिणी जी, जैसे जैसे हमने पिछले सवाल में थोड़ा सा डिस्कशन किया और आपने हमें बताया, हमको समझ में आई बात। और आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी है हम पर, हम लगातार कोशिश में लगे हैं कि वो हमारे मतलब हमको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया से, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा पूछा। सोशल मीडिया समझिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जो इतने फास्ट इम्प्रूव हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, सोशल मीडिया क्या, ये सब चीजों की वजह से तो हमें कोने कोने में बैठे हुए भी कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो तो हमें बहुत जल्दी से पता चल जाता है, isn't it?
0: जी।
1: तो अब इसके दोनों एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पुराने जमाने में टीवी चलती थी तो लोग, सिर्फ एक टीवी थी और कुछ थी नहीं, तो लोग उसमें ग्लूड हो जाते थे, बट देन देयर वाज अ टाइम कि दे वर फेड अप ऑफ दैट, दे कुड कम आउट ऑफ इट। सिमिलरली ये भी आप मानिए, सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फेसबुक है, लोग उसमें गुम हो जाते हैं। हाँ, उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं, वो खुद अपने विजडम से उनको ये यू नो दे नीड टू हैव देयर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बात सच्ची है कौन सी बात झूठी है, इतना तो विजडम उनमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। और वो मीडिया के वजह से वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, ये भी बहुत जरूरी है। बट ऑल सेड एंड डन, सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड एंड इज गुड। इट्स गुड दैट सोशल मीडिया के वजह से काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जिन जिनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वो यहाँ टटोलते टटोलते बाई चांस एक्सीडेंटली भी अगर उसमें कहीं देख लेते हैं एंड देयर उनका इंटरेस्ट जग जाता है, तो इट कैन कॉज एन अवेकनिंग इन देम। सो यू कैन टेक इट इन बोथ वेज।
0: जी,
1: सोशल मीडिया कैन इम्पैक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और बहुत ही अच्छे वैल्यूज के साथ में सोशल मीडिया को अगर लेके चले तो इट विल हैव वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन इवन स्पिरिचुअलिटी एंड द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं।
0: आई गेट इट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात बार बार कही जा रही है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड, हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना होगा। इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि हम अपना नुकसान कर बैठे, लेकिन सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए विचार करते हुए, ये एक थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है सोशल मीडिया को यूज करने का, विचार कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए।

0: रोहिणी जी, बात स्पिरिचुअलिटी की हो, आध्यात्म की हो, तो एक टर्म और है जो पीछे नहीं रह सकता, वो है रिलीजन। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन आध्यात्म और धर्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, हमें बताइए ना, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग है?
1: धर्म तो वो हुआ जिसमें आप लोग पर्टिकुलर रिलीजन से आप पैदा हुए हो, उसी रिलीजन में जहाँ पे आपके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप आपके आत्मा ने उन पेरेंट्स को चुना और इस रिलीजन को चुना, आप पैदा हुए और उसमें चल रहे हो, एक आस्था के साथ चल रहे हो, दैट इज अ रिलीजन। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द रिलीजन। आप अगर एक बनाना लोगे, बनाना का जो छिलका है वो समझिए कि वो रिलीजन है, और बनाना जो है वो है स्पिरिचुअलिटी है। वेरी सिंपल एग्जांपल अगर बोलो तो।
0: जी जी जी जी, जी.
1: तो हम लोग क्या कहाँ फंस गए, हम लोग सारे अपने अपने रिलीजन के, मतलब बनाना के छिलके में फंसे हुए हैं। बनाना को टेस्ट करना और बनाना को एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। जो बंदा स्पिरिचुअल होता है, आई मीन स्पिरिचुअल पाथ में जो चल पड़ता है, उसको ही इज एबल टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड and he understands the true being of love. You are made up of love and you are love. To wo ek experience hai, spirituality is an experience, I would say.
0: Ji.
1: Aur wo experience aapko itna mature kar deta hai ki aap har kisi mein positive cheez hi dekh sakoge aur prem se duniya ko connect kar sakoge, kyunki whole world, this whole world is nothing but the consciousness of pure love. और आप कण कण से आप जुड़ सकते हो with this experience of love. The whole universe is made up of love. तो ये हमें उस तरह से कनेक्ट कर सकता है, और स्पिरिचुअलिटी इज दैट, आई वुड से। और रिलीजन में तो वो बात वहां से कुछ और में चली जाती है ना। तो रिलीजन इज फर्स्ट स्टेप, यू कैन से एटलीस्ट रिलीजन, एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को मानते हैं, कुछ आस्था है, कहीं पे श्रद्धा भक्ति बनी हुई है उनके अपने ही तरीके से, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। तो ये तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप इसको आगे मिला के ले जा सकते हो।
0: आई गेट यू पॉइंट। दोस्तों, अगेन बहुत ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये हल्का फुल्का विषय वैसे भी है नहीं, क्योंकि जब ये पूरी जिंदगी को बदल के रख देने की ताकत रखता है तो गहराई से विचार तो दोस्तों करना होगा ना। चलिए एक प्यारे से भजन को सुनते हुए विचार करते हैं, मेडिटेट करते हैं।

0: बहुत सुंदर। अब एक शब्द मुंह से निकल गया मैम, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल, जैसे आपने मेडिटेशन बोला तो वाह बोला
0: जी। सो क्या अध्यात्म में मेडिटेशन का रोल है, किस तरह से है? अगर है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं मेडिटेशन को? मतलब इसका मतलब हुआ ध्यान। तो मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल रही है ध्यान का मतलब क्या है मैम, और क्या अध्यात्म में ध्यान अगर हम यूज करें तो कुछ ज्यादा फायदा है, मतलब व्हाट इज द यूसेज?
1: बिल्कुल सही बोला आपने। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो सदियों पुरानी हमारे जो संस्कृति है भारत की, हजारों साल से लोग मेडिटेट करते रहे हैं। ऋषि मुनिया जो जो हमारे गैंजेस के बैंक्स के ऊपर बैठ के करते रहे हैं, दैट इज अ टेक्निक कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट लेटिंग गो, जस्ट लेट गो ऑफ योरसेल्फ। आपके क्रेविंग्स या अवर्शंस को लेट गो करना ही है और कुछ नहीं है। इट इज वेरी सिंपल टू लेट गो, और वो ही हम कर नहीं पाते हैं। जैसा ही हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस बनती है। वेरी सिंपली आई वुड से पास्ट क्या है? पास्ट तो चला गया, क्या आप उसको लेके आ सकते हो? क्या नहीं ला सकते? और फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हो आगे क्या होने वाला है?
0: कुछ नहीं पता,
1: आगे का भी हमें पता नहीं। बड़ी सिंपल, एक बड़ी सुंदर एक सॉन्ग है, आई रिमेम्बर, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। Isn't it?
0: Absolutely. तो
1: जो भी है वो सिर्फ यही इस पल है, और इस पल की गहराई में जाना जो है वो मेडिटेशन है। So whatever you are doing, you are fully into that, पूरे दिल जान से आप जो भी काम कर रहे हो, जब उसके अंदर आप घुस जाते हो, that is meditation. You know, fully being your 100% in that work, whatever you are doing is meditation. और इस पल को जीना वही meditation बोलते हैं।
0: जी।
1: और इसी पल के लिए very beautifully it has been said, Present is it's a gift, isn't it?
0: Correct.
1: ये Absolutely. पल जो है गिफ्ट है, वो आपके लिए प्रेजेंट है वो।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: इसको ही समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक जो हम अपने सांसों के माध्यम से मेडिटेशन के अंदर जा सकते हैं। एंड ब्रेथ इज द वन दैट कनेक्ट्स यू टू द आउटर एक्टिविटी एंड द इनर वर्ल्ड।
0: Yes.
1: आप आंखें बंद करो, और एक मिनट के लिए अगर आप आंखें बंद करें और ध्यान अपने सांस पे ले जाएंगे, जस्ट फॉर ए मिनट,
0: जी,
1: कैन यू डू दैट? आप आंखें बंद करो और ध्यान अपने सांस पे ले जाएं, धीरे से आंखें खोले, यू फील सो रिलैक्स्ड।
0: Absolutely.
1: So I can make you meditate just for 10 minutes and you can experience and let me know how you feel it.
0: Of course.
1: आपना रास्ता जो है, बोलते ना ब्रह्म ज्ञान खुद के अंदर है, ब्रह्मा जी ने अपने अंदर ही दबा दिया है। It is everything is inside you and you are as a human being searching outside everything. तो वापस अपने घर का रास्ता, मतलब ये मान के चलो कि मेरा जो मकसद बना है आपको आपसे पहचान कराना, यू नो, खुद से खुद का जो मिलन है
0: जी,
1: वही है रास्ता अपने आप अंदर ले जाने वाला, और जो आपको आपके हु यू आर पे ले जाता है, आप समझ पाओगे। दैट इज इट,
0: आई गेट यू।
1: अल्टीमेटली बस अपने अंदर ही जाना है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया से हमने अपने आप को समेट के अंदर ले जाना सीखना है।
0: Correct.
1: और इसके लिए अगर आपके लाइफ में कोई भी गुरु अगर मिल जाता है, गुरु मीन्स एनी वन हु कैन गाइड यू with confidence into that direction. गुरु इज नथिंग लाइक आपके कमरे के बाहर रोशनी है, धूप है, आपके कमरे के अंदर धूप आने के लिए आपको खिड़की खोलना पड़ेगा ना.
0: एब्सोल्युटली.
1: तब खिड़की से रोशनी आ सकती है, धूप अंदर आ सकता है. तो गुरु इज द वन हु इज ब्रिंगिंग लाइट इन टू योर लाइफ. यू हैव टू डू एवरीथिंग इज जस्ट लाइक यू नो, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, रेलिंग का सपोर्ट हो तो आप बहुत आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो.
0: जी.
1: अगर रेलिंग नहीं है तो आपको ऊपर चढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है. सो गुरु कैन मेक योर लाइफ वेरी वंडरफुल एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन विच यू कॉल इट द स्पिरिचुअलिटी, टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. तो ब्लेस्ड आई एम. मुझे भी टाइम लगा था एक गुरु मेरे जीवन में आने के लिए, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज ब्लॉक्ड. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी पूजा पाठ करने वाले थे, तो मुझे तो लगा कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं अपने आप जो कर रही हूँ दिस इज द ओनली वे करके. बट वेन आई रियलाइज, जब मेरे लाइफ में एक गुरु आए, एक पहला अपना तबीयत बिगड़ गया था जिसके वजह से मैं डेथ बेड पे जाके आई थी. As I told you, I lost my mother when I was 34, and I myself went into death bed when I was 35. जब वहां से लौट के आई तो बोलते ना, एक रात के अंधेरे में जब आप चले जाते हो तो सुबह तो एकदम immediately after that is सवेरा only.
0: Correct.
1: Midnight के बाद में तो सवेरा आने वाला है. So I had gone to that lowest ebb, and then when I came out, I could see the sun. I could see the light in my life, and that was the path that I kept holding on to. And commitment ke saath mein wo sadhana karna bahut hi zaruri hai. Agar aapka maqsad aap apne aap ko janna chaho ki main kaun hu, main kahan se aayi hu aur main kahan ja rahi hu, to is cheez ke prashnon ka jawab ke liye to aapko sadhana commitment ke saath mein karna bahut hi zaruri hai.
0: Ji. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार किसी पर्टिकुलर इवेंट से इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर, मोटिवेट होकर और प्रोबेबली प्रेशराइज होकर कोई चीज सीख लेते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि उसके बेनिफिट्स कितने थे जो हम शायद आसानी से सीख भी सकते थे. दोस्तों आज मौका है रोहिणी जी की बातें सुनकर स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का, अपने आप को पहचानने की कोशिश करने का, कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने अंदर झांक लीजिए. बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुंदर. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से भजन को सुने और फिर मैं वापस आता हूं रोहिणी जी के पास.

0: बहुत सुंदर। रोहिणी जी, आपकी सारी की सारी बातें सुनकर अगर कोई व्यक्ति ये तय करे कि अभी तक तो चलिए मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं आध्यात्मिक बनूंगा, स्पिरिचुअल बनूंगा, तो आप उसको मतलब दो तीन सिंपल, बहुत सिंपल कोई स्टेप्स बताइए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया होगा वो इंसान इस चीज के लिए, तो 1 2 3 कुछ स्टेप्स बताइए कि क्या करे वो।
1: जैसे आपने बोला कि एकदम फ्रेश बंदा है और उसने शुरू करना है कुछ आध्यात्मिक के रास्ते में
0: जी,
1: पहले उसके अंदर वो मैच्योरिटी आनी है कि हाँ मैं कौन हूँ जानना चाहते हो तो आप ये समझो कि आप इस रास्ते पे चल सकते हो।
0: Okay.
1: आप सिर्फ बॉडी हो क्या, या आपने जो भी लाइफ में एक्वायर किया है वो सारे आपके साथ शुरुआत से नहीं थे, आपने एक्वायर किया हुआ है। आर यू ओनली दैट? इज देयर एनीथिंग समथिंग बियॉन्ड दैट? आप सिर्फ खाना पीना सोना या वेल्थ एक्वायर करना, नेम फेम करना, इतना ही समझते हो क्या लाइफ, या लाइफ में कुछ और भी है, या ऐसा कोई चीज है जो परमानेंट खुशी नाम की चीज है? लाइफ इज एटर्नल बोलते हैं, क्या उस चीज को जानना चाहते हो? लाइफ इज एटर्नल कहाँ है, कैसे है? तब वो इस रास्ते पे चलने के लिए शुरू हो जाते हैं।
0: ओके,
1: अगर ये क्वेश्चंस उनके अंदर उठना शुरू हुआ तो वो समझो कि इस बात पे पैर रखने के लिए तैयार है। और यहाँ शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं, आज के डेट में लोग इतना परेशान, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है हर इंसान का, इवन छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, एवरीवन इज गोइंग इनटू स्ट्रेस। डू यू एग्री टू दैट?
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
1: तो आप पहला क्वेश्चन, आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो क्या? तो डेफिनेटली एवरीबडी वुड।

0: like to go out of stress and be happy and joyful always, come what may be the circumstances? Do you want to come back to that joyful space in you? तो अगर स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो जैसे आपने बोला है मेडिटेशन इज वन इजी वे, सहज मेडिटेशन है जो एफर्टलेसली कर सकते हैं। अब मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करना है, क्या आप आंखें बंद कर सकते हो? और कोई गाइड कर रहा हो तो उसको गाइड सुनते सुनते आप कर सकते हो कि नहीं वो देखो। वेरी सिंपली आई कैन से आई विल जस्ट गाइड यू इनटू अ मेडिटेशन जस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड सी। 10 मिनट्स क्या 5 मिनट 2 मिनट भी आप शुरुआत करते हो तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ध्यान आंखें बंद करना है और अपने सांसों पे ले जाना है। पहला ब्रेथ जो है, आप जब आए थे यहाँ पे दुनिया में पहला काम क्या किया था? पहला सांस लिया था,
1: ऑफ कोर्स।
0: और लास्ट हम क्या करते हैं बॉडी छोड़ने से पहले? लास्ट सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, सांस छोड़ी और बाहर गए। Isn't it?
1: जी।
0: So the whole life is between that first breath that you have taken and the last breath that you are going to leave. और वो बीच में जो भी गुजरा है ups and downs, वो हमारी life रही है। और ये सांस ही है, ये सांसों का डोर ही है जो आपको आपके माइंड को और आत्मा को कनेक्ट करता है। तो आपके आत्मा तक पहुंचने के लिए ये सांसों की डोर के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं।
1: Correct.
0: हम कौन हैं उसका पहचान कराने का, खुद के अंदर दिव्य दर्शन करने का मौका मिल सकता है अगर हम सांसों की रिदम के माध्यम से जाए। सो आई टीच इन फैक्ट सुदर्शन क्रिया जिसमें आपको ये मौका मिल जाता है खुद का दिव्य दर्शन प्राप्त करने का।
1: वाओ,
0: सो दैट इज
1: ब्यूटीफुल,
0: वेरी सिंपली वेरी इजीली दैट कैन बी डन विद अ ह्यूमन बीइंग। इस यू नो हम ब्रह्मास्मि तो हम सभी सुनते हैं,
1: सुनते हैं।
0: द होल वर्ल्ड इज वन, इट इज फुल ऑफ वन कॉन्शियसनेस। नो द साइंटिफिकली देखो तो पूरा दुनिया एक जनरल वाइब्रेशन ही है। हम उस वाइब्रेशन को, जनरल वाइब्रेशन को अलग महसूस करते हैं, इसलिए हमारे अंदर वी फील दैट देयर इज अ स्पेशल वाइब्रेशन इन अस। व्हेन वी लेट गो दिस स्पेशल वाइब्रेशन इन अस एंड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग वननेस विद दिस यूनिवर्सल वाइब्रेशन, तो आप ये समझो खुद का आत्मा का परमात्मा का मिलन हो चुका है और उसी पे जाना है हमें।
1: Right,
0: isn't it?
1: Absolutely. बहुत खूबसूरत,
0: एंड दैट इज पॉसिबल। बहुत ही सुंदर तरीके से सांसों के माध्यम से हम कर सकते हैं। टेकिंग अटेंशन टू योर ब्रेथ, कीप टेकिंग अटेंशन टू योर ब्रेथ कॉन्शियसली, बार बार उसको लेके आना है। हाँ, लोग समझते हैं कि मेडिटेशन मतलब थॉटलेस हो जाना, दैट इज नॉट इट। माइंड को जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट दैट रेजिस्टिंग द थॉट्स एंड यू नो जैसे आप रिजेक्ट करते हो, रेजिस्ट करते हो थॉट्स को जस्ट विद द कॉन्सेप्ट दैट मेडिटेशन मीन्स थॉटलेसनेस, वो गलत कॉन्सेप्ट है। मेडिटेशन इज नॉट बीइंग थॉटलेसनेस, मेडिटेशन इज एक्सेप्टिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग, विटनेसिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग ऑन योर माइंड। सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, थोड़ा सा हमने बस लेट गो ही करना है। जैसे ही लेट गो करते हो आप वो शांति एक्सपीरियंस करने लगते हो, स्ट्रेस आपका डिसॉल्व होने लगता है। द मिनट आपका स्ट्रेस कम हुआ यू विल फील मोर एनर्जेटिक। हमें सिर्फ एनर्जी तो चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, जो भी काम कर रहे हैं पूरा अच्छे से करने के लिए, और पूरा दिन ही हम एनर्जेटिक फील करें और किसी भी तरह के चैलेंज को हम ओवरकम कर पाए, उसके लिए जो शक्ति चाहिए मन को चाहिए माइंड को भी चाहिए, वो शक्ति आपको मेडिटेशन से और सांसों के ध्यान पे करने से आपको आ जाएगा।
1: राइट मैम। दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसा मैम ने बताया, और उसको अपनाना, उसको प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत खूब रोहिणी मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, थैंक यू सो वेरी मच। आज बहुत सारे मिथक हमारे दूर हुए हैं, बहुत कंफ्यूजन्स हमारे क्लियर हुए हैं और सिंपल रास्ते हमें मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत सारी बातें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मे योर जर्नी बी कंप्लीट एंड होल, दैट्स व्हाट आई वुड विश एवरी लिसनर। हमारे यहाँ पे जो भी आपको सुन रहा है, सब अपने अपने तरीके से, रास्ता सभी का एक ही है, हम अलग अलग रास्ते से जा भी रहे हैं, पर्पस एक ही है और जाना भी हमने एक ही जगह में दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए ही हम इस पृथ्वी पे आए हैं। बस वो अगर हमें समझ में आए तो हम बड़े आराम से निकल सकते हैं।
1: राइट मैम,
0: थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
1: थैंक यू।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: सुनते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
0: ये है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
2: कहिए कहिए,
0: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

आदमी जिसने अपनी जिंदगी किताबों को समर्पित कर दी। पद्मश्री आंके गौड़ा की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी दिन आपको अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कोई बड़ा घर खरीदेंगे, नई गाड़ी लेंगे, दुनिया घूमने निकलेंगे या फिर शॉपिंग करेंगे? अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कपड़ों पर नहीं, गाड़ियों पर भी नहीं, सोने चांदी पर भी नहीं, बल्कि किताबों पर खर्च कर दे, तो आपको अजीब लगेगा ना? लेकिन आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बनाया, ज्ञान का खजाना। और इतना बड़ा खजाना कि उसमें 1-2 हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, बल्कि 20 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख। और इस अद्भुत सपने के मालिक हैं पद्मश्री आंके गौड़ा जी। दोस्तों, हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, और आंके गौड़ा जी का सपना बचपन में ही जन्म ले चुका था। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय गांव में बड़ी लाइब्रेरीज नहीं थी, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था। आज की तरह गूगल पर भी कुछ सर्च नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था उस जमाने में। जानकारी पाने का सबसे बड़ा जरिया था किताब, और जब किसी की कमी होती है तब उस चीज की कीमत और बड़ी हो जाती है। शायद इसीलिए किताबों के प्रति उनका प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही गया। अब जरा उनकी जिंदगी की कल्पना कीजिए, वो कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, कोई फिल्म स्टार भी नहीं थे, कोई करोड़पति बिजनेसमैन भी नहीं थे, वो एक सामान्य परिवार के एक सामान्य सदस्य थे। बस कंडक्टर के रूप में उन्होंने काम किया, बाद में फैक्ट्री में भी काम किया, एक बिल्कुल आम इंसान। लेकिन दोस्तों, कई बार आम लोग भी सबसे खास काम कर जाते हैं। जब लोग अपनी सैलरी से घर के लिए चीजें खरीदते थे, तब अंकित गौड़ा जी किताबें खरीदते थे। जब लोग बोनस मिलने पर टीवी या फर्नीचर लेने का सोचते थे, तब वो किसी पुरानी किताब की दुकान ढूंढते थे। और जब लोग वीकेंड पर फिल्म देखने जाते थे, तब वो किताबों की तलाश में निकल पड़ते थे। धीरे धीरे एक किताब, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हजारों और लाखों, ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स, कुछ लोग पेंटिंग्स, लेकिन आंके गौड़ा जी ने कहानियां कलेक्ट की, विचार कलेक्ट किए, ज्ञान कलेक्ट किया और सपने कलेक्ट किए। बट सबसे खास बात क्या है जानते हैं? ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए कलेक्ट किया। समय के साथ उनका कलेक्शन इतना बड़ा हो गया कि घर की दीवारें छोटी पड़ने लग गईं, कमरे भर गए, अलमारियां भर गईं, शेल्फ्स भर गए, हर तरफ किताबें ही किताबें। ऐसा लगता था जैसे कोई घर नहीं, एक जिंदा लाइब्रेरी हो। और फिर उन्होंने बनाई एक पुस्तक माने, यानी बुक हाउस। कितना खूबसूरत नाम है ना, बुक हाउस। एक ऐसा घर जहां रहने वाले लोग कम और किताबें ज्यादा हैं। दोस्तों सोचिए एक पल के लिए, 20 लाख किताबें। अगर आप रोज भी एक किताब पढ़ें, तो पूरी लाइब्रेरी पढ़ने में आपको कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन यहां बात संख्या की नहीं है, बात है उस सोच की जिसने इतना बड़ा सपना देखा। आज जब हम मोबाइल पर 2 मिनट का वीडियो देखकर बोर हो जाते हैं, तब एक व्यक्ति ने 50 साल तक लगातार किताबें जोड़ी। आज हम नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही ध्यान भटक लेते हैं।
और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मिशन पर लगा दी। ये सच में अद्भुत है दोस्तों। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? ये लाइब्रेरी किन्हीं खास लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो बस पढ़ने से प्यार करते हैं। दोस्तों, एक किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है आप जानते हैं? वो कभी जल्दी में नहीं होती। वो आपको रुकना सिखाती है, सोचना सिखाती है, समझना सिखाती है, और सबसे जरूरी बात, वो आपको दूसरों की जिंदगी जीना सिखाती है। एक किताब पढ़कर हम किसी साइंटिस्ट के साथ चल सकते हैं, किसी राजा के दरबार में जा सकते हैं, किसी सैनिक की जंग देख सकते हैं, किसी कवि के दिल में झांक सकते हैं, और ये सब बिना घर छोड़े। आंके गौड़ा जी शायद इसी जादुई ताकत को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने किताबों को सिर्फ जमा नहीं करा, उन्हें संभाला, बचाया और लोगों तक पहुंचाया। अगर उन्होंने भी ये सोचा होता, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो शायद आज ये लाइब्रेरी होती ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक किताब से शुरुआत की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे इंसान का शौक एक पूरे समाज की संपत्ति बन गया। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा

दुनिया शायद अभी नहीं दिख रही, लेकिन जिसका काम कल हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। दोस्तों, आज के एपिसोड के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप अपनी जिंदगी में क्या कलेक्ट कर रहे हैं? पैसे, चीजें, यादें, या फिर एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी नेकी, एक ऐसा काम जो आपके बाद भी दुनिया के काम आए? सोच के देखिए, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नापी नहीं जाएगी, असली अमीरी उस विरासत से नापी जाएगी जो हम दुनिया के लिए छोड़ जाएंगे। और आंकी गोडा जी ने हमें यही सिखाया है, कभी कभी एक आदमी, एक सपना और बहुत सारी किताबें पूरी दुनिया को रोशन कर देती हैं। आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां कभी एक कहानी, कभी एक व्यक्ति और कभी बस एक किताब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देती है। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प बात के साथ। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: टीचर, लाइब्रेरी का क्या फायदा होता है? समता, वहाँ एसी होता है। टीचर, और समता, फ्री वाईफाई भी होता है। टीचर, और किताबें? समता, अच्छा वो डेकोरेशन के लिए नहीं होती क्या?

एक महान स्टोरी टेलर बनने के लिए क्या जरूरी है? कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती दोस्तों, महसूस कराई जाती हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग सी बात करना चाहती हूँ। हम सबको कहानियां पसंद है ना? बचपन में नानी की कहानियां, दादी की कहानियां, चंदा मामा की कहानियां, राजा रानी की कहानियां, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कहानियों के रूप बदलते गए, कभी वो फिल्मों में मिलने लगी, कभी किताबों में, कभी गीतों में, और कभी किसी दोस्त के साथ चाय पीते हुए। लेकिन आज का सवाल ये है कि आखिर एक अच्छा स्टोरी टेलर कौन होता है? क्या वो जो बहुत सुंदर बोलता है? क्या वो जो बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है? क्या वो जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है? या फिर कुछ और? दोस्तों, एक पुरानी पर्शियन कहावत है, अगर तुम एक सच्चे कहानी सुनने वाले बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले जिंदगी को पढ़ना होगा। कितनी खूबसूरत बात है ना ये? सिर्फ किताबों को नहीं, जिंदगी को पढ़ना होगा दोस्तों। और मुझे लगता है ये बात जितनी कहानियों पर लागू होती है, उतनी हम सब पर भी। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने कभी बारिश में भीगना ही ना हो तो वो बारिश पर कविता कैसे लिखेगा? अगर किसी ने कभी इंतजार ही ना किया हो तो वो जुदाई की कहानी कैसे सुनाएगा? अगर किसी का दिल कभी टूटा ही ना हो तो वो दर्द कैसे समझेगा? और अगर किसी ने कभी मोहब्बत ही ना की हो तो वो प्यार की कहानी कैसे लिखेगा? यही तो फर्क है जानकारी और अनुभव में। जानकारी दिमाग से आती है, अनुभव दिल से आता है, और कहानियां हमेशा दिल से पैदा होती हैं। मुझे याद है बचपन में जब दादी की कहानियां सुनती थी तो अपने पास ना कोई माइक्रोफोन होता था, ना कोई रेडियो और ना कोई स्टेज, फिर भी उनकी कहानी में इतना जादू होता था कि हम आंखें फाड़ फाड़ कर सुनते थे। कभी राजा के महल में पहुंच जाते थे, कभी जंगल में शेर के साथ घूम आते थे, कभी किसी परी के साथ आसमान में उड़ने लगते थे। और आज सोचती हूँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दादी कहानी नहीं सुना रही होती थी, वो अपनी पूरी जिंदगी में उसे मिला देती थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में कहानियां थी, उनकी आंखों में यादें थी, उनकी आवाज में अनुभव था, और वही अनुभव कहानी को जिंदा बना देता था। तो दोस्तों, एक स्टोरी टेलर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है आप जानते हैं? देखना, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखना। हम सब रोज एक ही सड़क से गुजरते हैं, एक ही बाजार देखते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन एक स्टोरी टेलर उन चीजों को ऐसे देख लेता है जो आम लोग अपनी नजर से कभी नहीं देख पाते। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रहा है, एक बुढ़े अंकल जो पार्क में अकेले बैठे हैं, एक चाय वाला जो सुबह 5 बजे लोगों की नींद खोल रहा है, एक पक्षी जो तार पर बैठकर सूरज उगता हुआ देख रहा है। हर जगह कहानियां हैं दोस्तों, बस देखने वाली नजर चाहिए। कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो फूल देखकर कहते हैं कितना सुंदर फूल है, और दूसरे वो जो फूल देखकर सोचने लगते हैं ये किस मिट्टी में उगा होगा, कितनी बार आंधी से लड़ा होगा, कितनी बार मुरझाया होगा। और फिर वही लोग कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। एक और बात जो हर स्टोरी टेलर में होती है, सुनने की कला।
आजकल सभी लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनना सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं। दोस्तों, हर किसी के पास अपनी ही कहानी है, अपनी परेशानी है, अपनी सफलता है, अपनी राय है। लेकिन जो इंसान दूसरों को ध्यान से सुनता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में बैठ जाता है। क्योंकि हर इंसान एक चलती फिरती किताब ही तो है, और हर किताब के अंदर एक नई दुनिया है। कभी रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों को देखिए। एक लड़का भाग रहा है, शायद इंटरव्यू के लिए। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है। एक जवान फौजी घर लौट रहा है। एक बुजुर्ग खिड़की के पास चुपचाप बैठे हैं। और एक स्टोरी टेलर, वो उन सबकी कहानियों को सोचने लगता है। एक महान स्टोरी टेलर के पास एक और चीज होती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उसके अंदर का बच्चा कभी बड़ा ही नहीं होता। वो हर वक्त सवाल पूछ रहा होता है, आसमान नीला क्यों है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, मोहब्बत क्यों होती है, यादें क्यों रहती हैं, लोग अलविदा कहकर भी दिल में क्यों रह जाते हैं। और दोस्तों, जितने ज्यादा सवाल उतनी गहरी कहानियां। आज के जमाने में AI कहानी लिख सकता है, कंप्यूटर कविता बना सकती है, मशीन आवाज निकाल सकती है, लेकिन एक चीज है जो सिर्फ इंसान कर सकता है, और वो है महसूस करना। मशीन को दर्द समझाया जा सकता है, लेकिन महसूस नहीं कराया जा सकता। मशीन को मोहब्बत का मतलब बताया जा सकता है, लेकिन उसकी धड़कन तेज नहीं हो सकती। इसीलिए कहानियां हमेशा इंसानों की ही रहेंगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हर इंसान कहानी सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है। कोई अपनी सफलता की, कोई अपनी हार की, कोई अपनी पहली मोहब्बत की, कोई अपने सपनों की। और शायद इसीलिए हम कहानियों से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हर कहानी में हम खुद को ही ढूंढ रहे होते हैं। कभी हीरो में, कभी विलन में, कभी माँ में, कभी दोस्त में, कभी उस मुसाफिर में जो बस 2 मिनट के लिए कहानी में आया था। और फिर मुझे लगता है, एक महान स्टोरी टेलर बनने के लिए बहुत बड़ा लेखक बनना जरूरी नहीं, बहुत बड़े बड़े शब्द आना भी जरूरी नहीं, बहुत पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं। जरूरी है तो जिंदगी को पूरे दिल से जीना, कभी किसी की मदद करना, कभी किसी के आंसू समझना, कभी किसी की खुशी में खुश हो जाना, कभी किसी के दर्द में रुक जाना, कभी सूरज उगता देखना, कभी शाम ढलती देखना, कभी बारिश की खुशबू महसूस करना, कभी बिना वजह ही मुस्कुरा देना। क्योंकि दोस्तों, कहानियां हवा में पैदा नहीं होती, वो जिंदगी की मिट्टी से उगती हैं, अनुभव के पानी से सींची जाती हैं, और संवेदना की धूप में खिलती हैं। आज के एपिसोड के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आप अपनी जिंदगी को कितने ध्यान से देख रहे हैं? क्या आप सिर्फ दिन काट रहे हैं या उन्हें जी भी रहे हैं? क्या आप सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं या उन्हें समझ भी रहे हैं? क्या आप सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं या अपनी कहानी भी कहीं ना कहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो कि आप एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन किसी दिन यही जिंदगी किसी की पसंदीदा कहानी बन जाएगी। मैं हूं तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां हर कहानी के पीछे एक दिल धड़कता है, और हर दिल के अंदर हजारों कहानियां बसती हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी, एक और मुस्कान, और एक और सोच के साथ।
तब तक के लिए जिंदगी को सिर्फ जिए मत, उसे महसूस कीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: बंता, बंता मैं स्टोरी टेलर बनना चाहता हूँ यार। बंता, अच्छा कितनी किताबें पढ़ी हैं तूने? संता, किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन कॉलोनी की सारी गॉसिप याद है मुझे।
2: What?

सिर्फ 5 मिनट, एक छोटा सा पल जो कभी पूरी जिंदगी बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटे से सवाल के साथ। आपके पास इस वक्त कितना वक्त है? 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट या फिर सिर्फ 5 मिनट? पता है, जब भी कोई हमसे पूछता है कि जिंदगी कैसी चल रही है तो अक्सर एक ही जवाब मिलता है, बस यार टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, टाइम नहीं मिलता किताब पढ़ने के लिए, टाइम नहीं मिलता मम्मी पापा के साथ बैठने के लिए, टाइम नहीं मिलता दोस्तों को फोन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, टाइम नहीं मिलता खुद के साथ बैठने के लिए। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम टाइम की कमी है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम वक्त को सिर्फ बड़े टुकड़ों में देखते हैं। हमें लगता है कि अगर 1 घंटा नहीं मिला तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर पूरा दिन खाली नहीं मिला तो सपने पूरे ही नहीं हो सकते, अगर एक लंबी छुट्टी नहीं मिली तो सुकून मिल ही नहीं सकता। लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है दोस्तों, जिंदगी बड़े घंटों में नहीं, छोटे छोटे 5 मिनट में बटी हुई है। सोचिए, एक दिन में कितनी बार 5 मिनट हमारे पास आते हैं, लिफ्ट का वेट करते हुए, ट्रैफिक सिग्नल पर, डॉक्टर की क्लिनिक में, बस स्टैंड पर, ट्रेन का इंतजार करते हुए, मीटिंग शुरू होने से पहले, खाना पकने तक, मोबाइल चार्ज होने तक और सोने से पहले। लेकिन हम उन 5 मिनट में क्या करते हैं? बस मोबाइल निकालते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, और फिर जब होश आता है तो 5 मिनट 50 मिनट बन चुके होते हैं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि मोबाइल ने हमारा वक्त नहीं चुराया, उसने हमारे 5-5 मिनट चुराए हैं, और जब वो सारे 5 मिनट जोड़े गए तो पूरा दिन गायब हो गया। एक बार एक बुजुर्ग आदमी से किसी ने पूछा, आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हो? उन्होंने कहा, मैंने कभी एक साथ 100 किताबें नहीं पढ़ी, मैंने बस रोज थोड़ा सा पढ़ा, बस इतनी सी बात, रोज थोड़ा सा, रोज 5 मिनट, रोज 10 मिनट, और धीरे धीरे एक लाइब्रेरी उनके दिमाग के अंदर बस गई। मुझे लगता है कि जिंदगी में जो भी बड़ी चीजें होती हैं वो अचानक नहीं होती। एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक नदी एक दिन में गहरी नहीं होती, एक रिश्ता भी एक दिन में मजबूत नहीं होता, और एक इंसान एक दिन में सफल बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके होता है। आपने भी देखा होगा कि हम सब बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उनके छोटे छोटे कदम नहीं देखते। एक सिंगर को स्टेज पे देखते हैं, उसकी तालियां देखते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी भी देखते हैं, लेकिन उसके रोज के रियाज के 5 मिनट नहीं देखते। एक राइटर की बेस्ट सेलर देखते हैं लेकिन उसके रोज लिखे गए छोटे छोटे पन्ने नहीं देखते। एक एथलीट का मेडल देखते हैं लेकिन उसकी रोज की प्रैक्टिस नहीं देखते। सफलता कभी एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होती दोस्तों, सफलता तो रोज के छोटे छोटे 5 मिनट का जन्मा हुआ एक बीज है। कभी सोचा है, एक 5 मिनट की कॉल कितनी कीमती हो सकती है? एक 5 मिनट की बात सालों की दूरी मिटा सकती है, एक 5 मिनट की माफी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, एक 5 मिनट का शुक्रिया किसी के दिल को खुशी से भर सकता है।
मुझे लगता है हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें फ्री नहीं होती। हवा, बारिश, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी और वक्त। लेकिन अजीब बात देखिए, जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है उसी को हम सबसे आसानी से बर्बाद कर देते हैं। एक बार एक टीचर क्लास में बड़ा सा एक शीशा लेकर आया। उन्होंने सबसे पूछा, इसमें क्या दिख रहा है? सबने कहा, हम दिख रहे हैं। टीचर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जब तक तुम सिर्फ खुद को देखोगे तब तक दुनिया छोटी लगेगी, लेकिन जब तुम खिड़की के बाहर देखना शुरू करोगे तब तुम्हें कहानियां नजर आएंगी। और दोस्तों, शायद इसीलिए हमें कभी कभी 5 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालने चाहिए। बस बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रील नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। पहले 2 मिनट अजीब लगेगा, माइंड भी भटकेगा, 3rd मिनट बेचैनी सी होगी, 4th मिनट कुछ पुरानी यादें भी आएंगी और 5वें मिनट शायद आप खुद से मिल लेंगे। हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं लेकिन खुद से डिसकनेक्टेड हैं। हम हजारों लोगों के स्टेटस देख लेते हैं लेकिन अपने दिल का स्टेटस नहीं देखते। हम सबकी लाइफ अपडेट तो जानते हैं लेकिन अपने सपनों की अपडेट नहीं जानते, और फिर कहते हैं, पता नहीं जिंदगी में क्या कमी है। कमी वक्त की नहीं, कमी उस वक्त के इस्तेमाल की होती है। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट पढ़ने लगे तो 1 साल में कितनी किताबें पढ़ लेंगे? रोज 5 मिनट वॉक करने लगे तो कितने कदम चल लेंगे? रोज 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखने लगे तो कितनी पॉजिटिविटी जमा हो जाएगी? और सिर्फ 5 मिनट किसी अपने के साथ बैठने लगे तो कितने रिश्ते मजबूत हो जाएंगे? और पता है जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? हम हमेशा फ्यूचर का इंतजार करते हैं। कल खुश होंगे, अगली सैलरी के बाद खुश होंगे, प्रमोशन के बाद खुश होंगे, रिटायरमेंट के बाद सुकून मिलेगा। लेकिन जिंदगी धीरे से कहती है, मैं तो अभी हूँ, अभी गुजर रही हूँ, मैं इस चाय की प्याली में हूँ, इस गीत में हूँ, इस मुस्कान में हूँ, इस शाम की हवा में हूँ और इस 5 मिनट में हूँ। दोस्तों, आज जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो एक एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। सिर्फ 5 मिनट खुद के मोबाइल को साइड पर रखिए, खिड़की के पास बैठिए, आसमान देखिए, पेड़ों को देखिए, लोगों को देखिए, या फिर बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए और फिर देखिए कितनी सारी कहानियां आपके आसपास मौजूद दिखेंगी। आज की बात का सार बस इतना सा है दोस्तों, जिंदगी हमें रोज 5 मिनट के रूप में मौके देती है, नए नए मौके सीखने के, मुस्कुराने के, प्यार करने के, माफ करने के और जीने के। जो इंसान इन 5 मिनट की कीमत समझ लेता है वो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की कीमत समझ लेता है। मैं हूं तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां कभी एक कहानी और कभी सिर्फ 5 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए कभी कभी 1 साल नहीं, सिर्फ 5 मिनट काफी होते हैं। याद रखिए, नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पापा, बेटा, एग्जाम में कितने नंबर आए? बेटा, बस 5 मिनट और मिल जाते ना। पापा, तो? बेटा, रिजल्ट देखने से पहले भाग जाता।

0: का।
1: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदल जाता है, और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे? तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं। जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं, विश्वास नहीं होता? चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 स्कॉर्पियन 29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पाँव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द बन।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रंजीला और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है।
1: हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं।
0: मानसिंह भी होशियार हैं, पर आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं।
1: एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मानसिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है।
0: ये आप कैसे कह सकते हैं कि मानसिंह बीरबल जितने होशियार नहीं हैं? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मानसिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए।
1: ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे, और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मानसिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे।
0: ईरान? पर क्यों?
1: उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मानसिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं, शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर। हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम आपका मान जरूर रखेंगे।
3: हमें कब निकलना होगा हुजूर?
1: हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं, शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें।
2: जैसी आपकी मर्जी जहांपनाह। आदाब हुजूर। हुजूर, मैं हूं मानसिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं।
4: हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मानसिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए हैं।

0: मुझे यकीन नहीं होता, ये नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता, हमारा गुनाह क्या है? और तुम, हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब सजा सुनाई जा रही थी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा।
1: शांत रहिए मानसिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा।
0: कुछ नहीं होगा? क्या मतलब कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, हमें कल फांसी लगने वाली है, हम कल मरने वाले हैं।
1: मानसिंह जी धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया।
0: तुम्हारा दिमाग खराब है, बादशाह ने ऐसा किस लिए किया तुम्हें इस बात की चिंता है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए।
1: मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे, पर जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए,

0: मुझे फांसी दीजिए हुजूर।
1: नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए।
0: नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाइए।
1: नहीं, मैं शहनशाह का रिश्तेदार हूँ, पहले फांसी मुझे दी जाए।
0: आप जहांपनाह के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूँ, पहले मुझे फांसी लगाई जाए।
2: आप दोनों पागल तो नहीं हो गए कि आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं?
0: डरना किस लिए हुजूर, ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं।
2: इनाम? कैसा इनाम
0: हुजूर? हमारे दरबार के राज पुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में मिलेगी वो प्रधानमंत्री।
2: ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता।
1: ये सच है हुजूर, हमारे राज पुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए। पहले मुझे फांसी पे लटका दीजिए हुजूर।
0: हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं।
2: हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं?
0: आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दें।
2: तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं, हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर झांपना के पास लौट जाएं।
1: जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आदाब जहांपना,
3: आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी यात्रा?
0: अच्छी रही हुजूर, शुक्रिया।
3: अच्छा अच्छा बीरबल,

0: हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वो पैगाम शाह ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश,
1: शाबाश बीरबल।
2: दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।
3: ला।

0: हुजूर, ईरान का एक सौदागर है जिसे कोई शिकायत है और आपसे मिलना चाहता है।
1: ठीक है मान सिंह जी, उसे इजाजत है।
2: शमशेर सिंह, दरबार में पेश हो।
3: आदाब हुजूर।
1: खुश आमदीद, सुना है आप ईरान से हमारे यहाँ आए हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा।
4: माफ कीजिएगा हुजूर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन अच्छा लगना तो दूर की बात है, मैं तो यहाँ आकर बर्बाद हो गया हूँ।
1: बर्बाद? कैसे और क्यों? कहिए क्या समस्या है?
4: हुजूर, मैं ईरान से व्यापार के लिए कुछ सामान लाया था जिनकी कीमत 500 सोने की अशर्फियाँ थी, कुछ शानदार ऊन के कपड़े और कुछ बेहतरीन कारीगरी के नमूने।
1: तो समस्या क्या है? क्या आपको अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही? वैसे हिंदुस्तानी सौदागर मोल भाव करने में माहिर होते हैं।
4: नहीं हुजूर, समस्या ये नहीं है। मैं ईरान से जब यहाँ आ रहा था, तब सफर के दौरान मैं एक हिंदुस्तानी व्यापारी से मिला। उसने मुझे अपना सामान उसके गधों पर लादने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो अपना सारा सामान बेच कर लौट रहा था।
1: ठीक है, फिर?
4: हुजूर, जब हम आगरा पहुंचे तो उसने मेरा सामान वापस करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सामान उसका है। अब मैं अपना बस बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत जो सामान है उसे बेचकर ही वापस घर लौट सकूंगा। अगर मेरा सामान ना मिला हुजूर, तो मैं अब कभी भी व्यापार नहीं कर पाऊंगा।
1: अगर आप हमसे सच कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई। पर घबराइए मत, हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताइए कौन है वो व्यापारी, आप जानते हैं वो कहाँ रहता है?
4: जी हुजूर, उसका नाम दिलावर है और मैं उसका पता जानता हूँ।
1: सिपाहियों, फौरन इस पते पर जाओ और उस दिलावर को हमारे सामने पेश करो।
2: आदाब हुजूर।
1: बताओ, क्या तुम इस आदमी को जानते हो?
2: जी हुजूर, मैं इसे जानता हूँ, ये शमशेर सिंह है, ईरान से।
1: ओ, तो तुम इसे जानते हो, बताओ तुमने इसके साथ बेईमानी क्यों की?
2: माफ कीजिएगा हुजूर, पर ये सच नहीं है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, वो सामान मेरा अपना था। जब मैं ईरान से लौट रहा था तब ये मेरे पास आया और मेरे साथ हिंदुस्तान आने की गुजारिश की, क्योंकि ये हिंदुस्तान देखना चाहता था और इसे रास्ता मालूम नहीं था। मैं वैसे भी ईरान से सामान खरीद कर लौट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं।
4: नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ है, इसके पास कोई सामान नहीं था। मुझे इसने कहा कि ये अपना सारा पैसा जुए में हार गया है और मुझे अपने गधे कम किराए में देने लगा, ये कहते हुए कि मेरी बचत हो जाएगी और इसे भी लौटने के लिए पैसे मिल जाएंगे।
2: नहीं, ये सरासर झूठ है हुजूर, मैंने सिर्फ इसे अपने साथ सफर में लिया था, सामान मेरा अपना है। जब हम आगरा पहुँचे तो ये मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये मेरे खिलाफ दरबार में झूठी शिकायत करेगा।
1: बहुत हो चुका, बस करो। शमशेर सिंह, अगर वो सारा सामान आपका है तो आप अपने सामान को पहचान पाएंगे, ठीक है? और अगर दिलावर सच बोल रहा है तो आप अपने सामान को नहीं पहचान पाएंगे।
4: जी हाँ हुजूर।
2: नहीं हुजूर।
1: क्या मतलब, तुम इन्हें अपने सामान की पहचान क्यों नहीं करने देते?
2: हुजूर, सफर के दौरान इसने मेरे सामान में काफी दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सारा सामान दिखाया था, तब तो ये आसानी से पहचान सकता है मेरे सामान को।
4: नहीं हुजूर, ये उल्टी बात कर रहा है, इसने मेरे सामान में दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सामान दिखा दिया।
2: हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, आप मेरे नौकर से भी पूछ लीजिए जो मेरे साथ था, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा।
4: नहीं नहीं हुजूर, इसका नौकर भी झूठ बोलेगा, इसने उसे भी अपनी साजिश में शामिल किया होगा। हुजूर, मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रहा हूँ, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं।
1: बीरबल, मेरे ख्याल से अब तुम ही इस समस्या को सुलझा सकते हो और असली मुजरिम की पहचान कर सकते हो।
5: जी हुजूर, मुझे यकीन है मैं असली मुजरिम को जरूर पहचान सकता हूँ।
1: तो फिर देर किस बात की है, ये मामला जल्द से जल्द सुलझाओ।
5: जी हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, एक या दो दिनों में मुजरिम आपके सामने होगा, मुझे पूरा यकीन है।
1: ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो फिर हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शमशेर सिंह, आप हमारे मेहमान रहेंगे, मगर ध्यान रहे, अगर आप मुजरिम साबित हुए तो आपको हमारे यहाँ लंबे समय तक मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, कैद खाने में।
4: मैं समझ सकता हूँ हुजूर।
1: और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है दिलावर, तुम ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता।
2: जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैंने सिर्फ सच ही कहा है।
1: बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इन दोनों में से मुजरिम कौन है ये साबित कर दिखाओगे।
5: जी हाँ, शुक्रिया जहाँपना, मुझे यकीन है कि एक या दो दिनों में मामला सुलझ जाएगा।

0: कहाँ है बीरबल? वो अब तक दरबार में नहीं पहुँचा।
1: आदाब हुजूर।
0: बीरबल, कहाँ थे तुम और शमशेर सिंह के मसले का क्या हल निकला? क्या तुमने मुजरिम को पहचान लिया?
1: जी हुजूर, मुझे सच्चाई मालूम हो गई है और ये साबित भी कर सकता हूँ।
0: ओह, बहुत खूब, शाबाश। तो बताओ, फौरन बताओ, कौन झूठा है?
1: जी जापना, दिलावर झूठा है और बेईमान भी, और शमशेर सिंह सच बोल रहा है।
0: दिलावर? हम तो समझे थे कि वो सच बोल रहा था। आखिरकार वो आगरे का व्यापारी है और उसकी अपनी दुकान है, तो वो क्यों बेईमानी करेगा? तुम्हें पूरा यकीन है? आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला?
1: हुजूर, कल शाम की बात है, मैं और मानसिंह जी दिलावर के दुकान पर गए। उसके नौकर को दुकान छोड़ जाते हुए देख हमने एक ढाबे तक उसका पीछा किया।
2: आइए, कहिए क्या खाएंगे आप? काफी लंबा सफर करके आए हैं। आगरा पहली बार आए हैं क्या आप?
1: जी, मैं जयपुर का एक व्यापारी हूँ। दरअसल हम यहाँ कुछ ईरानी कारीगरी का सामान खरीदने आए हैं, वापस जयपुर ले जाकर बेचने के लिए। क्या आप बता सकते हैं हमें ये कहाँ मिल सकता है?
3: माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने दरअसल आप लोगों को ईरानी सामान के बारे में कुछ पूछते हुए सुना।
1: जी बिल्कुल, क्या आप हमें ऐसी कोई जगह के बारे में बता सकते हैं?
3: मेरा नाम सुखी राम है जनाब, मैं एक बहुत अच्छे व्यापारी के साथ काम करता हूँ, उनका नाम दिलावर है। वो हाल ही में ईरान से काफी शानदार सामान लेकर लौटे हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप हमें वो सामान अभी दिखा सकते हैं?
3: हाँ जरूर जनाब, मेरे साथ चलिए। जनाब, आप थोड़ी देर यहीं रुके, अगर वो ज्यादा व्यस्त नहीं है तो मैं आपको उनसे जल्द से जल्द मिलवाता हूँ।
1: जरूर जरूर, जरा जल्दी कीजिएगा।
3: जनाब, मैं अभी अभी एक व्यापारी से मिला ढाबे पे, जो ईरानी सामान खरीदना चाहता है।
2: ओह, शाबाश, बहुत खूब, कहाँ है वो?
3: वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अंदर बुलाऊं?
2: जरूर, जल्दी आइए आइए।
1: पता चला है कि आप ईरानी सामान बेचते हैं?
2: जी जरूर, इत्तेफाक से मैं हाल ही में ईरान से खरीदी करके लौटा हूँ।
1: क्या आप हमें वो सामान दिखा सकते हैं?
2: बिल्कुल, सारा सामान लेकर आओ।
1: अच्छा, तो आप इन चीजों का क्या दाम लगाएंगे?
2: आप सारा सामान खरीद लेंगे? तब मैं सारे सामान का दाम 1000 सोने की मोहरे लगाऊंगा।
1: हम दोनों को ये नहीं लगता कि ये सामान बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, इससे भी बढ़िया सामान देखा है। हम सिर्फ इसकी आधी कीमत दे सकते हैं, सिर्फ 500 सोने की मोहरे।
2: आधी कीमत? बेहतरीन किस्म का नहीं है?
1: दरअसल मेरे दोस्त को इन चीजों में कुछ खराबी नजर आ रही है, अब हम इसके लिए सिर्फ 300 सोने की मोहरे ही देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है।
2: ठीक है, 300 मोहरे ही सही।
1: ठीक है, सौदा पक्का, हम कल सवेरे पैसों के साथ आएंगे और ये सारा सामान ले जाएंगे।
0: हम समझे नहीं बीरबल, तो इससे दिलावर झूठा कैसे साबित हुआ?
1: हुजूर, कोई सौदागर इतनी जल्दी अपने सामान की खामियां कैसे कबूल करेगा, या फिर कम कीमत लेने को इतनी जल्दी क्यों तैयार होगा? मैं तभी समझ गया कि ये सामान दिलावर का नहीं है और इसीलिए वो कोई भी कीमत लेने को तैयार था।
0: तुम ठीक कह रहे हो।
1: जब मुझे यकीन हो गया कि दिलावर झूठ बोल रहा है, हमने इसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर उससे सच्चाई उगलवाई, और अब वो दिलावर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है।
0: शमशेर सिंह और दिलावर को दरबार में पेश किया जाए। तुम्हें एक शरीफ आदमी को जिसने तुम्हारी मदद की उसे धोखा देते हुए शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हें साल भर कैद की सजा देते हैं और शमशेर सिंह को बुरी तरह परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना तुम्हें उन्हें 500 सोने की मोहरें अदा करनी पड़ेगी। सिपाहियों, दूर ले जाओ शख्स को हमारी नजरों से।
3: शुक्रिया हुजूर।
0: शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने दिलावर की बेईमानी अपने लाजवाब अंदाज में साबित की।
4: दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: चाहिए?
1: मैं गंगू, मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ।
2: लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं, उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते?
1: नहीं नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए। यह आदमी एक चोर और झूठा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें आज ये मामला सुलझाने दीजिए।
2: ठीक है ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं। आप यहीं ठहरिए।
3: हुजूर,
2: बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैंने उनसे कल दरबार में मिलने को कहा, पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं।
3: ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ।
2: अंदर आइए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे।
3: हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठहरिएगा, कौन हो सकता है ये?

0: आदाब हुजूर, आपने मुझे बुलवा दिया होता अगर कुछ काम था तो।
1: नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं।
2: आदाब बना।
1: ये कौन है बीरबल?
0: मैं खुद भी जानना चाहता था हुजूर, इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा।
1: नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ करते देखना चाहता हूँ, शुरू करो।
0: हाँ तो आप कहिए, कहिए आप दोनों कौन है और समस्या क्या है?
2: जहाँ पना, हुजूर मैं गंगू तेली हूँ, मैं तेल बेचता हूँ। मैं शहर के काफी व्यापारियों को और दुकानों में तेल बेचता हूँ। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था, ये लच्छूराम कसाई है, इसने मुझे अंदर बुलाया।
3: ए तेल वाले, इधर आओ, मुझे थोड़ा तेल दो।
2: जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको?
3: सोचने दो, मुझे एक माप दे दो।
2: जनाब ये लीजिए, 2 रुपए हुए जनाब।
3: 2 रुपए? ये तो ज्यादा है, तुम तो बेईमानी कर रहे हो।
2: जनाब तेल महंगा हो गया है, मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है। मैं आपको ठग नहीं रहा, आप किसी से भी पूछ लें।
3: खैर सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो। खैर ये लो पैसे, एक चांदी का सिक्का है, अब मुझे छुट्टे दे दो। तुम थक गए होगे सारा दिन ये बोझा उठाकर, क्यों ना अंदर हाथ धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्सी पी लो, फिर काम पर चले जाना, क्या ख्याल है?
2: अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं।
3: झूठे, ये मेरे पैसे हैं, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो।
2: तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं, अब आप ही मेरे पैसे वापस दिलवा सकते हैं।
0: तुम्हें क्या कहना है इस बारे में?
3: जनाब ये आदमी एक झूठा और चोर है, दरअसल बात कुछ ऐसी थी।
2: जनाब जनाब, क्या आपको तेल चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है।
2: जनाब आज मेरी बोनी तक नहीं हुई, एक नाप ले लीजिए मुझसे, एक नाप।
3: देखो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास 1 महीने का काफी तेल है।
2: जनाब मैं आपको छूट दूंगा, जनाब जनाब एक नाप ले लीजिए।
3: ठीक है मुझे एक माप दे दो।
2: शुक्रिया जनाब, 2 रुपए हुए इसके।
3: ठीक है, ये लो पैसे।
2: जनाब क्या मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ? सारा दिन ये थैला लटका के मैं थक गया हूँ, सिर्फ हाथ मुंह धोकर थोड़ा चुस्त होना चाहता हूँ।
3: ठीक है पर जल्दी करो, हाथ मुंह वहां धो लो। ए ये क्या कर रहे हो? रुको, चोर कहीं का, मेरे पैसे वापस करो।
2: नहीं ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा थैला है।
3: तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे पास भीख मांगने आए, मैंने मदद की, तूने ये क्या किया? मेरे पैसे चुराए?
2: तुम मुझे लूटना चाहते हो, ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
3: लोग जमा हो गए और सलाह दी कि आपके पास आए हुजूर, अब आप ही मेरी मदद करें हुजूर।
2: नहीं जनाब ये मेरे पैसे हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है।
1: ओ बीरबल, अब तुम ये समस्या कैसे सुलझाओगे? कोई गवाह भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे?
0: हुजूर इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर पर आप गलत थे, एक गवाह है इस बात का।
2: हुजूर आपकी गलत फहमी है, जब उसने पैसे लेना चाहे तब वहाँ कोई नहीं था।
0: नहीं तुम गलत हो, एक गवाह मौजूद था, वो पैसों का थैला, वो ही गवाह है।
1: बीरबल तुम ठीक तो हो? भला पैसों का एक थैला गवाह? एक थैला सच्ची बात कैसे कह सकता है?
0: हुजूर बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे यकीन है ये थैला जरूर बोलेगा।
1: कमाल है, ये तो काफी दिलचस्प होगा, जल्दी करो।
0: एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अब ये पैसों का थैला मुझे दो। हुजूर सच्चाई सामने है।
3: तेली सच बोल रहा था, ये पैसों का थैला उसी का है।
1: तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल, तुम्हें यकीन है?
3: मुझे पूरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूँ।
1: तो साबित करो।
3: हुजूर, अगर आप देखें तो पानी के ऊपर तेल की एक परत है। ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई और ये तेल सिर्फ तेली के हाथों से ही आ सकती है। जब वो थैले में सिक्के डालता था और निकालता था, सिक्कों पे तेल लगने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता।
1: शाबाश शाबाश, हमें खुश कर दिया तुमने, बड़े होशियार हो तुम, बहुत खूब।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लालची हो गया था।
1: नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें इस आदमी को वो पूरी रकम लौटानी होगी जो तुमने चुराने की कोशिश की, और इस जुर्म के लिए 1 महीने की कैद।
2: शुक्रिया जहांपना।
1: बीरबल, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं। शाबाश बीरबल, शाबाश।
3: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
4: इस साल ठंड बहुत ज्यादा है।
5: जी हाँ जहां अपना, आजकल लोग घर से बाहर निकलने से झिझकते हैं।
6: हाँ, पर लोगों को काम करना तो पड़ेगा ही, चाहे ठंड हो या ना हो।
5: वो तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ज्यादातर लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं।
6: ओह, ये पानी तो जैसे बर्फ बन गया हो। आप ठीक कह रहे हैं लाला जी, इतनी ठंड में कौन बाहर निकलेगा।
7: माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता।
6: बीरबल, आपको हर वक्त हमारे खिलाफ जाना जरूरी नहीं है।
7: माफी चाहता हूँ जहांपना, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुश्किलों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
6: आप कहना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं?
7: जी हाँ हुजूर, मैं यही कहना चाह रहा था।
6: मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए एक हद से पार नहीं जा सकता।
5: आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ।
7: जहांपना, आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो हालात की वजह से थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
6: क्यों ना तुम अपनी इस बात को साबित कर दिखाओ। क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? हम उस आदमी को इनाम में 10 सोने की अशर्फियां देंगे।
7: जी हाँ हुजूर, इतनी कम रकम के लिए भी कोई ना कोई इस काम को करने के लिए तैयार हो ही जाएगा।
5: मैं इस बात को यकीन करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। पहली बात तो कोई भी इंसान ये पता चलने के बाद कि पानी कितना ठंडा है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई मूर्ख स्वीकार कर भी ले तो सुबह तक बच नहीं पाएगा।
7: जहांपना, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसे आदमी को आज ही ढूंढ सकता हूँ।
6: ठीक है, आप इस बात को साबित कीजिए और ऐसा आदमी ढूंढिए। इस बात का फैसला आज ही हो जाए। मुझे यकीन है कि इस बार आप गलत साबित हो जाएंगे।
7: हुजूर आला, मैं आज ही ऐसा आदमी ढूंढकर शाम को दरबार में पेश कर दूंगा। जहांपना, अपनी चुनौती स्वीकार करने वाला मुझे मिल गया है, इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए।
6: उसे बुलाएं? बीरबल, हम जरूर मिलना चाहेंगे उससे।
8: गंगाराम हाजिर हो।
9: आदाब जहांपना।
6: क्या बीरबल ने समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है?
10: जी हाँ हुजूर, मुझे सारी रात आपके बगीचे वाले तालाब में खड़े रहना होगा।
6: क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तालाब में खड़े रहकर अपनी जान गंवा सकते हो, या तुम्हें वहाँ की ठंड का अंदाजा नहीं?
10: जहांपना, मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा होगा।
6: हमें लगता है कि 10 अशर्फियों के बदले ये करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीरबल, इस पर नजर रखने के लिए 2 सैनिक तैनात रहेंगे। यह आदमी आज रात हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह खातिर की जाए। क्या पता आज की रात इसकी आखिरी रात हो। तो हम आप दोनों से सुबह मिलेंगे। तो बताइए बीरबल, क्या हाल है आपके आदमी के?
7: वो बाहर ही रुका है, क्यों ना उसी से पूछ ले।
8: गंगाराम हाजिर हो।
10: आदाब जहांपना।
6: तो कहो, कैसी रही रात?
10: हुजूर, आसानी से तो नहीं, पर ऊपर वाले की दया से किसी तरह कट गई।
6: तुम कहना चाहते हो कि तुमने सारी रात तालाब में गुजारी? मुझे यकीन नहीं आता।
10: ये सच है जापाना, ये सिपाही मेरे गवाह है।
6: सच बताओ, क्या इस आदमी ने सारी रात तालाब में गुजारी?
11: जी हाँ जापाना, सुबह होने पर ही ये पानी से बाहर निकला। हम दोनों ने कड़ी नजर रखी।
6: हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। कैसे किया तुमने ये? सारी रात क्या किया वक्त बिताने के लिए?
10: हुजूर शुरू में तो बहुत मुश्किल था, ठंड के मारे मैं अकड़ गया था। फिर तालाब के किनारे एक दीव को देखने लगा और सारी रात उसे देखते और भगवान का नाम लेकर गुजार दी।
6: हाँ, अच्छा तो ये राज है। तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही होगी, इसलिए तुम इतनी देर उस ठंडे पानी में रह सके। हम जानते थे, वरना ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता।
10: पर जापना,
6: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? फिर भी हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल था। परिणाम के बारे में तुम भूल ही जाओ।
10: पर जापना,
6: बस बहुत हो चुका, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। सिपाहियों, इस आदमी को दरबार से बाहर ले जाओ। बीरबल, इस बार आपको अपनी हार माननी ही पड़ेगी। आप गलत साबित हुए।
7: आपके खिलाफ जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ।
6: कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से आज हम ईरान के शाह के लिए तोहफे का फैसला करने वाले थे। क्या आपके पास कोई सुझाव है?
7: माफी चाहता हूँ हुजूर, पर कुछ घरेलू परेशानी की वजह से मैं अभी घर जाने की इजाजत चाहता हूँ। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा।
6: जरूर बीरबल, आप जा सकते हैं, पर जल्द ही लौट आइएगा। बीरबल कहाँ है? क्या वो लौटे नहीं?
7: नहीं हुजूर, अभी तक नहीं लौटे। क्या उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा जाए?
6: हाँ, एक सिपाही को भेजिए और उन्हें जल्द दरबार पहुंचने को कहिए। तब तक आप बाकी कार्यवाही कर सकते हैं।
7: जापना, इस साल देश भर से आए लगान की रकम कुछ इस तरह थी।
11: आदाब जापना, बीरबल ने कहा है कि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
6: आज बीरबल को हो क्या गया है? इतनी देर से तो वो कभी खाना नहीं खाते। हमारे ख्याल से अब तक उनका खाना हो गया होगा। तुम एक और घोड़ा लेकर उनके घर जाओ और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे। तुम अकेले क्यों आए? बीरबल कहाँ है? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि उन्हें साथ लेकर आना?
11: हुजूर, मैं उनके घर गया था आपका संदेशा लेकर, पर बीरबल भोजन तैयार कर रहे थे और उन्होंने आपको कहने के लिए कहा है कि वो जैसे ही हो जाएगा वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
6: हमारे ख्याल से हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। हम इसी वक्त उनके घर जाएंगे।

0: आदाब जहाँ पना।
1: जहाँ पना, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूँ।
2: क्या हो रहा है बीरबल? सिपाही ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, और ये सब माजरा क्या है?
1: हुजूर, वो जो ऊपर हांडी टंगी हुई है उसमें मेरा भोजन है। मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, अफसोस अब तक बनी नहीं है।
2: बीरबल, आप ठीक तो हैं? आग से इतनी ऊंचाई पर हांडी टांगने से खिचड़ी कैसे पकेगी?
1: हुजूर, मुझे नहीं

0: लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधे आग के ऊपर टंगी है।
1: बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतना ऊपर रखेंगे तो गर्मी कैसे पहुंचेगी?
0: जहां पना, मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर लगे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
1: अच्छा अच्छा, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आप जीते। अपने आदमी के साथ आप जल्दी दरबार में हाजिर हों, उसे उसका इनाम मिल जाएगा।
2: शुक्रिया हुजूर।
1: और ये आपके लिए बीरबल। एक शहंशाह को उसकी गलती का एहसास कराने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये दिखाने के लिए आपने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा दिलचस्प था। शाबाश।
3: राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह।
2: शुक्रिया हुजूर।

दोस्तों, आपने अभी सुना अकबर और बीरबल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मेरी दुनिया में। तब तक आपकी दोस्त आरजे रंजिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर और बीरबल की कहानी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: रेडियो स्टेशन 90.8

0: सराय पूरे देश में मानसून के बादल बरस रहे हैं, लेकिन हम बरसात के इस पानी को इकट्ठा नहीं करते और सारा पानी बेकार हो जाता है। दरअसल वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बरसात के पानी को जरूरत की चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के पानी को एक निर्धारित की हुई जगह पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन के कई तरीके हैं, जैसे सतह जल संग्रह सिस्टम। सतह जल वो पानी होता है जो बरसात के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले हिस्सों में बहकर जाने लगता है। गंदी नालियों में जाने से पहले सतह जल को रोकने के तरीके को सतह जल संग्रह कहते हैं। बड़े बड़े ड्रेनेज पाइप के जरिए बरसात के पानी को कुओं, नदी, तालाबों में इकट्ठा करके रखा जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। दूसरा तरीका है छत प्रणाली। इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुली टंकियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें बरसात के पानी को इकट्ठा करके नलों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा तरीका है बांध। बड़े बड़े बांधों के जरिए बरसात के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिन्हें गर्मियों में या पानी की कमी होने पर खेती, बिजली बनाने और नालियों के जरिए घरेलू इस्तेमाल में लिया जाता है। चौथा तरीका है भूमिगत टैंक। इसके जरिए हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में बरसात के पानी को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। आमतौर से भूमि के ऊपर के हिस्से पर बहने वाला पानी सूरज के ताप से भाप बन जाता है, जिससे हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचा कर रख पाते हैं। पांचवा तरीका है जल संग्रह जलाशय। ये साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके से जमा किए हुए पानी को ज्यादातर खेती के कामों में लगाया जाता है। ये तो बात हुई वर्षा जल संचयन की, लेकिन इसके साथ साथ किसान खेतों में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें जिसमें कम पानी में सिंचाई की जा सके। इनमें से एक है फव्वारा सिंचाई पद्धति। इस विधि से सिंचाई में पानी की बर्बादी नहीं होती। बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी एक अच्छा साधन है। बूंद बूंद विधि से लगभग 60-70% पानी की बचत होती है। किसान कम पानी में सिंचाई कर सकते हैं। इस पद्धति में 50-80% तक पानी की बचत होती है।
1: तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग माध्यम हैं जिनके जरिए हम पानी की बचत कर सकते हैं, फिर चाहे सिंचाई के जो अलग अलग साधन हैं उनकी बात की जाए, या जिस तरीके से अभी तक मॉनसून की भी अगर स्थिति हम देखते हैं तो वो काफी बेहतर रही है कुछ एक क्षेत्रों में, हालांकि कुछ एक जगह कमी भी है। लेकिन यहां डॉक्टर मनोज, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राजस्थान जैसे क्षेत्र की हम बात करते हैं या आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर एक किसान को बड़ी उम्मीदें रहती हैं बारिश से जब मॉनसून आता है, कि ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आगे के लिए भी कितना फायदेमंद है मॉनसून, और उसके साथ साथ जो एक संदेश है कहीं ना कहीं वो किसान भी देता है वर्षा जल संचयन का।
2: हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा मुख्य रूप से खेती मानसून आधारित है, और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि मानसून जून से शुरू होकर करीब करीब सितंबर तक चलता है, और हमारे किसान भाई यही उम्मीद करते हैं कि मानसून सामान्य रहे और जिससे उनको जो जल मिले उनसे उनकी खेती, न केवल ये वाली खरीफ सीजन की खेती और बल्कि अगली जो रबी सीजन की भी जो खेती है उसकी भी व्यवस्था हो सके। तो उस सब को देखते हुए इस समय मानसून की प्रगति संतोषजनक है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी कम है मानसून, लेकिन उम्मीद है कि हमारे देश में इस समय मानसून पूरा सामान्य रूप से थोड़ा सा अधिक रहेगा और सामान्य रहेगा। और किसान भाइयों से तो यही अनुरोध रहेगा कि जितना पानी गिर रहा है उसका संचयन करके, संरक्षण करके और उचित उपयोग करके उसका इस्तेमाल करें, जिससे उनकी खेती अधिक से अधिक अच्छी हो और उत्पादन बहुत अच्छा हो।
1: जी, और किस तरीके से, मतलब माध्यम क्या है इसमें, अगर हम बात करते हैं कि कैसे ना सिर्फ उसका संचयन हम कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हमारे जो किसान है इस बारिश के पानी को

0: इसका संचयन जो है, संरक्षण जो है, वो कर सकता है?
1: बहुत साधारण तरीके हैं, हमारे किसान भाई बहुत लोग जानते हैं, मैं एक बार दोबारा उसको रिपीट करूंगा और बताऊंगा। जैसे ही बारिश होती है और यह बारिश होने की तैयारी हो रही है, कुछ जगह हो गई है, तो हमारे खेतों को बहुत साधारण तरीके से किसान भाइयों को जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में, तो हमारी मेड़ों की मरम्मत कर लें, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बनाकर और उनकी मरम्मत कर लें। और देखें, गांव में अगर तालाब है तो जिन नालियों के द्वारा पानी तालाब में जाता है उन नालियों की सफाई कर लें, बहुत खरपतवार आ जाती है, बहुत उसमें कोई सामान फेंक दिया जाता है वो बंद हो जाती हैं, उनकी पूरी तरह सफाई कर लें, जिससे भी जितना वर्षा का जल आए वो सारा सारा अगर हमारे यहाँ फार्म पॉन्ड है उसमें संचयन हो सके, या हमारे खेत में ही जो पानी गिर रहा है वो एक बूंद भी हमारे खेत से किसी और जगह ना जा सके। ये खेत की बात है, फिर हम बात करें गांव की, बात करें कि हमारे गांव का पानी गांव में ही रहे, और जितना पानी गिर रहा है वो सारा सारा हमारे खेती के लिए उपयोग में आ सके। उसके बाद जब अगर हमने संचयन कर लिया है उस पानी का, तो हम देखते हैं कि आज बारिश हुई, फिर एक हफ्ता या 10 दिन बाद बारिश हुई, और उस बीच में अगर आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो कोशिश करें कि उस जो पानी को इकट्ठा आपने किया है या संचयन किया है, उस पानी को कैसे हम, जैसे बैंक में आपके पैसा रहता है उसको हम बड़े ध्यान से उपयोग करते हैं, उसी तरीके से इसको उपयोग करें, चाहे वो हम बहुत ही आधुनिक तरीके से, कोशिश करें कि कम से कम इस पानी की को वेस्ट करें, और अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे तो हम सारा सारा पानी बचा भी सकेंगे, और कोशिश करेगी कि जो संचित पानी है वो रबी फसलों के लिए भी बचा रहे हमारे फार्म पॉन्ड में या तालाब में और जहां पर भी हमने पानी इकट्ठा किया।
0: तो नासिर, देखिए जो खरीफ का सीजन है अभी, वहां तो आपकी जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति होगी ही, साथ ही इसके बाद का जो सीजन आता है रबी की जब हम बात करते हैं, तो वहां भी आपके लिए जो पानी है वो उपलब्ध रह सकेगा। कुछ अलग अलग विकल्प आपके पास है, माध्यम आपके पास है, और सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है, मदद भी जो है वो की जाती है, अनुदान भी दिया जाता है। अगर आप अपने खेत में भी अगर पॉन्ड बनवाते हैं, तालाब एक बनवाते हैं, चेक डैम, अलग अलग ऐसे माध्यम है जिनके जरिए आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं। यहां ज्योति जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी संस्था भी लगातार इस बात को बढ़ावा दे रही है कि जो पानी है हमें उसको बचाना है, लेकिन जब खेती में पानी की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और चुनौती हमारे लिए हो जाती है कि कैसे किसान जो है उसको अच्छी उपज भी लेनी है, जो फसल है उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है और पानी को भी बचाना है, कैसे ये लगातार जो संदेश है वो दिया जा रहा है
2: किसान के लिए? एक्चुअली एक बहुत ही मुश्किल चॉइस रहती है, क्योंकि हमारी, जैसे मनोज जी ने कहा कि हम अभी कृषि प्रधान देश हैं, और वो भी ऐसा कृषि प्रधान देश जहां पर वर्षा के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है
0: जी।
2: पर जैसे अभी बात की गई कि किसान जो है वो मैं आज आपके माध्यम से किसान को ये रीअश्योरेंस देना चाहती हूं कि ये जो मिथ्या है कि अगर हम इरिगेशन कम करेंगे तो उसकी वजह से हमारी उपज में कमी आएगी, ये बिल्कुल एक मिथ्या है
0: जी।
2: अगर आप समय पर टाइमली सोइंग करें, टाइमली

0: से आपके गांव की जमीन में रिस जाए पॉन्ड के थ्रू, या आपके यहाँ पर अगर कोई भी सूखे कुएं हों या ट्यूबवेल्स हों उनके अंदर आप बारिश के पानी को डाइवर्ट कर दीजिए थोड़ा क्लीन करके, ताकि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। आपकी जो साइड की नालियां हैं उनका तालाब कच्चा रखिए ताकि उसके थ्रू भी पर्कुलेशन हो जाए, और इस तरह का चेक डैम्स बनाइए। अगर कोई स्ट्रीम चल रही है चेक डैम्स बनाइए, बांध बनाइए। तो इस तरह से कैलकुलेट कीजिए कि आपके गांव से एक भी बूंद पानी जो है बाहर ना जाए, ताकि मॉनसून के खत्म होने के बाद जो ड्राई पोर्शन आता है उसमें आपके पौधों को जमीन की नमी के माध्यम से वो पानी मिलता रहे जिसकी उनको जरूरत है। पौधे को नमी चाहिए होता है, पानी नहीं, नमी चाहिए। तो नमी का इंतजाम कीजिए।
1: चलिए, जिस तरीके से जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमें करनी होगी, ना सिर्फ खेत का पानी खेत में बल्कि इसके साथ साथ गांव का पानी गांव में भी रहेगा। और खासतौर से डॉक्टर मनोज, जब से हम मान सकते हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब से लागू की गई उसके बाद से एक बड़ा बदलाव हमने देखा है कि ना सिर्फ जो किसान है पानी बचाने लगा है, क्योंकि वहां पर प्रति बूंद अधिक उपज की बात हम करते हैं, हर खेत को पानी पहुंचाने की बात हम करते हैं, तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है।
2: हाँ, जैसे आपने चर्चा की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उचित समय पे शुरू की गई। 2015 में इसको शुरू किया गया था और इसमें हर रूप में पानी का हर रूप में इसका सहायता अनुदान दिया जाता है, चाहे वो पानी के संचयन के लिए, संरक्षण के लिए। जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी कि अगर आपके अपने खेत में आप तालाब बनाना चाहते हैं, सामुदायिक रूप से गांव में सामुदायिक रूप से तालाब बना के, और हमारे गांव में आपने देखा होगा साधारण तरीके से तालाब थे और वो तालाब अब वो भर गए हैं, तो हम कोशिश करें कि अब इस समय भी अभी समय है हमारे पास कि सारे श्रमदान करके उन तालाबों को मिट्टी निकाल दें, उससे उनकी जो पानी भरने की क्षमता है वो बढ़ सकेगी। और उसके बाद इन तालाबों को बनाने के लिए आपको अनुदान भी मिलता अपने रूप से, अगर आप अपने खेत आपका बड़ा है और आप बनाना चाहते हैं या आप सामुदायिक रूप से बनाना चाहते हैं उसके लिए भी अनुदान मिलता है। आप अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें कि हम ये बनाना चाहते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको ये चर्चा में बताया था कि इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए जो आधुनिक विधियां हैं, चाहे वो फव्वारा सिंचाई हो, टपक सिंचाई हो, अंडरग्राउंड भूमिगल आपकी पाइपलाइन हो, उस पानी को जहां तालाब से आपके खेत तक ले जाने में अगर आप कच्ची नाली में उस पानी को ऐसे कीमती पानी को ले जाएंगे तो करीब करीब 30-40% पानी तो नालियों में ही चरह जाएगा। तो उसकी बजाय आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाएं या भूमिगत पाइपलाइन जिसे कहा जाता है, और उसमें भी आपको हर तरह की सहायता मिलती है। और इसलिए मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये समय आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर आप कोशिश करें जितना पानी गिर रहा है मैं या तो संचयन करूं, मेरी खेती में इस्तेमाल हो, और उस संचयन करके पानी को ऐसे इस्तेमाल करूं कि ज्यादा से ज्यादा समय तक वो पानी रबी फसलों के लिए उपलब्ध हो पाए।
1: डॉक्टर मनोज, हमारे किसान कर भी रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में भी आज जुड़े हैं अलग अलग राज्यों से किसान, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बात सभी कर लेते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो कम ही हो पाता है, लेकिन आप उनमें से हैं जिन्होंने लगातार कोशिश की कि कैसे पानी को बचाया जाए अपने गांव में। किस तरीके से शुरुआत हुई और आज के समय में क्या स्थिति आपके गांव में, अगर पानी की बात हम करते हैं क्या स्थिति है वहां पर?
3: हाँ जी सर, हम 2 साल से लगभग एक जूम सेमिनार कर रहे हैं।
1: जी,
3: तो जूम सेमिनार पे हम खेती बाड़ी के प्रोग्राम करते हैं जिसमें फगवाड़ा गुड ग्रो एक तकनीक है जो किसान के लिए बहुत बढ़िया, उससे बहुत पानी की बचत हो रही है। जोत शर्मा जी भी हमारे साथ है, जो हमके जो किसान जुड़ते हैं लोग गांव के लोग हैं उनको जानकारी देते हैं, और पंजाबी यूनिवर्सिटी है उसमें भी हम जाके देख के आए, तो हमको पता चल रहा कि जो बारिश का पानी है उसको हम पी भी सकते हैं और इसको पानी को नीचे भी धरती में पहुंचाया जाए, इसलिए उसके लिए कोशिश की और ज्योति शर्मा जी को जूम सेमिनार किया और यूनिवर्सिटी जाके और भी लोग गए हम जाके देख के आए। तो एक पंजाब में एक बरनाला है, बरनाला जिले का गांव है प्रवाही
1: जी,
3: रवि कुमार शर्मा जी है वो 6 साल से पानी या जो पी रहे हैं 6 साल से, उसका क्या हमें उसका प्रोजेक्ट देख के आए। उसके बाद हमने अपने घर में बनाया कि हमने आपको ऐसी नया मकान बना रहे हैं उसमें हमने एक पानी को पीने के लिए बनाया है नीचे, वो जो छतों का है पहले उसको 10 मिनट बाहर चला जाएगा फिर उसको स्टोर हो जाएगा,
1: तो ना सिर्फ खेती में बल्कि उसको पिया भी जा सकता है, घर में उसको हम पी सकते हैं। आपने इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है?
3: हाँ सर, ये इस तरह ही क्या किया है, जो रवि कुमार शर्मा 6 साल से पी रहे हैं
1: तो
3: उसे हम देख के भी आए, तो पानी है इस तरह है वो बनाया इस तरह है सारा कि उसमें जो ना धूप ना जाए और हवा ना जाए तो पानी खराब नहीं होता बिल्कुल भी।
1: जी,

0: दो तीन साल के बाद भी आप पानी को देखेंगे, पानी में कोई भी जीवन नहीं पैदा होगा, कोई आपको मक्खी मच्छर कुछ भी पैदा नहीं होता, क्योंकि उसको उसमें धूप नहीं जानी चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए। इसलिए उसमें हम जो स्टोर करेंगे, हमने वो लगभग 16,000 लीटर का नीचे बनाया है
1: जी,
0: हाँ है, एक धरती के धरती में, और जो हमारे छत का पानी है सारा
1: जी,
0: वो पानी 15 मिनट पानी होगा, जो ऊपर भी जो ऊपर से बारिश आती है प्रदूषण होता है, 15 मिनट पहले बाहर जाएगा पानी
1: जी,
0: 15 मिनट के बाद उसको हमने एंड कप लगा दिए, हमारे जो स्टोर हो जाएगा सारा पानी, जो स्टोर हो जाएगा उसको फिर टुंगू पंप की सहायता से हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से फिर सारा हमारे फिर रसोई में पाइप लगाई हुई है, तो उसमें हमने फिल्टर लगा रखा है,
1: यानी जहाँ जहाँ आवश्यकता है फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है।
0: हाँ जी, उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जो उसके बाद फालतू पानी होगा उसके लिए हमने नीचे का बोर किया है 110 फुट
1: जी,
0: उसमें डाला है, और जिस तरह भी हमको गाइडेंस दी गई है उसी तरह वो पानी को साफ करके बिल्कुल वो पानी को धरती में फिर रिचार्ज किया जा रहा है
1: जी।
0: इस तरह वो पानी है सारे का सारा जो जो हम पीने के लिए बरतेंगे, और जो उसके बाद जो फालतू पानी होगा वो सारे घर का पानी जो भी होगा, छतों का पानी होगा, वो सारे का सारा हम धरती में रिचार्ज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो पानी का ऊपर आएगा, और दूसरा ये है कि जो हमारे घर का पानी है उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी हो जाएगी। बात ये सब लोगों को जरूरी है कि जिस घर में 10-15 हजार में बोर हो जाता है, जो स्टोर भी नहीं कर सकते, तो जो उस नीचे पानी जाएगा तो उसके घर का जो पानी है उसका टीडीएस ठीक हो जाएगा, उसकी हो जाएगी। जो नीचे का पानी जहां जहां खराब है वहां पर वो चाहिए कि पानी को नीचे तक भेजा जाए, और उसके घर का क्या उसके आंड गांड का पानी भी जो है पानी भी पीने जो हो जाएगा।
1: बिल्कुल कुलदीप जी, बहुत अच्छा एक आपका जो प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं डॉक्टर मनोज, ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए तो शायद इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, इस तरह की जो तकनीक है उसको और बढ़ावा हमें देना चाहिए, जिससे जैसे कुलदीप जी इस पानी का सदुपयोग कर पा रहे हैं वो भी शहरों में भी हर घर में हो सके, गांव में भी हो सके।
2: हाँ, वर्षा जल संचयन हमारे शहरी क्षेत्रों में जहां पे आजकल पीने के पानी की बहुत समस्या है और पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है, वहां पर जितने भी हमारा पक्का क्षेत्र हैं, जहां भी मकान हैं, बहुत भारत सरकार या राज्य सरकारों ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि अपने मकान में, हर मकान में आप अगर छोटा सा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दें, जितना छतों पे पानी गिरता है, आपके साइड में पानी गिरता है, वो सारा सारा एक नाली से इकट्ठा करके पाइप करके नीचे एक उसका टैंक बनाएं। लेकिन उसमें ये ध्यान देने की बात है कि कोशिश ये रहे कि गंदा पानी हमारे भूजल में ना जाए, उससे पहले फिल्टर बहुत अच्छा हो, जिससे कि जितनी भी गंदगी है, जो भी आपकी छत पे पड़ी है या कोई चीज ऐसी गंदी पड़ी है, वो सारे का फिल्टर होके वो भूजल के में जाए, और उससे भूजल का सुधार होगा, क्योंकि भूजल हमारा बहुत नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हमारे पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत भूजल आधारित होती जा रही है, और उसके कारण अगर हम वर्षा जल संचयन इस समय नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा भूजल इतना नीचे चला जाएगा कि पानी की बिल्कुल ही उपलब्धता कम खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे हम बहुत राज्यों में ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि भूजल हमारे बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है
1: जी। बिल्कुल, इसको सुधारना भी जरूरी,
2: खासकर हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा सुजड़ नहीं होगा, और ये हमें वर्षा जल संचयन एक मिशन की तरह से चलाना पड़ेगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो।
1: जी बिल्कुल, ये बेहद जरूरी कि एक मिशन मोड में इसको अपनाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी हमने देखा, ना सिर्फ जो नया मंत्रालय है उसकी शुरुआत की गई, उसके बाद अलग अलग योजनाएं जो हैं या हर किसी को जागरूक करने के लिए लगातार जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ज्योति जी, जिस तरीके से भूजल स्तर की एक बड़ी समस्या रही है, आपको क्या लगता है क्या इसका एक बेहतर विकल्प हमारे पास है, समाधान जो है वो हमारे पास है, कैसे इसको फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं?
3: नहीं बिल्कुल, अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी जरूर होगा, और हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जो मंत्रालय जल शक्ति अभियान लॉन्च करती है हर वर्ल्ड वाटर डे पे, उसमें जो उन्होंने 5 स्टेप्स कहे हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, आप रिचार्ज, आप बोरवेल रिचार्ज करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, और रिसाइकिल करेंगे वाटर और उसका रीयूज करेंगे, उन्होंने ये जो 5 स्टेप्स बताए हैं, वो 5 स्टेप्स जो हैं, हमारा भी ऐसा एक फॉर्मूला है 5 आवर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो उसमें क्या है कि अगर हम वेस्टेज पानी की कम करें, थोड़े वाटर एफिशिएंट बने, वेस्टेज कम करें. अगर हम एक पानी का पुनः प्रयोग करें, अगर कोई भी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो कि एक बार यूज किए हुए पानी का हम पुनः प्रयोग कर सकें, जैसे कि हम अक्सर किचन में कोई चीज धोते हैं तो उसके बाद उस पानी का पौधों में प्रयोग करते हैं, तो अगर पुनः प्रयोग कर सकें तो वो. तीसरा आर क्या हो सकता है, रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर, जिसके बारे में अभी आपने हमने बहुत की, तालाब के थ्रू, चेक डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर संभव प्रयास से रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर करें. रिसाइकल वेस्ट वाटर, एक बूंद पानी को हम 9 बूंद पानी बना सकते हैं अगर हम उसको रिसाइकल करते हैं. तो रिसाइकलिंग फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मिनिस्ट्री इस चीज को जानती है, इसीलिए जल शक्ति अभियान का एक अभिन्न अंग है. एंड फिफ्थ ऑफ कोर्स, पानी की इज्जत करना, फिर से याद करें कि हमारे पूर्वजों ने हमको पानी की इज्जत करना सिखाया था, क्योंकि जिस चीज की हम इज्जत करते हैं उसका ख्याल रखना हमें खुद ही आ जाता है, हम खुद ही समझ जाते
1: हैं. बेहद जरूरी है, देखिए ख्याल जो है हमें रखना होगा, शुरुआत हमसे ही होगी. और जैसा ज्योति जी ने कहा कि जो एक बूंद पानी है अगर आप उसको कर सकते हैं तो उसको 9 बूंद में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं. और लगातार हमारे जो किसान हैं इस तरीके से ही कुछ काम भी कर रहे हैं. कुलदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कुलदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया, ना सिर्फ खेती किसानी बल्कि जो पीने का, जो बारिश का पानी है वो पीने के लिए भी आप उसको योग्य बना लेते हैं. कई जगह देखते हैं कि जो खारे पानी की समस्या रहती है, वहां भी क्या हम मान सकते हैं कि इस तरह से अगर जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किए जाए, इस तरह के जो तकनीक है अपना ली जाए तो शायद ये समस्या दूर होगी और भूजल स्तर में भी सुधार होगा?
0: सर ये तो बहुत ही बढ़िया है, जिस जगह खारा पानी है ना उसके लिए तो इसका प्रचार करने की जरूरत है. जो गांव के लोग है उसकी प्रॉब्लम है कि इसमें जो खर्चा आता है, खर्चा काफी आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम है. इसमें जो कुछ कमी है, जो संस्थाएं काम कर रही है, जैसे खालसा एड है उसका बहुत काम है, उस तरह की जो संस्था है जिनके पास फंड है या सरकार है, ये प्रॉब्लम है उस जगह पर, उसके वो जाके 2-4 घरों में, 5 घरों में इस तरह के प्रयोग करके दिखा दें तो फिर लोग अपने आप कर लेंगे. और एक मैं चाहूंगा, जो भी लोग घर नया घर बनाते हैं वो तंग बना लें कि वो जब नया घर बनाएंगे तो पानी को इस तरह कर लें. एक और बात है सर, जो रिसाइकल की बात चल रही है कि रिसाइकल कैसे किया, एक संगे खालसा गांव है पंजाब में
1: जी,
0: तो क्या है कि उसके लोग यूके के वहां के है NRI लोग, उन्होंने इस तरह किया है कि जो भी सारे गांव का पानी है, जो नीचे का जो घर के गलियों का पानी है, गंदा पानी है, वो सारे का सारे को रिसाइकल करके उसको साफ करके फिर पाइप उसकी चली जाती है, उस पानी से फिर सारे गांव के द्वारे उसकी पाइप लगा दी तो उससे काम हो जाती है, पशु नहाए जाते हैं, सब्जियों को पानी दिया जाता है, तो पशु नहाएंगे फिर पानी नीचे चला आ जाएगा उसमें, तो फिर रिसाइकल होकर चला जाएगा. इस तरह बार बार पानी घूमता रहता है
1: जी, बिल्कुल
0: बार बार पानी का बहुत बढ़िया तरीका है, इस पर भी काम किया जाए तो बहुत अच्छा है सर,
1: काफी अच्छा होगा. और आप भी लगातार, हम कह सकते हैं कि अच्छा सराहनीय कार्य जो है वो आप लगातार कर रहे हैं, दूसरे किसानों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं. फिलहाल कुलदीप साथ साझा करेंगे किस तरीके से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वही हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत भी, क्योंकि हमें भी अब आगे आना होगा इस पानी को बचाने के लिए, वर्षा जल संचयन करने के लिए.
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM. आपनो रेडियो, आपड़ी बातें.

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: देखिए ये बात जो है हमारा किसान भी समझ चुका है, अपना योगदान वो इसमें दे रहे हैं, कैसे बारिश का जो पानी है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कुलदीप जी से जो कि पंजाब के एक सफल किसान थे। अब आइए रुक कर लेते हैं राम लखन जी का, ये हरियाणा के नुमेवास से हमारे साथ जुड़े हैं। राम लखन जी बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप पानी की बचत कर रहे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर
2: जो बारिश का पानी है जी इसको इकट्ठा किया गया है
1: जी, कैसे इकट्ठा करते हैं आप इसको?
2: इसका गड्ढा कर लिया जाए
1: जी, और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
2: सिंचाई के उससे उसमें खेत में प्रयोग किया जाए
1: जी। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो सतही सिंचाई करते हैं कि जो कच्ची नालियां हैं उसमें पूरी तरीके से जो पानी है बहता रहता है, आप किस तरीके से करते हैं?
2: हम तो इसी तरीके से करते हैं जी, कम से कम वो।
1: चलिए पानी जो है उसका कम से कम इस्तेमाल, यानी प्रति बूंद अधिक उपज जो है वो हम ले सकें, हमारे जो किसान हैं इस दिशा में आके बढ़ रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर मनोज, कहीं ना कहीं एक किसान को आवश्यकता ये होती है कि हमें मदद किस तरीके से मिल सकती है, और मदद ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अनुदान के रूप में हो, बल्कि जानकारी भी अगर उनको मिल जाए, इस इंतजार में किसान रहता है आधुनिक तकनीक की जानकारी उन तक पहुंचे, प्रशिक्षण उनको मिल जाए, तभी शायद हम मान सकते हैं कि वर्षा जल संचयन जो है उसका महत्व और बेहतर तरीके से किसान समझ पाता है।
3: हाँ, हमारा किसान बहुत जानकार है, बट साथ साथ उसको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता रहती है। तो हमारी कोशिश रहती है, बहुत से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र हैं, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हर जिले में एक है, वो वर्षा जल संचयन या वर्षा का पानी का कैसे उचित उपयोग करें या पानी को कैसे उचित तरीके से लगाएं, इस तरह का प्रशिक्षण हमारे किसान भाइयों के लिए करते हैं। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम अभी भी चर्चा में कर रहे थे कि वो पानी को कैसे खेत में अपने रोकें, पानी का आपका जो तालाब है उसकी कैसे सफाई करें, जो नालियां हैं उनका कैसे साफ करके रखें, जिससे कि सारा सारा पानी जो आपके तालाब में ही इकट्ठा हो, और फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक विधियां इस्तेमाल करें। और इन प्रशिक्षण को देखकर वो किसान बहुत प्रेरित होते हैं, जैसे नई नई विधियां इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे किसान, जैसे हमारे अभी नू मेवास से जो आपने देखा होगा कि वहां पे उस क्षेत्र में बहुत रूप से फव्वारा सिंचाई होती है। कोशिश रहती है किसान की कि उस पानी को जो इकट्ठा हुआ है वो बहुत ही उचित तरीके से लगाया जाए, जितना पौधे को जरूरत है उतना ही लगाया जाए, ना कि केवल भरा जाए। भरने से सारा पानी भूजल में चला जाएगा, आपकी जो खाद है वो भी बर्बाद होगी। आप अगर फव्वारे से लगाएंगे तो जितना पानी चाहिए उतना ही लगाएंगे, उससे अब आप पानी को चूंकि आपने इकट्ठा कर लिया है और आप उचित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये रहेगी या पानी इतना बचेगा कि वो आपके आने वाले जो समय है यानी रबी फसलों के लिए, उस समय बारिश जो कम होती है वहां पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। और ऐसी फसलों को लें जो मौसम की हो, ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में पानी की कम उपलब्धता है और आपने धान की खेती कर रहे हैं, केवल उन्हीं उन फसलों की खेती करें जो आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के अनुसार हो। जैसे अगर पानी कम उपलब्ध है तो कम पानी पीने वाली फसलों का आप उगाएं, और कोशिश करें कि जितना बारिश का पानी बच रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका और आपकी क्रॉप अच्छी रहे, आपकी फसल अच्छी रहे।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए ना सिर्फ फसल अच्छी रह सकती है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी आर्थिक की अगर हम समझते हैं तो आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है। और ये खासतौर से ज्योति जी अगर देखा जाए, फिर चाहे हम ड्रिप की बात करें या स्प्रिंकलर की बात करें, इनके जरिए भी जो किसान है वो जान चुका है कि कैसे उसको पानी की बचत करनी है। लेकिन जब वर्षा जल संचयन की हम बात करते हैं तो आवश्यकता रहती है उस तरह की तकनीक या जो प्रशिक्षण है वो मिले, तो क्या आपके द्वारा या आपकी संस्था के द्वारा भी इस तरीके से जो जानकारी है वो दी जाती है अलग अलग जगहों पर?
4: हमारा तो एनजीओ इसी के लिए बनाया गया था
1: जी,
4: कि हम हर संभव तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो यू नो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट जैसे हम फार्मर्स के साथ हम मीटिंग्स करते हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम हर संभव प्रयास करते हैं लोगों तक एक ये जागृति लाना कि वर्षा जल संचय जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। दूसरा कैसे करें, अपने घर में कैसे करें, अपने खेत में कैसे करें, गांव में कैसे करें, शहरी रूप में अगर शहर के आप प्राधिकारी हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो हम उनकी टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, ड्राइंग डिजाइन देना, और फिर कि आप उसके लिए सरकार में कहां कहां प्राविधान है जिनसे कि आप फंडिंग का सपोर्ट ले सकते हैं और आप कुछ खर्चा खुद करें और कुछ खर्चा सरकार जो है अपनी अलग अलग स्कीम्स के द्वारा आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो हमारा एनजीओ फोर्स जो है हम गांव में और शहर में हर जगह इसका प्रचार भी करते हैं और मदद भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेन करते हैं, मतलब हर वो काम जो जरूरी है इसके लिए, डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए या सपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम हर वो काम करते हैं, और आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहे इसके लिए मोस्ट वेलकम।
1: बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार जो मदद है वो की जा रही है, और वर्षा जल संचयन सिर्फ ये नहीं कि हम जो खेती बाड़ी में जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वहीं तक, बल्कि हमारे जो किसान हैं इसका इस्तेमाल अपने घर में जो पानी पीने योग्य है उसके लिए भी करते हैं। और खासतौर से यहाँ रामलखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से इनका रुख कर लेते हैं। रामलखन जी, जानना चाहेंगे आपसे, कुछ किसानों को इस तरह की धारणा बन जाती है कि अगर हमने खेत में ज्यादा पानी दिया है तो तभी फसल अच्छी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अगर पानी कम मिलता है तब फसल अच्छी नहीं हो पाती?
2: ज्यादा देंगे तो वो बेकार ही तो जाएगा जी।
1: जी बिल्कुल, बहुत सटीक शब्दों में
2: वो देखो
1: जी रामलखन जी, बहुत सटीक शब्दों में आपने बात कही कि ज्यादा पानी वो तो बेकार ही जाएगा। खासतौर से यहाँ डॉक्टर मनोज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो कोशिशें वो की जाती हैं, जैसा आपने कहा कि सरकार द्वारा भी, और एक मिशन मोड जो है वो जरूरी हो जाता है, हर कोई पानी बचाने के लिए हम मान सकते हैं कि एक जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन वर्षा जल संचयन में जो भागीदारी है किस तरीके से उसको हम बढ़ा सकते हैं?
3: देखिए ये सबकी जिम्मेवारी है, ये मतलब चाहे वो शहरी क्षेत्र के नागरिक हों या जो हमारे गांव के किसान हैं, सबकी जिम्मेवारी है कि जो वर्षा का पानी गुजर रहा है और निकल रहा है, क्योंकि हमारा पूरा जो वो पानी का चक्र है हमारे देश का वो सिर्फ जून जुलाई अगस्त हमारे पूरे मुख्य नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जिससे पानी आता है मानसून से,
1: दक्षिण पश्चिम मानसून,
3: हाँ, जिसे कहा जाता है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में ही बारिश होगी, और उस पानी को किसी तरह भी हमें इकट्ठा करना है। अगर हम जाने देंगे तो वो पानी बहता हुआ नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाएगा, और वो न केवल आपके लिए बेकार है और पूरे क्षेत्र के लिए बेकार हो जाएगा। तो हमारी कोशिश रहे कि या तो हम खेती में उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, नहीं हो रहा है तो हम उसको भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करें, भूजल में किसी तरह उसको बिल्कुल साफ करके या फिल्टर करके उस पानी को उसमें, और हमारे जैसे मैडम ने बताया कि आपको रिसाइकल करें, रिसाइकल करके ही, जैसे आप रसोई में, खेत में और बहुत जगह हम पानी देखते हैं कि आपका जो गंदा पानी होता है उसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके आप अपने, अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो कोशिश करें गार्डन में सिर्फ वो जो रिसाइकल वाटर है वो ही इस्तेमाल करें, आपका जो स्वच्छ पानी आपके नलों में आता है उसको इस्तेमाल ना करें। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे का अगर किसान भाई तैयारी कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं इस समय, वो किसी तरह भी वो समतलीकरण करा लें अपने खेत का, फिर चारों तरफ मेड़ पक्की करें, मैं दोबारा वही बात बता रहा हूं, और जिससे कि वो एक तो पानी कहीं भी रुकेगा नहीं, और वो पानी जितना आएगा वो पूरा पूरा आपके खेत में ही इकट्ठा होगा, और उससे आपकी न केवल फसल अच्छी से रहेगी और आपके लिए वो जितना भी एक्सेस वाटर है या ज्यादा है उसको निकाल के, अगर आप ये देखते हैं कुछ फसलें ऐसी हैं कि ज्यादा बारिश हो गई तो जल निकासी की व्यवस्था करके, बट वो व्यवस्था ऐसे करें कि वो कहीं पे भूजल में जाके जुड़े हो और या आपके तालाब में जुड़े, इसलिए सारा पानी आपका एक जगह इकट्ठा हो सकता है।
1: जी डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है उसमें किसान को इतनी जानकारी नहीं हो पाती, किस तरीके से उसकी जो शुद्धता है या उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं कैसे, क्या एक छोटा सा प्लांट है या तकनीक कोई ऐसी अगर किसान चाहे या कुछ किसान मिलकर अगर इस तरीके से अपनाते हैं तो क्या ये संभव है?
3: बहुत सारी तकनीक आजकल हो गई है जो कि गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए आती हैं। आपने देखा होगा हमारे गांव में जो नालियों में इस तरह की कुछ पौधे होते हैं जो जितना गंदा होता है पानी में वो उसको सी वो लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो उसको इस्तेमाल करके भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक तकनीक ऐसी डेवलप करी है जो गंदों का गंदा पानी जो गांव का होता है चाहे वो शहर का होता है उसको इकट्ठा करके और उसको ट्रीट करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीट करके उस पानी को आप खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और न केवल और आपके जो गार्डन हैं उन सब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत साधारण तरीके से आजकल तकनीकें बहुत आ गई हैं जिनको हम इस्तेमाल करके उस पानी को शुद्ध करके और आपके अपने कार्यों के लिए दैनिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से उसका सदुपयोग हम कर सकेंगे और लगातार जो किसान है हमारे वो भी इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हरियाणा के एक और किसान है हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम जी मेवात से ही, इनसे आइए बात कर लेते हैं। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत विचार विमर्श में, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से
5: नमस्कार
1: किस तरीके से आपको लगता है कि जो वर्षा जल संचयन है, जो बारिश का पानी है, इसको हमें बचाना होगा और इसकी भी हर एक बूंद जो है वो कीमती है।
5: देखो सबसे बड़ी बात है, इसको जमीन जो बारिश का पानी अगर वो जमीन में चला जाए
1: जी
5: तो उस वो सबसे बढ़िया, उससे हमारा जो भूल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा, जल स्तर है
1: जी।
5: तो जैसे मैंने अपने घर में कर रखा है, जो पहले मेरे बोरिंग था एक, तो मैंने अपने घर का पानी उसमें डाल रखा है बोरिंग में
1: जी।
5: हाँ, तो उससे क्या है कि जो जल स्तर हमारा ऊपर आ जाएगा, खेत समतल होने चाहिए जी
1: जी,
5: जो हमारे खेत है बिल्कुल समतल होने चाहिए जिससे हमारा खेत जो बारिश का पानी वो हमारे खेत में रुक जाए
1: जी। विक्रम जी लेकिन आपको लगता है जो बाकी किसान है इस तरीके से जो प्रक्रिया है या तकनीक है इसको नहीं अपना पाते हैं और बारिश का जो पानी है वो बेकार चला जाता है?
5: हाँ बिल्कुल है जी, अभी हमारे जैसे यहाँ है जो फोर्स एनजीओ है जी
1: जी,
5: इन्होंने काफी जो लोगों को जागरूक किया है और इसका काफी असर देखने को मिल रहा है जी।
1: जी जाहिर तौर पर जो असर है वो
5: अब लोग जैसे
1: जी
5: हाँ जी
1: बिल्कुल,
5: हमारे फोर्स एनजीओ वाले बताते हैं जी, यहाँ लोगों को जागरूक करते हैं, उनका काफी असर देखने को मिल रहा है
1: जी। जी अगर आप बताना चाहें किस तरह का असर आप देखते हैं
5: उसको, जैसे पहले हमारे फ्लड इरिगेशन करते थे
1: जी
5: तो उसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता था, अब ज्यादातर लोग मिनी स्प्रिंकलर के ऊपर आ गए
1: जी,
5: जिससे हम 90% तक पानी बचा सकते हैं जी।
1: बिल्कुल,
5: दूसरा खेत में गोबर की खाद डालते हैं जिससे पानी खेत के अंदर नमी बनी रहती है जी
1: जी,
5: और कम पानी की जरूरत पड़ती है। और जैसे बताते हमारे जैसे पहले समय समय पर वो पानी ना देकर लगातार पानी चलाते रहते थे
1: जी बिल्कुल,
5: तो उनको जैसे बताया गया कि समयबद्ध पानी देना चाहिए, जैसे जब जरूरत हो फसल को तो ही पानी दे
1: जी,
5: वरना पानी बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है और उसका फसल को कोई फायदा नहीं होता, नुकसान करता है वो।
1: बिल्कुल ये बात हर एक किसान तक जानना जरूरी कि जो पानी है अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो वो बेकार ही होगा, फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे फायदा नहीं हमें हो पाएगा। ज्योति जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी अपना जो अनुभव है विक्रम जी हमारे साथ साझा कर रहे थे, किस तरीके से क्या चुनौतियां भी आपको इसमें कुछ नजर आती हैं कि जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में किसानों को बताया जाता है तो एकदम से वो तैयार नहीं हो पाते या इस बात को नहीं समझते कि यही पानी है जिसका सदुपयोग हम कर सकते हैं या इसको रिसाइकिल करके आगे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
4: बिल्कुल, यहाँ पर दो तीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपना सर उठाती हैं
1: जी।
4: एक तो ये है कि हमारी मानसिकता ये है कि पानी का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेवारी है और इसीलिए हर व्यक्ति ये सोचता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो शहरी हो, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये जिम्मेवारी सरकार की है इसलिए हम इसमें भागीदार नहीं है। दूसरा जो है लोगों के मन में ये धारणा है, एक गलत धारणा है कि जमीन के नीचे बहुत पानी है, आप जितना भी निकाल दोगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा और गहरा जाना पड़ेगा, पर मन में ये विचार है उनके कि पानी है और बहुत पानी है और अगर हम जितना गहरा जाएंगे हमें पानी मिलता रहेगा
1: जी।
4: तो ये दोनों जो, और तीसरा ये है कि लोग आप आसपास देखते हैं कि वो इतना पानी बहा रहा है, ये फैक्ट्री इतना पानी ले रही है, हमारी वजह से पानी का स्तर कम नहीं हो रहा, दूसरों की वजह से कम हो रहा है, तो ये जो ब्लेम गेम है ये एक तीसरी प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर दोष डालता है, अपना जो रोल है उसमें उसको नहीं एक्नॉलेज करता, तो उसमें वो परेशानी हमें आती है जब हम लोगों को जागरूक करते हैं। पर मुझे खुशी है इस बात की कि इन पिछले कुछ सालों में शायद हर तरफ से इतना सुनने में आ रहा है पानी की प्रॉब्लम को लेकर, और लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारत की जो आगे जो बहुत तेजी से भारत देश आगे बढ़ रहा है
1: जी,
4: उसकी तेज ग्रोथ में अगर कोई बाधा है तो वो पानी का बाधा है। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब हम लोगों को समझाते हैं तो लोगों को बात जल्दी समझ में आती है। दूसरा ये है कि मैंने देखा है कि प्योर लर्निंग, तो अगर हमें किसानों को समझाना है तो हमारी की कोशिश ये रहती है कि जैसे आपने अभी विक्रम जी से बात की, रामलखन जी से बात की, तो अब यही किसान जो है यही दूसरे किसानों को समझाते हैं तो हमारी कही हुई बात से ज्यादा उस बात का असर होता है। तो ऐसे ही अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्योर चैंपियंस क्रिएट करें, ऐसे लोग क्रिएट करें जो उन्हीं के कम्युनिटी के हों और वो अपनी सक्सेस स्टोरी उनसे शेयर करें, स्वयं शेयर करें, हमारे माध्यम से नहीं, स्वयं बात करें, और उससे बहुत असर होता है। तो परेशानी है, पर मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे विपत्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग भी सही बात सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनको सपोर्ट भी सरकार की तरफ से, गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से बहुत मिल रहा है। तो मुझे आशा है कि अगले 5-10 साल में भूमिका काफी बदल जाएगी।
1: जी बिल्कुल, एक नई भूमिका जो है वो हम देख सकेंगे। जो भूजल स्तर है जो एक लगातार समस्या बनी हुई है उसमें भी सुधार देखिए हो सकता है अगर हम लगातार वर्षा जल संचयन करें। विक्रम जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसा अभी ज्योति जी ने कहा कि जो एक किसान है वो किसान की बात ज्यादा मानता है, आपको भी ऐसी लगता है जब आप दूसरे किसानों को बताते हैं कि वो बारिश का पानी है इसको सजो सकते हैं, इसका संचयन कर सकते हैं, तो आपकी बात ज्यादा मानी जाती है?
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ये ज्योति जी आपने बहुत कैसे स्वाभाविक बात ये है कि जो किसान है वो दूसरे किसान की बात आसानी से समझता है, जबकि जो विशेषज्ञ हैं या वैज्ञानिक हमारे जब जाते हैं तब वो थोड़ा सा समय जरूर लेते हैं। लेकिन किस तरीके से अगर विक्रम जी की भी हम बात करें, हमने यहाँ कुलदीप जी का उनसे भी पूछा था, विक्रम जी के बारे में अगर आप बताना चाहें कि किस तरीके से विक्रम जी हों या दूसरे किसान हों, इन्हें किस तरह की जो प्रशिक्षण है क्या वो दिया गया, फिर किस तरह की तकनीक अपनाकर ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो वर्षा जल संचयन है वो किया जा सके या जो पानी है उसकी और किस तरीके से बचत कर सकें?
4: जी, तो हमारा जो हमारे मेरे 2 दशक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आपको शुरू के जो 5-10 आपके लोग हैं जिनके माइंडसेट आपने चेंज करना है उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप केवल उनको बताकर पीछे नहीं हट सकते, आपको हर कदम उनके साथ चलना है, उनको कोई परेशानी आए तो उस परेशानी का हल निकाल के देना है। तो आप देख रहे थे जैसे विक्रम जी जब बात कर रहे थे उन्होंने केवल एक चीज की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ स्प्रिंकलर की बात नहीं की, उन्होंने गोबर की खाद की भी बात की, उन्होंने रूट जोन में वीट की नमी रूट जोन में हो उसकी बात की। अब तो अभी उनके पास समय नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे, पर एक्चुअली क्या है कि हमने उनको जैसे जैसे देखा कि उनके मन में कोई शंका आई तो हमने उस शंका को दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताया, उनकी पैदावार अच्छी रहे उसके लिए उनको जो भी सपोर्ट चाहिए हमने, चाहे वो सरकार से दिलाना हो चाहे खुद देना हो, हमने दिया। तो उसका नेट रिजल्ट यह है कि जब एक या दो बार वो उनको उनकी पैदावार में कोई कमी नहीं हुई, पानी भी बचा और जमीन की क्वालिटी भी हर साल बेहतर से बेहतर होती गई, हमने सॉयल टेस्टिंग भी की तो उन्होंने खुद देखा कि उनकी जमीन की क्वालिटी भी बेहतर हो गई है, भूजल की भी क्वालिटी बेहतर हो गई है, स्तर भी बढ़ गया है। और ये उन्होंने स्वयं जब देखा तो उन्होंने स्वयं ही लोगों से बात करनी शुरू की
1: जी।
4: तो कहने का मतलब यह है कि जो जब बदलाव लाना है तो उसमें जो पहले कुछ लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं उनके साथ हमें केवल कहकर पीछे नहीं हटना, हमें उनके साथ जुड़े रहना है, उनको सक्सेस बनाना है, सक्सेस से लोग बदलते हैं।
1: जी बिल्कुल, और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि लगातार जो बदलाव है ये हमें दिखता रहे। जैसा आपने कहा कि पिछले 2 दशक की आपकी मेहनत रही है, लेकिन यही मेहनत है जो हम मान सकते हैं कि आने वाली शताब्दियों के लिए भी काफी लाभदायक रह सकती है अगर ये पूरी तरीके से सफल हो जाए। आगे भी आप हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताएंगे किस तरीके से वर्षा जल संचयन का फायदा उनको मिल सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
6: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार जल संरक्षण से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल कर रहे हैं किसान साथियों। आशा कर रहे हैं कि आपको ये सारी जो जानकारियां हमें मिल रही है इसका हम सदुपयोग करेंगे, इसका हम हमारे अपने घरों की छतों से जो पानी आता है उससे भी संरक्षण करेंगे, साथ ही जो छोटे छोटे हमारे जो नालों में जो पानी फालतू में बहकर जाता है वहाँ भी हम मेड़ बदान के सहायता से वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि वो जल को हम बचाएं और अधिक से अधिक जल को हम भूमि के अंदर अंदर ले जा सकें, जिससे हमारे जो कुएं हैं वो उनमें पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ सके। किसान साथियों चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: वर्षा जल संचयन की किस तरीके से जो बारिश का पानी है इसका सदुपयोग किया जा सकता है, यहाँ डॉक्टर मनोज जानना चाहेंगे आपसे भी हम किस तरीके से जो प्रशिक्षण है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और अभी जिस तरीके से हम मान सकते हैं जो बारिश का मौसम है वो चल रहा है, मानसून जो है हर राज्य में दस्तक दे चुका है, तो क्या ऐसे में भी किस तरह का जो प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जाता है जिससे किसान जागरूक हो सके?
4: हाँ, इस वर्षा जल संचयन को अगर हम एक अकेले रूप में नहीं देख सकते, इसे हमें इंटीग्रेटेड वे में देखना पड़ेगा। उसमें सब चीज है, पानी का संचयन है, संरक्षण है, उचित फसल का चयन है और पानी जमीन की लेवलिंग है, प्रॉपर हमने उचित जो वो है उसकी गुणवत्ता वाले बीज हैं, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट है, इन सबको मिलाकर और साथ साथ उसका उचित प्रशिक्षण समय समय पर उसको किसान भाइयों को, हम लोग भी जाकर किसानों के खेत में भी जाके प्रशिक्षण देते हैं और या उनको भी आमंत्रित करते हैं अपने संस्थानों में या कृषि विज्ञान केंद्रों में, और उनको सारे सामूहिक रूप से अगर हम ये समझा पाते हैं कि ये पानी का असर बहुत लंबे समय तक जाने वाला है, इससे आपको अगर उचित पानी दिया, पानी इकट्ठा किया, संचयन किया, संरक्षण किया और उचित तरीके से उपयोग किया और उचित तरीके से लगाया पानी को और उचित आपने खाद दी, का ज्यादा खाद देने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा पानी देने से कोई फायदा नहीं हुआ, इन सबको सामूहिक रूप से इंटीग्रेटेड वे में अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा किसान ये देखता है कि अंत में उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है, उसे उत्पादकता बहुत अच्छी मिलती है और दाम भी बहुत अच्छा मिलता है और कम दाम में। तो जो हमारे भारत का लक्ष्य है कि हमारी किसान भाइयों की जो है इनकम डबल हो सके, वो उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वर्षा जल संचयन एक बहुत उपयोगी कदम है।
3: जी, यानी कदम एक लेकिन फायदे अनेक देखिए इसके जरिए हमें मिल सकते हैं। और खासतौर से ज्योति जी, अगर देखा जाए आप भी लगातार जब किसानों से रूबरू होती होंगी, अलग अलग गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां भी शायद इसी बात की जानकारी दी जाती होगी कि भले ही आपको एक कदम यहां पर उठाना है लेकिन उसके फायदे हमें कितने मिल सकते हैं।
5: जी बिल्कुल, और मैं एक्चुअली शाहरुख खान साहब की बहुत बड़ी फैन हूं, तो उनकी एक पिक्चर है चक दे जी। और उसमें एक डायलॉग है, वो है कि ताकत से ज्यादा नियत की जरूरत है
3: जी।
5: तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है इस सेक्टर में वो यही रहा है कि जब नियत बन जाती है, जब हमारे किसान भाई ये नियत बना लें कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, अगर इन तीन चीजों के नियत बना लें तो आपकी सरकार, हम जैसे गैर सरकारी संस्थाएं, हर तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं, आपके इस काम में आपकी ताकत बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ नियत बनाइए।
3: जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए क्योंकि जलवायु परिवर्तन का एक इस तरह का जो वैश्विक खतरा है वो भी हम देखते हैं और उस वजह से किस तरीके से जहां पर हम लगातार जो बारिश का असामान्य वितरण है वो हमारे सामने भी आता है, क्या ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा चुनौतियां रह सकती हैं और जो समस्या अभी है जो पानी कम होता जा रहा है ये और भी ज्यादा विकराल रूप ले पाएगी?
5: एब्सोल्युटली, ये जो परेशानी है क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ेगी और इसके लिए सबको आगाह होना है। बरसात होगी तो बहुत होगी, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, दरिया सूखेगी, तो इस संदर्भ में और इस चीज से हम आंखें बंद करके नहीं जी सकते
3: जी।
5: तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई और घर में रहने और हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति उसके लिए प्रिपेयर करे, क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ चले, अपने वर्षा जल संचय करें और ताकि जब अधिक बरसात हो तो बह ना जाए, वो आपके पास समेटी जाए, आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाए और जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें।
3: जी, तो बिल्कुल। तो ना सिर्फ किसान बल्कि जो हमारे शहरी क्षेत्रों में लोग हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि वर्षा का जो पानी है इसका संग्रहण करें, संचयन इसका करें।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आज से कुछ साल में कुछ ही साल बाद 50% जनता जो है भारत की वो शहरों में ही रह रही होगी, तो शहरों में की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, शायद ज्यादा, क्योंकि अगर आप वहां ऐसा नहीं करेंगे तो वहां लड़ाई होगी। जब इतने सारे लोग इतनी छोटी जगह में बिना पानी के रहेंगे तो शांति नहीं रह पाएगी। तो अपने घर परिवार को बचाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और अपने बच्चों को नौकरी देने के लिए, अगर आपके पास पानी नहीं होगी तो ना फैक्ट्री चलेगी, ना इंडस्ट्री चलेगी, ना कंप्यूटर बनेगा, कुछ नहीं होगा।
3: बिल्कुल।
5: तो इसीलिए शहरी लोगों की शायद ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, समझ भी है, और उनको न केवल अपने यहाँ पर अपने गांव पीछे जो अपने गांव हैं उनके लोगों को भी पूरा पूरा सपोर्ट करना है कि वो हर प्रकार से वर्षा जल संचय करें।
3: और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो आवश्यकता है पानी की वो हम सबकी है, फिर चाहे हम गांव की बात करें, शहरों की बात करें, जो पानी है वो सब जगह एक सा है, उसका जो महत्व है वो एक है। और खासतौर से डॉक्टर मनोज आपसे भी जहां जानना चाहेंगे, लगातार जो जागरूकता है वो फैलाई जा रही है, किस तरीके से पानी की बचत हम कर सकते हैं, वर्षा जल संरक्षण जो है आपने बताया कि किसानों की जो आमदनी है इसके जरिए भी दोगुनी हो सकती है, और किस तरीके से यहां पर अब हमें कदम उठाने होंगे जिससे आने वाले समय में इस तरह की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो हमें नजर ना आए।
4: इसमें हम लोगों का एक आदमी का रोल नहीं है, सरकारी गैर सरकारी, किसान, शहरी क्षेत्र के नागरिक, हर आदमी का इसमें एक रोल है जो पानी को इकट्ठा करने के लिए और पानी का उचित इस्तेमाल करने के लिए। उसके लिए हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय हो या भारत का कृषि मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे वो नहरी क्षेत्र में अब नहर न बना के अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क बनने की योजनाएं हैं और जैसा बन रहा है, और इन सबको तैयारी करके अगर हम पानी का इकट्ठा कर लेंगे तो उचित उपयोग जरूरी है। उचित उपयोग करेंगे तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, उचित तरीके से उगाएंगे तो हमारी उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी और अपने हमारा गांव और खुशहाल होगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारा देश आप समझ सकते हैं कि कितना तरक्की करेगा। आज इसी उसका स्टार्ट सबसे मुख्य रूप से पानी है। अगर पानी को हम बचा के रखेंगे तो हम ये मान के चलें कि चाहे वो हमारे पास बैंक में कितना पैसा हो, अगर पानी उपलब्ध नहीं है या हमारी जमीन के नीचे पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ाई गई या सतह रूप में हमने पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ाई गई तो ये सारी तरक्की बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरा तो सबसे अनुरोध है, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के नागरिक हों, गैर सरकारी संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं, जो हम लोगों के किसी मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, कृषि के वैज्ञानिक हैं, जो एक एक आदमी काम कर रहा है पानी को बचाने के लिए, उन सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी इस मिशन को हम कामयाब कर पाएंगे।
2: किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपने लगातार जल संरक्षण को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, आपने जाना कैसे आने वाला समय भयानक हो सकता है। किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत आवश्यकता है, हमें पानी की बचाव की आवश्यकता है, ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू अन्यथा पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस पद्धति में कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई हो सके, ऐसी सिंचाई को हमें करने की आवश्यकता है। साथ ही जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने हमें जैसे बताया कि फसलों को पानी की नहीं नमी की आवश्यकता होती है, तो किसान साथियों कहीं ना कहीं हमें इन बातों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास हमारे जितने भी जल स्रोत है उसमें से हम काफ़ी पानी बहाते हैं और पानी का काफी पानी हम बर्बाद करते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें अपने रुख को मोड़ने की आवश्यकता है, हमें यहाँ पे सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज़।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। तो चाय की चुस्कियों के साथ, दिल से निकली हुई बातों के साथ शुरू करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड, और दिल से स्वागत करते हैं आचार्य राजकुमार बिरला जी का। तो आचार्य राजकुमार बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
2: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ज्योतिष के ऊपर में कुछ ऑथेंटिक डिस्कशन होगा और इससे हमारे श्रोता और हमारी पब्लिक जो भी सुन रहे हैं उनको लाभ होगा।
1: बिल्कुल सर, हम भी इसीलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप 20 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1,00,000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मैं आपको जानती हूं तो मैं ये वाउच कर सकती हूं कि जो भी नॉलेज आज हमारे साथ साझा होने वाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं सर आपके सफर से। मैं आपको थोड़ा सा बचपन में ले जाना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी और हमारे श्रोतागण भी जानना चाहेंगे कि आपको ये सफर शुरू कैसे हुआ, किस तरह से आप ज्योतिष में आए, इस प्रैक्टिस में आए, क्या कोई एक मोमेंट था, एक लम्हा था जिसने आपको पुश किया, या ये आपकी चॉइस थी जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र होती गई, क्या जर्नी रही सर आपकी?
2: वैसे तो मैं कहूंगा कि ज्योतिष हमेशा उस इंसान को ढूंढती रहती है जो इसकी कदर करता है, और अपने आप ज्योतिष ही उस इंसान के अंदर में ये नेचर में या उसकी माइंड में ये थॉट लाती है कि इसकी तरफ उसकी जिज्ञासा, उसका इंटरेस्ट ग्रो होता है। पर मेरे साथ ये उल्टा था
1: जी।
2: 90 से लेके 95 तक का जो मेरा एक 5 साल का एक पीरियड था, ये हमारी लाइफ का एक बहुत टफ पीरियड था। और उस पीरियड के अंदर में इंडिया के टॉप मोस्ट उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप मान लीजिए कि 95 में एक एक एस्ट्रोलॉजर जिसकी फीस 15,000 से 20,000, 25,000 रुपए थी, उस सबको हमने कांटेक्ट किया था। कि ये हमारी सोच थी उस समय कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास में कोई मैजिक स्टिक होती है और वो उसको घुमाते हैं और घुमाने से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो बता देते हैं।
1: राइट।
2: इस सोच के साथ में 5 साल हम भटके।
1: 95
2: के अंदर में एक परिवर्तन हुआ लाइफ में कि मुझे थोड़ी सी नफरत होने लग गई थी इन लोगों से। और मैं इनको एक्सपोजर करने के लिए कि यार ये लोग करते क्या है, मैं इस थॉट के साथ में मैंने ज्योतिष को सीखना स्टार्ट किया।
1: वाओ।
2: मेरे पापा का एक इसमें बहुत स्ट्रांग कंट्रोल रहा है और वो हमेशा पंचांग देखते रहते थे, तो मुझे लगता था कि बेसिक तो मेरे को यही सिखाएंगे, तो मैंने वहां से शुरुआत करी। और 98 तक मैं बुक वॉर्म था, किताबी कीड़ा की तरीके से आप कह सकते हो कि मैं इस किताब से पढ़ा, उस किताब से पढ़ के मैं सीखता रहा, ये करता रहा। 98-99 में मुझे ऐसा लगा कि यार इस तरीके से तो ज्योतिष हो नहीं सकती है। कि अगर मैं कुंडली आएगी और मैं किताब खोलूंगा और उसको पढ़ूंगा, फिर मैं प्रिडिक्शन लिखूंगा, तो इससे तो क्लाइंट के ऊपर में या किसी भी तरीके से अगर किसी की मैं कुंडली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है
1: जी।
2: 2000 के अंदर में एक गुरुजन से मिलना हुआ और उन्होंने जब मेरी कुंडली, मेरा हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने कहा ये बिजनेस नहीं करेगा, इसको मेरे पास भेज दो, ये ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा नाम करेगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उन्होंने मुझे आईकास्ट में एडमिशन करवाया और वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आईकास्ट में जब पढ़ने जाते हैं तो पहले 6 मंथ जो होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। बोरिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे

0: रोड साइड की जो ज्योतिषी होती है वो है, एक्चुअल ज्योतिष कुछ और है। एक्चुअल ज्योतिष का मकसद है कि आप मानव के शरीर पे पड़ने वाले पंचभूता जो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश तत्व है उसको उसके कर्म सिद्धांत से कनेक्ट करते हुए उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को आप रीड कर सकते हो और उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में उसको गाइड कर सकते हो कि भैया तेरी बॉडी में तेरे नेचर में पर्टिकुलर एलिमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसको तेरे को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है।
1: तो बहुत ही खूबसूरत
0: जी, आयुर्वेद भी यही बोलता है, आयुर्वेद भी ये बोलता है कि इंसान पंचभूता से कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी भी एक ही बात कहती है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर फाइव एलिमेंट्स।
1: बिल्कुल सर, इसको अगर आपने जब शुरुआत की अपने शुरुआती दौर में, तो जब आपने आईकास में पढ़ाई की तो किस तरह से कर्म सिद्धांत को समझाया गया, क्या हमारी भगवद गीता से उसे जोड़ के समझ सकते हैं आप किस तरह से, बिकॉज आप कर्मा यू नो प्योरिफिकेशन पे भी काम करते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस बिजनेस लव रिलेशनशिप्स एंड कर्मा पे बहुत फोकस है आपके काम में, तो ये जो आपकी जो फील्ड्स हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं वो आपने कैसे चूज की और कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो रूट कॉज है, उसी से सब कुछ शुरू होता है और उसी तक जाके सब कुछ खत्म होता है। तो कैसे जो हमारे श्रोता हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं वो अगर कुछ भी नहीं करें तो ये अगर कर लें तो शायद जीवन थोड़ा सा और सुधर सकता है, तो अगर कर्म सिद्धांत को थोड़ा इलैबोरेट करें सर और आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें।
0: देखिये भगवद गीता ही एक बेस है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए अगर उसको अपने कर्मों को एलोबरेट करना है, उसको अपने कर्मों को समझते हुए इस जीवन का मोटिव पाना है। तो भगवद गीता जिसने नहीं पढ़ी मैं कहूंगा कि उस इंसान ने सिर्फ जो एक थोपी हुई जिंदगी है, मतलब जैसे जन्म मिला माँ बाप ने बड़ा किया पढ़ाई करवा दी शादी करवा दी बच्चे हुए वापस उनके बच्चे हुए, बस ये एक जो साइकिल है ये एक थोपा हुआ साइकिल है, उसको बस एक मनुष्य की योनि के निर्णय जी करके वो चलता बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: और जिसने भी भगवद गीता को पढ़ करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसने कर्म समझा कि हर कर्म का एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ऐसी हर कर्म का एक एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है, और हम कहते भी हैं कि कर्मा रिटर्न्स बैक, जिसने जो बोया है वो उसी का पेड़ काटेगा। ठीक है, तो लोग बाग आज छल कपट करके अपने आप को कुछ समय अवधि के लिए अपने आप को खुश कर लेते हैं कि बहुत मैंने पैसा कमा लिया, उसका पैसा मेरे पास आ गया, या मैंने किसी को ऊपर चढ़ते हुए को नीचे गिरा दिया और मैं ऊपर चढ़ गया, तो ये एक समबिंग पीरियड तक होता है। जैसे ही आपके संचित कर्म मतलब क्या, जो कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए थे, जो कर्म आप इस लाइफ में कर रहे हो, वह सब आपके संचित कर्मों के अंदर में एड ऑन होते जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो किताब है उसके अंदर में सारे कर्म लिखे जाते हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारी ज्योतिषी भाषा के अंदर में जो जज का ओहदा मिला है शनि को
1: जी,
0: वो उसके रिजल्ट्स देते हैं कि तुमने अच्छा किया है तो तुम अच्छा भुगतोगे और तुमने बुरा किया है तो तुम इस जन्म में बुरा भी भुगतोगे। तो हम हर इंसान को मैं एक बात बोलता हूँ, तुम दुनिया के हर कैमरे से बच सकते हो, एक कैमरा ऐसा है जो शनि भगवान का है, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और वही कर्मों के राजा हैं, वही कर्मों को कंट्रोल करते हैं, वही आपके कर्मों को हमेशा देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि इसने इच्छित रूप से या अनिच्छित रूप से जो कर्म किया है उसमें इसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए।
1: राइट।
0: अब बात करिए अपने कर्मों की, तो मैं इस कर्म की डेफिनेशन को एक शॉर्ट में, क्योंकि कर्म तो बहुत लंबे जाएंगे क्योंकि ये बहुत डीपली बैठ रहे हैं
1: जी,
0: मतलब आप अगर कुछ चीज सोच भी रहे हैं तो ये भी आपका एक कर्म है, पर ये डीप मैटर हो जाता है। अभी सिर्फ बात करते हैं, तीन
1: थॉट भी कर्म है। ओ वाओ,
0: करेक्ट करेक्ट
1: जी जी।
0: अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को उस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं उसका बुरा करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप किसी का पॉजिटिव सोचते हैं, भला सोचते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी का भला करने के लिए सोच रहे हैं तो उसका भला भी होगा, आपका भी भला होगा। तो मेनली जो तीन तरह के जो कर्मों के सिद्धांत बताए हैं, जो वो है संचित कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए, जिसका घड़ा जिसका एक मटका लेकर के हम इस जीवन में आए हैं, वो हमको भुगतने उसको दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी उपाय नहीं ठीक कर सकता, वो आपको भुगतने

0: बाद में सेकंड स्टेप में आते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या? वह कर्म जो आप इस जीवन में करोगे
1: जी,
0: और यही वो कर्म होते हैं जिससे आप जो आपको संचित कर्म मिले हैं उसके रिजल्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं, पर हटा नहीं सकते।
1: अच्छा।
0: अगर आपका एक्सीडेंट लिखा है, एक टाइम पीरियड आ रहा है कि आपको मार्केश की महादशा है, बादकेश की महादशा है और मार्केश का प्रत्यंतर है, तो यह सब चीजें एक इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई घात होने वाली है।
1: अच्छा।
0: अब अगर आप क्रियामान कर्म अच्छे कर रहे हैं, आप जैसे सपोज करें महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि एक्सीडेंट तो होगा पर छोटी मोटी खरोच, छोटी मोटी चोट लग करके आप बच जाओगे और जीवित रहोगे। पर अगर आपको सब चीजें नेगेटिव चल रही है और आप तो कहते हो कुछ नहीं होता ये चीज, और जैसे सामने आपको बोल दिया है रोड पे गड्ढा है, आप कहते हो मेरी तो मेरे पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, गड्ढा वड्ढा क्या होगा? अरे भाई, जैसे ही तुम फुल स्पीड में होंगे उस गड्ढे से तुम्हारी स्टीयरिंग बिगड़ेगी और तुम ऑफ द ट्रैक चले जाओगे।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो यहाँ पे जो सेकंड जो मेन क्रियामान कर्म है, यही आपके वो कर्म है जो हम आपको गाइड करते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है कि आप ऐसे अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करो। आपके जीवन में अगर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है तो इस अग्नि तत्व को कम करने के लिए जल तत्व को कैसे आप बढ़ाओगे, इस तरीके से ही हम एनर्जी को बैलेंस करने की बात करते हैं। और इसी के आगे जब हम जाते हैं वो है हमारा प्रारब्ध। वो प्रारब्ध ये है कि हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अगर मैं अच्छी सोच लेकर चलता हूँ, मैं दीन दुखियों का भला कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, तो नेचुरल वो सब दुआएं मेरे जो आगामी कर्म, जो मेरे संचित कर्म जो बनने वाले हैं पास्ट एक जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो मेरे को एक अच्छी गोल्डन लाइफ को इंडिकेट करते हैं।
1: राइट।
0: तो हम बहुत बार आपको सुनने में मिलता होगा कि देखो मैं तो इतना भगवान को मानता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, पर मैं इतना दुखी हूँ, और वो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं करता है, वो तो भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगाता है और वो ऐश कर रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत बार हम ये महसूस करते हैं जी,
0: है ना। तो इसको आप समझे, ये आपके कर्मों का या किसी ग्रह का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आपसे पर्सनल ग्लिच नहीं है जो आपको वो नुकसान दे रहा है। यहाँ आपके सब कर्मों का ही एक लेखा जोखा है कि पास जिंदगी में आपने बुरे कर्म किए थे तो भी आप बुरे कर्म भुगत रहे हो। अगर आप अपने कर्मों को चेंज करते हो क्रियामान कर्मों से, तो उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उनको बैलेंस कर सकते हो और अपना फ्यूचर, अपना प्रारब्ध बढ़िया बना सकते हो, जो आपको लेटर ऑन मिलता है।
1: जी जी बिल्कुल। इन्हीं बातों से हम आगे और आपसे जानेंगे कि एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं। जैसे आपने फाइव एलिमेंट्स की बात करी, तो इस गीत के बाद हम उस पे आएंगे और जानेंगे राजकुमार बिरला जी से। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जो तुम तोड़ो पिया, फिल्म मीरा।

0: आप बहुत आई थिंक एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपने शुरुआती हमारे इंटरव्यू से हमें बताया है, तो मैं एग्जाम्पल से जानना चाहूंगी, जैसे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोई एलिमेंट कम है या ज्यादा है तो आप उसे किस तरह की कुछ रेमेडीज देते हैं, और जो बाय एंड लार्ज लोग हैं जैसे जो हमें सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं डेली लाइफ में जो लोग कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को बैलेंस में रख सकते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें।
1: जी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का है तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके समझाता हूँ कि कैसे, पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल कॉज क्या है।
0: जी
1: तो जब हमारे पास में किसी पर्सन की कुंडली आती है तो हम उसके पास्ट और प्रेजेंट को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं वाकई में जो इसकी कुंडली दिखा रही है वही सच है, या इस इंसान ने अपने आप को बदल लिया, या ये इंसान किसी इन्फ्लुएंस के अंदर में आकर के, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपकी जो मित्रता है वो सात्विक लोगों से है तो आप सात्विक नेचर की तरफ बढ़ोगे, अगर आपकी मित्रता तामसिक लोगों से है तो वो आपको तामसिकता की तरफ बढ़ा देगी। तो हम उसको रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स वो बता रहा है बाकी में ये उसका चार्ट पे इंडिकेट करता है, या जस्ट ये एक टाइम समिंग पीरियड के लिए है, या इसको कोई पास्ट लाइफ के कोई ऐसे श्राप या ऐसे कोई पाप मिले हैं जो इसको भुगतने
0: हुँ,
1: क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर उसके कर्मों से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ और मैं ही उसको समाधान बता रहा हूँ, तो मैं भी वहां पे कहीं ना कहीं एक कर्ता के रूप में उसकी लाइफ में आ रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ मुझे अपनी, जहाँ मुझे अपनी टेंशन होती है उतनी मुझे क्लाइंट की भी होती है कि अगर इसकी लाइफ सुधर गई तो इसका पुण्य मुझे मिलेगा, और अगर इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ी और इसने ही मुझे दुखी होकर के कुछ गलत बात बोली या कोई, जैसे अपन कहते हैं ना, बद्दुआएं देना,
0: बद्दुआ निकली। जी जी,
1: है ना। जैसे आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं, कोई जना 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, मेरे पास में मैजिक स्टिक है, मैं आपकी मैजिक स्टिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और जब वो चीज नहीं होती है तो आपकी निश्चित बात है आपकी बद्दुआ मिलेगी, क्योंकि उस इंसान ने वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैसे कमाए हैं या कैसे इंतजाम किया ये उसको पता है।
0: ये उसको पता है, बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम एक्चुअली में, जब हम हॉरोस्कोप में चेक करते हैं कि यार वाकई में ही इसके खुद के कर्म खराब थे और ये सजा भुगत रहा है, तो सबसे पहले तो हम जो कर्म खराब थे उन फिल्टर्स को लगा करके उस एरिया को उस इंसान के कर्मों से पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं कि तू जो अपने आप क्रियामान कर्म करेगा इस पर्टिकुलर प्लेनेटरी एलिमेंट्स के साथ में करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी के कुंडली के अंदर में सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, खराब बोले तो इन द सेंस वो पीड़ित है, वो राहु के साथ में है, वो शनि केतु के साथ में है ना, या बहुत ज्यादा उसका जो षटबल है वो वीक हो रहा है, उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में साफ पता चलता है कि इसको कहीं ना कहीं पिता से सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इसके पिता इसके लिए सपोर्टिव हो जाए, या ये अपने पिता को डेली ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे, ये अपने पिता को डेली रेस्पेक्ट देना शुरू कर दे और उनके हाथ इसके सर पे आ जाएगा, तो ये इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर ले, ये अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना शुरू कर देगा, इसका जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान ही रहेगा, वो ईगो में कन्वर्ट नहीं होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खराब सूर्य का मतलब है ईगो होना। जी,
1: ईगो होना, और ईगो होना मतलब वो इंसान सिर्फ अपनी ईगो मैं शब्द के आगे आके मर जाता है कि मैं ही क्यों करूं, यही मैं हर रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल का हो, चाहे ऑफिसर्स के साथ में हो, वहां पे वो मैं की वजह से हर रिलेशनशिप खराब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कि भैया अपनी जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी क्या होगी, अग्नि तत्व है।
0: जी,
1: इस अग्नि तत्व को न्यूट्रलाइज करो, सूर्य को डेली ऑथेंटिक वे में जो एनर्जी से अपनी एनर्जी को उस पानी में डाल करके आप सूर्य को चढ़ाएं और उसको नमन करें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उसके साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य कवच का पाठ करें जिससे आप सूर्य भगवान को सिर्फ न सिर्फ जल चढ़ा के ठंडा कर रहे हैं, उनको एपीस भी कर रहे हैं, उनको खुश भी कर रहे हैं कि भाई मैं आपको नमन करता हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मेरे जीवन में शीतलता लाना, आप मुझे समझ और सद्बुद्धि देना।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे एलिमेंट्री को पकड़ते हुए हम करते हैं। कोई जना कहता है कि भाई मेरे लाइफ के अंदर में कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती है, तो जब जैसे ही ये वर्ड आता है स्मूथ नहीं होती है, इट मींस कहीं ना कहीं उसके एक लॉन्ग टर्म कार्मिक पैटर्न बिगड़ा हुआ है, उसको जिंदगी में परिश्रम के अलावा उसको सफलता नहीं मिलेगी।
0: जी,
1: और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जैसे भी जितने भी ये लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे जिंदगी में स्टेबल सफलता नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे इनकी कुंडली के अंदर में सबसे ज्यादा शनि प्लेनेट का एक इन्फ्लुएंस होता है जो उनको बोलता है कि शैने शैने चलो मैं सफलता दूंगा, पर वो उतावलेपन के अंदर में कभी भी शैने शैने नहीं चलते हैं, धीरे धीरे नहीं चलते हैं, वो रातों रात अमीर बनने के लिए चाहते हैं। और जहां पे भी पेशेंस वर्ड का नाम आता है, जहां पे भी पेशेंस की बात होती है कि आप में कितना धैर्य है, वहां पे कनेक्शन हो जाता है शनि से।
0: बिल्कुल।
1: तो हम एक ही बात चेक करते हैं कि भैया तेरे अंदर में पेशेंस कितना है, क्या तू टिक करके बैठने वाला इंसान है या तू चलता फिरता इंसान।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही एक सब तरीके हैं जिसमें हर प्लेनेट की एक एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी लाइफ के अंदर में अर्थ एलिमेंट ग्रो करना है कि वाटर एलिमेंट ग्रो करना है कि फायर एलिमेंट ग्रो करना है, एयर एलिमेंट ग्रो करना है कि इसको वाटरी एलिमेंट से कनेक्ट करना है।
0: बिल्कुल,
1: तो पंचभूता को बैलेंस करने की बात।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। सर आगे चलते हैं, क्योंकि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जो 12 हाउसेज हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब एक बहुत ब्रीफली हमें बता सकें कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक एक नॉलेज पहुंचे कि हाँ कुंडली ये होती है। इलैबोरेटली ऑफकोर्स हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वो बहुत बड़ा एक सागर है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, बट जस्ट एक बेसिक जो हमें, जो बिल्कुल आज पहली बार ज्योतिष के बारे में सुन रहे हैं उनके लिए अगर हम बताना चाहें कि कुंडली होती क्या है और वो क्या क्या कैरी करती है, तो अगर वो साझा कर सके। और इसी से मेरा अगला सवाल है कि अगर कुंडली ही सब कुछ है तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि आप कर्म करो, कर्म सिद्धांत कहाँ पे बैठता है, इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट आया है और जन जन्मांतर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्री विल बड़ी है या डेस्टिनी बड़ी है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: जी आपने जो 12 हाउसेस की बात करी है, अगर मैं ये 12 हाउसेस पे आप और मैं अगर एक महीने तक भी अगर डिस्कशन करेंगे तो यह खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर मैं कहूंगा कि इन 12 हाउसेस को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले चार त्रिकोण को समझना होगा। चार त्रिकोण क्या, जैसे भाव नंबर 1, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 9, ये हो गया आपका धर्म त्रिकोण। ठीक है, जब किसी इंसान की कुंडली में धर्म त्रिकोण के जो ये तीन हाउसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो ऐसे इंसान अगर अपनी लाइफ को धर्म से संबंधित कामों में, अब धर्म क्या, मैं धर्म ये नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हो तो आपका धर्म क्या हुआ, बिजनेस करना, धंधा करना।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, तो यहाँ पे उस धर्म की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक स्पिरिचुअलिज्म, सिर्फ एक भगवान, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपका धर्म हाउस एक्टिव है तो आप सुबह से शाम तक सिर्फ अगरबत्ती लेके भगवान के सामने बैठे रहोगे आपका काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ कर्म की बात हो रही है, आपका जो धर्म है वो क्या है, बिजनेस करना। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ सेकंड त्रिकोण की, उसको कहते हैं हम अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण मतलब हर चीज का अर्थ, सिर्फ पैसा नहीं, कि मुझे अगर कोई भी मेरे को बात कही गई है मुझे उसका अर्थ निकालना है, मुझे उसका मतलब निकालना है, मुझे उस अर्थ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। तो ये जो अर्थ त्रिकोण वाला जो होता है, जिसको हम लोग फाइनेंस से कनेक्ट करके, आजकल जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इसको फाइनेंस से कनेक्ट कर दिया गया है, वो होता है हमारा 2, 6 और 10 का त्रिकोण।
0: ठीक है,
1: सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस।
0: राइट,
1: तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंसान पैसे के पीछे भागेगा, काम के पीछे भागेगा, धन कमाएगा। पर यहाँ ये सिर्फ ये नहीं है, अर्थ का मतलब है हर जिंदगी के उसका एक मूल तत्व, उसका एक अर्थ समझना जो आपको एज जिम्मेदारी, एक जवाबदारी के रूप में मिला है, उसको आपको एक्टिव करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी।
0: राइट,
1: इसके बाद में थर्ड जो त्रिकोण आता है वो है 3, 7 और 11, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th। तो ये जो त्रिकोण है इसको कहते हैं काम त्रिकोण।
0: जी,
1: अब जब नाम आता है काम का तो लोगों के दिमाग में एक ही तरफ जाता है काम, काम वासना वाला।
0: जी,
1: ये काम वासना वाला काम नहीं है, ये काम है क्रिया का, आपकी स्किल्स का, आपकी डेडिकेशन का, कि कैसे आप अपनी स्किल्स, अपनी इच्छा पूर्ति में कन्वर्ट करते हो, कैसे आप साझेदारी या जीवन साथी के साथ काम करते हुए अपनी लाइफ के मोटिव, अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी जो आप फुलफिलनेस की बात कर रहे हो उसको, डिजायर को पूरा करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं लास्ट फोर्थ जो हमारा त्रिकोण था वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है 4, 8 और 12 का। अब मोक्ष का मतलब क्या, एक तरीके से आप ये समझते हो कि जिंदगी का त्याग, जिंदगी से मोक्ष मिल जाना या मेरी, पर मोक्ष कब मिलता है जब आपकी इच्छाएं फुलफिल हो जाती है और आपका जीवन से मोह भंग हो जाता है। तो पहला मोह कहाँ से आता है, परिवार से। पहला मोह होता है आपके घर परिवार के हर सदस्य से जिससे आप कनेक्टेड हो, तो वो हो गया आपका फोर्थ हाउस। दूसरा है इस जीवन में जो खोजने आए हो, इस जीवन के अंदर में जो आपकी रिसर्च है और इस जीवन का जो एक आपका एक हिडन मकसद था वो है आपका 8th हाउस।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे लास्ट का जो है 12th हाउस, वो है 12th हाउस मीन्स स्काई, द अनसीन पावर, अनसीन पावर विच यू आर गेटिंग फ्रॉम गॉड और यूनिवर्स। तो जब आप इस 4th हाउस में सबसे ज्यादा एक्टिव हो, 4, 8 और 12 जब आपका सबसे ज्यादा एक्टिव हाउस है इस कुंडली का, तो जिंदगी का मोटिव है कुछ ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसा आध्यात्मिक खोज, कुछ ऐसी चीज की खोज करना जो आज से पहले किसी ने नहीं करी है, आपको करके इस जीवन का मोटिव पूरा करना है। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक भटक रही है उस भेड़ चाल में। जैसे मैं कहूं कि एक डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर है, तो वो कहेगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने ताकि वो मेरे हॉस्पिटल को संभाले।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ वो अपने बेटे को उसके कर्मों से नहीं पकड़ रहा है, वो अपनी एक जिद को थोप रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसी स्थिति में वो बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा पर वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करेगा। एक समय आने के बाद में उसको वो पाथ बोरिंग लगेगा कि यार मेरी जिंदगी का तो मोटिव ही नहीं है। फिर क्या होता है, जब जब सब कुछ काम हो जाता है तब जाके वो बोलता है यार अब मेरे को धर्म में जाना है, मुझे अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना है। फिर वो आध्यात्मिक योगा मेडिटेशन की तरफ भटकता है, अपनी मस्तिष्क की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, तो वहां जाकर के उसको फिर अपना मोटिव मिलता है। तो हम बाय बर्थ से अगर सपोज करो कि मैं अगर बच्चे को सीधा ये ना कहूं कि तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही लेसन देना है, तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही चैप्टर देना है, मैं इसको ये कहूं कि हर साल तुम्हें एक नया नया क्लास ज्वाइन करना है और नए नए चैप्टर को सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, और जब तुम ग्रेजुएशन में आ जाओगे तब तुम्हें किस फील्ड में जाना है तुम डिसाइड करो।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ हम बाय बर्थ से ही बच्चों को एक ही बात कहते हैं, मैं डॉक्टर तुम भी डॉक्टर बनोगे, मैं इंजीनियर तुम भी इंजीनियर बनोगे, मैं लॉयर तुम भी लॉयर बनोगे।
0: बिल्कुल।
1: वापस ये पॉइंट आकर के कर्मों पर आके बैठ जाता है
0: जी,
1: कि आपकी डेस्टिनी ने, मतलब डेस्टिनी एज ए मदर आपको मिली और मदर डेली आपके सामने थाली लाके रख देती है खाने की कि बेटा खा ले। एक बार मदर हाथ से खिला देगी, दो बार खिला देगी, एक एज तक खिला देगी, पर एक एज के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको खुद खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मदर ने तो डेस्टिनी परोस के दे दी कि भैया खाने की थाली बना दी है खा ले, पर उसके बाद तो आपको खानी है ना। तो वो हाथ जब तक उस खाने को लेके आपके मुंह तक नहीं जाएगा, जब तक आप ये कर्म नहीं करोगे तब तक वो खाना आपके स्टमक में नहीं जाएगा और उसके न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगी।
0: बिल्कुल।
1: सेम बात हॉरोस्कोप कहती है कि अगर एक समय विशेष आपकी लाइफ में हम इंडिकेट कर रहे हैं, एक समय विशेष हम आपकी कुंडली में दिखा रहे हैं कि इस समय विशेष को आप अपनी लाइफ में प्रॉपर चैनल करते हुए, प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए अगर यूज करते हैं तो आप उस लाइफ को बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को एक शनि की महादशा है
0: जी। ठीक है,
1: आज स्थिति क्या हो रखी है मार्केट के अंदर में कि शनि, राहु, केतु, मंगल के नाम से लोगों को हवा बना के डराया जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत डराया जाता है जी,
1: जी। और जितना डराया जाता है उतना ज्यादा क्लाइंट पैसा निकालता है।
0: करेक्ट।
1: तो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया कि डराओ और पैसा निकलो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका किसी पर्टिकुलर ग्रह से कोई पर्सनल ग्लिच या दुश्मनी है जो वो आपको ही परेशान करेगा। ऐसा नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: ग्रह का आपसे कोई पर्टिकुलर ग्लिच या दुश्मनी नहीं है, वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपको किस हाउस में, किस राशि में, किस डिग्री में, किस नक्षत्र में मिला है, ये आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे उन्होंने डिसाइड किया। आपका जब बर्थ हुआ था उस समय जो स्काई का मैप था, जो आकाशीय मानचित्र था, वही तो आपकी कुंडली है
0: जी,
1: और वही कुंडली आपको मिली है कि आपको भुगतना है। अब आपको ये पता है कि यार शनि मेरे को नीच का मिला है, तो नीच का शनि है तो

0: आप अपनी कुंडली से किसी ज्योतिषी तांत्रिक कोई उपाय किसे क्या उस शनि को निकाल के बाहर फेंक सकते हो? नहीं कर सकते, वो वहीं रहेगा जब तक आप जिंदा हो।
1: करेक्ट,
0: आपको आपको उसके साथ में जीना आना चाहिए, आपको उसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा
1: बिल्कुल।
0: कि मुझे अगर शनि नीच का मिला है तो अब इस नीच के शनि के रिजल्ट्स मैं पॉजिटिव कैसे लाऊं, तो मुझे क्या करना है? सिंपल सी बात है, मुझे अपने कर्मों को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां मेरे पास में अकाउंट में बददुआओं से ज्यादा दुआएं इकट्ठी हो जाए।
1: करेक्ट,
0: जितनी बुजुर्ग लोगों की सेवा करेंगे, जितनी बुजुर्ग लोगों की दुआएं इकट्ठी करेंगे, आपकी जो पास्ट लाइफ की जो एक कनेक्टिविटी थी फ्रॉम सिंस एंड प्रॉब्लम्स, वो कम होते होते अब वो न्यूट्रल होकर के एक टाइम पे वो पॉजिटिव पाथ में चली जाएगी। तो जब हम बात करते हैं डेस्टिनी और फ्री विल की, तो फ्री विल तो को हर इंसान को मिलती है, पर वो फ्री विल को भी एक यूज करने का तरीका होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इस इंडिया के एक टाइकून, मैं नाम नहीं लूंगा, एक टाइकून बिजनेस फैमिली को देख लीजिए। ठीक है, फादर ने एक बहुत डाउन टू स्टेप एक ग्रोथ करके एक टॉप इंडिया के टॉप मतलब इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को पहचान बना करके अपना सारा बिजनेस दो बच्चों को दिया।
1: करेक्ट,
0: सेम दिया, सेम चीज थी, सेम ब्रांड दिया, सबको इक्वली दिया।
1: करेक्ट,
0: एक इंसान ने उसको जवाबदारी और जिम्मेदारी से नियम अनुसार धीरे धीरे करके संभाला।
1: बिल्कुल,
0: और एक इंसान रातों रात अमीर होने के लिए अपनी जो अपन कहते हैं ना चद्दर से पांव ज्यादा फैलाने वाली बात, वो फैला करके अपने भाई से ज्यादा जल्दी अमीर बनने के लिए प्रोग्रेस करी।
1: करेक्ट,
0: तो जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर में क्या होता है कि जब आप कोई द्वेष भावना या किसी चीज से लेकर चल रहे हो तो आपको रिटर्न बैक मिलता है। और एक ही फैमिली से जब हम कहते हैं कि आपका फ्री विल, तो आपको यही मिला था कि दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे।
1: बिल्कुल,
0: एक ही परिवार में पैदा हुए थे, दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, पर एक का सिल्वर स्पून तो आज भी कायम है, दूसरे का सिल्वर स्पून जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों को, अपने लाइफ पाथ को, अपने प्लेनेटरी वॉइस को, लैंग्वेज को नहीं समझा, और वो चाह रहा था कि मैं प्लेनेट को चलाऊंगा, जबकि प्लेनेट कह रहे थे हम तेरे को चलाएंगे।
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हमें समझाया कि कैसे सच में अगर भगवान सब कुछ आपको दे देगा तो आप ना उनका स्मरण करेंगे और फिर तो जीवन है ही क्या, फिर ये जीवन जीवन रहेगा ही नहीं, और आप क्यों ही कुछ करेंगे जीवन में। तो वो कर्म आपको कर्मठ बनाने के लिए, आपको उस पाथ पर लाने के लिए भगवान में, तो वो कर्म आपको कर्मठ बनाने के लिए, आपको उस पाथ पर लाने के लिए भगवान ने वो 1% अपने पास रखा है और 99% आपको दिया है, जिसमें आपकी बुद्धि है, आपके कर्म करने की शक्ति है और आत्मा है, मोटिव्स हैं। तो अगर उन सबको हम सही तरीके से एक साथ इस्तेमाल करें और सही डायरेक्शन में बढ़ें तो वो 1% भी आपका हो सकता है आपके कर्मों से। और बाकी डेस्टिनी तो है ही, वो अपना रोल प्ले करती
0: इसमें,
1: है
0: जी। इसमें आपको एक छोटा सा एक शास्त्रों का एक श्लोक आता है
1: जी,
0: अहम ब्रह्मास्मि।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए कि भगवान ने तो बोला है मैंने हर इंसान को ब्रह्मा बनने की शक्ति प्रदान कर रखी है, उसको अपने सातों चक्रा और अपनी कुंडलिनी पे वर्क करना है। सब कुछ एनर्जी आपको दे रखी है, आपके पास में वो अवचेतना है जिससे आप उसको चेतना बना करके आपसे एक लाख किलोमीटर दूर भी कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको आप अपनी टेलीपैथी से अपनी एनर्जी आप एक्सचेंज करके उसको अपनी याद दिलवा सकते हो। ठीक है, ये सब ऊर्जा भगवान ने आपको भी दी है। पर मैं अगर ये कह दूं कि भगवान ने तो मुझे ब्रह्मा बना रखा है, मैं तो ब्रह्मा हूँ और मैं तो इसको फ्री विल लेके चलता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा ना, वो ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर दी भी है और अगर मैं उसको कंटिन्यू एक्टिव नहीं रखूंगा, जैसे सेल को मैं अगर चार्ज नहीं करूंगा तो वो सेल भी डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मेरी अगर चेतना को मैं डेली एक्टिव नहीं करता हूं तो ये एनर्जी मेरी एक दिन आके खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने आपको ताकत तो दी है, अब जब तक आप कर्म करके उस ताकत को एक्टिव नहीं करोगे, उसको इनलाइटन नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, आप इंसान भी नहीं बन पाओगे। ताकत को एक्टिव नहीं करोगे, उसको इनलाइटन नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, आप इंसान भी नहीं बन पाओगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक जानकारी आपके साथ हमें साझा हो रही है। हमारे श्रोतागण आज बहुत कुछ इस एपिसोड से लेके जाएंगे, मैं ये यकीन रखती हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आगे चलने के लिए।

पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं, गीत सुन लेते हैं खूबसूरत सा, और फिर हमारे आखिरी सेगमेंट पर चलेंगे जहां पे मैं आपसे कुछ बेसिक रेमेडीज की बात करना चाहूंगी और एनर्जी एक्सचेंज की बात करना चाहूंगी कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं सर सबके बीच। पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म सौतन।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, जैसे जिंदगी का कोई फलसफा हो। आगे चलते हैं राज सर, आप जब इतने सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, अगेन मैं वापस कहना चाहूंगी कि आपने 1 लाख से भी ऊपर कुंडलियां आज तक देख ली हैं इन 2 दशकों में, तो इतने लोगों से जब आप कनेक्ट होते हैं, हर लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो आपकी एनर्जी कैसे डिप्लीट होती है और उसको आप कैसे बैलेंस्ड रखते हैं, और ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है जिसके बारे में आपने हमें बताया, वो किस तरह से वर्क करता है, और जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए इसके बारे में, किस तरह से इस चीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ रहे हैं तो वो एक एक कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और उसको वैल्यू देना, उसको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बात करें।
1: जी मैम, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि आपने जो शब्द कहा इसमें मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ये था कि पहले आपको ध्यान होगा ऑर्कुट चलता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑर्कुट चलता था, ये फेसबुक तो बाद में आया, ऑर्कुट चलता था ये, तो ऑर्कुट और उसी समय याहू के एक ग्रुप चलते थे, याहू पे ग्रुप हुआ करते थे चैट के।
0: राइट,
1: ये करीबन 2004-2006-07 की बात है जब करेक्ट, समय ये होते थे।
0: करेक्ट,
1: तो उस समय मैं प्रैक्टिस करने के लिए इन ग्रुप्स के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में होते थे जिसके अंदर में मतलब थाउजेंड्स के अंदर में लोग भाग होते थे
0: जी।
1: तो हम मैं उसको फ्री ऑफ चार्ज उनको मैं कंसल्टेंसी और रीडिंग दिया करता था। और मेरे को जब मैं एक इंसान को मैं जैसे दे रहा हूं, आज मैंने आपको एक रीडिंग दे दी, कल आप दूसरा नाम बदल करके फिर आ जाते हो,
0: बताइए,
1: और फिर वही होती है। और जैसे ही मैं अपने सॉफ्टवेयर में डिटेल डालता हूं तो मुझे पकड़ में आ जाता है कि यार ये इंसान तो कल भी मेरे पास में आया था या कुछ दिन पहले भी आया था और ये अलग नाम से आया था।
0: बताइए
1: आप, अब मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आप सोचो क्या वाकई में मैं सेम होनेस्टी से प्रिडिक्शन कर पाऊंगा इस चेतना के साथ में कि तुम मेरे साथ में छल कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सेम सिचुएशन
0: जी,
1: सेम सिचुएशन हुई 2006-07 से लेकर के 2010 तक, जब मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें करीबन 60,000 आदमी उस समय कनेक्टेड थे और डेली मैं प्रिडिक्शन करता था
0: जी,
1: फ्री ऑफ चार्ज, मतलब मेरे को एक था कि रोज कम से कम 100 हॉरोस्कोप को मेरे को देखना है और मेरे को रोज मेरे को यहाँ करना है, और यही मेरे पास में एक डेटाबेस इकट्ठा करने का एक जरिया था
0: जी।
1: जिससे आप हॉरोस्कोप की बात करते हैं, मेरा हॉरोस्कोप का डेटाबेस कलेक्शन जो है वो 1 लाख से ज्यादा हॉरोस्कोप की जो डिटेल्स है ये सब मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जब हॉरोस्कोप रीड करे थे कस्टमर से मिलकर के, अब प्रोफेशनली जो मेरे पास में आई मेरे पास में, इसलिए मैं रिसर्च बेस पे जा सकता।
0: राइट,
1: तो जब मैं देखता हूँ, अच्छा वहां पे क्या, वहां पे भी फ्री ऑफ चार्ज देता था, ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई चार्ज करते
0: जी।
1: तो आपको मैंने हॉरोस्कोप रीड कर दिया है, अब आपको एक नया प्रॉब्लम आ गया, कल फिर आप आए, अब आपके ही मैं कंटिन्यू रीडिंग दूंगा तो जो पीछे जने बैठे हुए हैं और भी जो बाकी के 55,000-60,000 जो जने बैठे हुए हैं उनका क्या। तो इस कंप्लेंट को निकालने के लिए पता है मैंने एक ट्रिक लगाई थी
0: जी।
1: एक ट्रिक लगाई थी
0: जी,
1: कि कोई भी जना जिसको अर्जेंसी है, जिसको जल्दी और उसको ब्रीड करानी है, वो एक किसी भी गौशाला अनाथ आश्रम वगैरह की एक रिसिप्ट ला करके यहाँ पे मुझे या वो पेश कर दे ग्रुप में या मुझे पर्सनली शेयर कर दे, मैं उसको पहला नंबर दूंगा।
0: वाओ वाओ,
1: ठीक है, आप विश्वास करेंगे उस 60,000 में से एक सिंगल आदमी
0: बताइए
1: ने नहीं किया
0: 60,000 जी।
1: उसमें लिखा क्या, अगर हम नकली इंटरनेट से अगर रिसिप्ट बना के दे देंगे तो क्या कर लोगे, ये रिप्लाई आए उस मैसेज के ऊपर, मैं आज भी ये मैसेज वहां पे पेस्ट है उस ग्रुप पे, उस पर रिप्लाई क्या आया, हम तो अगर फर्जी टिकट बना के दे देंगे। मैंने कहा तुम कर्म तो करो, तुम इतना भी कर दो,
0: इतना ही कर
1: दो तो भी मैं तुम्हें फ्री रीडिंग दे दूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उस समय मेरे को एक एहसास हुआ कि मैं जो नॉलेज का एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ किन लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्या ये लोग इसकी वर्थ भी रखते हैं, क्या
0: ये पात्र हैं, कुपात्र हैं कि सुपात्र हैं जी,
1: है ना। तो उस समय मेरे को ध्यान आया कि भली तो अपनी इच्छा से दे, पर एक बार देने की क्षमता तो रख, श्रद्धा तो रख, पर तभी मैं कुछ दूं। आजकल हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में, एप्लीकेशंस पे एक चल रहा है कि फ्री रीडिंग ले लीजिए, फ्री रीडिंग ले लीजिए, सब ने फ्री रीडिंग की पूछा। जब आप एक एक्सपर्ट के पास में कंसल्टेंसी लेने जाते हो और इस नॉलेज से जाते हो कि सिर्फ 5 मिनट में जब तक फ्री मिल रहा है तब तक ही इससे बात करनी है, जैसे एक समय खत्म हुआ और मुझे निकल लेना है,
0: बिल्कुल
1: आप यहाँ पे अपने कर्मों को खराब कर रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सामने वाले ने अपने ज्ञान का एनर्जी एक्सचेंज किया था आपके साथ, आपने उसकी काबिलियत, आपने उसके ज्ञान, आपने उसके नॉलेज की वर्थ नहीं समझी, और आप अपने मकसद से इससे 5 मिनट फ्री लेने के बाद में दूसरे के पास सबक पड़े।
0: बिल्कुल,
1: अब एक ने आपको कहा आपका काम हो जाएगा, दूसरे ने कहा नहीं होगा, अब आप ही कंफ्यूज हो कि वो सही है या ये सही है।
0: करेक्ट,
1: आपको अगर अपने फ्यूचर पे अगर रियली वर्कआउट करना है तो आप क्षमता रखें कि अगर कोई इंसान अपने ज्ञान को, अगर आज मैं 25 साल से नॉलेज में रखता हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरे पीछे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पीछे भी कोई है, तो मैं उनको भी ध्यान में रखूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि यार सब फ्री में है, मिला हुआ है ज्ञान, उसको बांटते जाऊं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी जो मेन क्लासिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जो मेन किताब है क्लासिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी को हम कहते हैं, वो है वृत्त पाराशर हुरा शास्त्र
0: जी।
1: उसके जो फर्स्ट अध्याय है उसके अंदर में पेज पे एक लिखा होता है कि एक तो नक्षत्र मणि मत बनना, ठीक है, दूसरा ये ज्ञान उस इंसान को मत देना जिसको इसकी वर्थ नहीं पता हो, जिसको इस पे विश्वास ना हो, जो सिर्फ इसका उल्लास या मजाक करने आया है।
0: बिल्कुल, उल्लास ही है 5 मिनट में जानने की कोशिश करना। बिल्कुल
1: मैम, मुझे 15 मिनट मतलब एक होरोस्कोप से उसके पास्ट और प्रेजेंट को मैच करने, क्योंकि इंसान को भी समय चाहिए होता है। मैंने बोल दिया 2011 में आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ था क्या, अब आप खुद 5 मिनट मेरे खा जाओगे 2011 को याद करने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि लोग क्या कहते हैं, अरे पास्ट छोड़ो फ्यूचर की बात करो। अरे भाई, जब मैं तेरा पास्ट नहीं रीड कर पा रहा हूँ, तेरा फ्यूचर क्या रीड करूंगा,
0: कैसे रीड करूंगा। यस यस यस,
1: ये फर्क होता है
0: जी,
1: कि हम जब क्वालिटी ऑफ रीडिंग देना चाहते हैं, जब हम किसी इंसान को रियली एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देना चाहते हैं, वहां पे इंसान उस चीज की वर्थ नहीं करता है, वो भटक रहा होता है उस पास्ट रीडिंग के लिए, जहां पे सिर्फ ओनली खोली लगन देखा और प्रेडिक्शन मार दिया।
0: करेक्ट,
1: ना दशा देखी, ना डिग्री देखी, ना कुछ देखा, पढ़ा पट क्या काम है, ये वचन ठीक हो जाए।
0: जी जी जी,
1: तो ये है। अब आपने पूछा उपाय के बारे में
0: जी।
1: देखो मैम, दुनिया क्या सोचती है और दुनिया क्या करती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं
0: जी,
1: ठीक है। मैं अपना आपको से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
0: हाँ जी,
1: कि इन 20-25 सालों में मैंने एक चीज को समझा है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का आपसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं है, कोई पर्सनल आपसे प्रेफरेंस नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करेगा।
0: राइट,
1: ठीक है, जो कुछ है आपका, आपका यूनिवर्सल एक कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक बुक है, जिसके अंदर में आपको पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है, जो आपको भुगतना है भुगतना है।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरा एक ही बात कहना है, कोई ग्रह अच्छा नहीं, कोई ग्रह खराब नहीं, कोई भाव अच्छा नहीं, कोई भाव खराब नहीं, ये आपके ऊपर में है कि आप उस भाव को, उस ग्रह को कैसे यूज करते हो, कैसे उसको अपनी लाइफ पाथ में यूटिलाइज करते हो।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। अब सेम बात अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आप डेली शिवजी पर जाओ, चल चढ़ाना, आपका काम हो जाएगा, तो ये भी एक वह झूठ हो गया। जो मैं एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा बुरा नहीं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि शिवजी आपका सब कुछ कर देंगे।
0: करेक्ट करेक्ट
1: जी, तो मेरा एक ही मानना है, एक होती है हमारी निष्ठा, एक होती है हमारी किसी भगवान के प्रति आस्था, और उस निष्ठा और आस्था के अनुसार अगर मैं कोई डेली की जो हमारी दिनचर्या थी, सूर्य को जल चढ़ाना, शिवजी को जल चढ़ाना, जीवन में जल तत्वों को न्यूट्रलाइज करना, तो ये तो हो गए मेरे दैनिक दिनचर्या के भगवान और आस्था के कनेक्शन, जो नेचुरल वे में मेरे कर्मों से जुड़ रहे हैं।
0: करेक्ट, बिल्कुल ज्योतिष उपाय जी
1: ये। हाँ, ये कोई ज्योतिषी उपाय नहीं हुआ,
0: नहीं है, ये दिनचर्या को बदलना है।
1: ये आपका एक भौतिक, आपके जिस परमात्मा को आपने पूजा है, जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, जिस परमात्मा को आप आपका परिवार मानते हो, उसको ग्रेटिट्यूड करने का तरीका है।
0: करेक्ट,
1: कि आपने जन्म दिया, मैं धन्यवाद हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। पर अब मैं कहता हूँ कि ज्योतिषी जाके बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो ऐसे अगर शादी होगी होती तो दुनिया में कोई कुंवारा ही नहीं रहता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब यहाँ आती है बात कि संकल्प आप कैसे उस चीज को आप शादी में कन्वर्ट करेंगे। उपाय कर रहे हैं, उपाय करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जल नहीं चढ़ाना, शादी नहीं होगी। मैं किसी भी इंसान को ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो शादी नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ जल चढ़ाने का मकसद तो बताओ, क्यों चढ़ा रहे हो, क्या चाहते हो। तो उसके पीछे हमारे शास्त्रों में संकल्प लेना बताया गया कि आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र, आप जा रहे थे वहां का स्थान बताते हुए भगवान को धन्यवाद करो, उनको को अपनी कृतज्ञता दिखाओ कि मैं आज आपके श्री चरणों में आया हूँ, आई हूँ, और मेरी एक मनवांछित अभिलाषा है कि मुझे एक सुयोग्य पत्नी या सुयोग्य वर प्राप्त हो
0: जी।
1: और आप मेरे इस जल को स्वीकार करके मुझे आशीष प्रदान करना
0: जी।
1: ये बताओ तो सही, सिर्फ जल चढ़ा दिया, हाँ मैं तो 16 सोमवार का व्रत किया और जल चढ़ा दिया, तो इससे पति या पत्नी नहीं मिलने वाले।
0: बिल्कुल,
1: आपको भगवान को अपनी निष्ठा बतानी है, मैं किस कार्य विशेष को लेकर हूँ। तो वहां पे कोई भी उपाय रेमेडी यूनिवर्सल नहीं हो सकती है, हर इंसान को अपना अपना काम करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार लोग आपने देखा होगा मंदिरों में दीपक लगे हुए होते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल
1: ठीक है। अब उस दीपक के अंदर में कितने तरीके तेल मिले हुए हैं उसको आप समझो।
0: करेक्ट,
1: आपने छायादान का नाम सुना, छायादान।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो छायादान क्या होता है, कांसे की कटोरी में तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके उस तेल का दान करना। इसको हम शनि का दान के रूप में कहते हैं कि जिसको शनि लगा हुआ है, शनि की छाया
0: जी।
1: अब एक इंसान ने ये छायादान करके उस दीपक में जो अखंड दीपक जल रहा है उसमें ये तेल डाला, ये बोल करके कि मैं शनि की शांति हेतु ये तेल डाल रहा हूँ।
0: करेक्ट।
1: एक इंसान ने उतारा करके उस दीपक में तेल डाला कि मेरे तमाम शारीरिक और शत्रुओं का संहार हो, और मैं ये उतारा करते हुए किसी के परिवार वाले ने करके दिया और जाके उसने वो तेल उसमें डाल दिया
0: जी।
1: दूसरा इंसान गया कि मैं अपने धर्म अनुसार आज शनिवार है तो मैं अपने घर से तेल लाया हूँ, भगवान आपके चरणों में चढ़ा रहा
0: हूँ।
1: अब यार तीनों जनों की निष्ठा अलग अलग थी पर मिक्सअप होके कहाँ गया, उस एक तेल के अंदर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, अगर तुम पर्टिकुलर कोई निष्ठा से कोई अपने कोई इच्छा पूर्ति से या किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हो तो अपना इंडिविजुअल दीपक लगाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मीठे तेल के साथ में सरसों का तेल या कड़वा तेल मिक्स मत करो। एक जना मीठे तेल का एक जना मीठे तेल का दीपक लगा रहा है, तुम उसमें सरसों का या कड़वा तेल लाके नीम का तेल मिक्स करके चढ़ा रहे हो शत्रु के साथ नाश हेतु, तो ना उसका भला होगा ना तुम्हारा भला,
0: ना तुम्हारा भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यहाँ पे जो उपाय वाली बात करता हूँ, मैं उपाय के लिए एक ही बात कहता हूँ, यूनिवर्सल थमरूल कुछ नहीं है, ज्योतिष में थमरूल नाम की कोई चीज नहीं है
0: जी।
1: एक इंसान के लिए 6, 8, 12 हाउस में बैठे हुए प्लेनेट खराब हो गए, वही दूसरे इंसान के लिए जब ये राशि परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब एक राशि में दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ये जब हो जाएगा तो वहां हो जाता है विपरीत राज्य। तो वह विपरीत राज्य क्या होता है कि फकीर के घर में पैदा हुआ इंसान भी सक्सेस पाएगा। तो हम मोस्टली हम ये देखते हैं कि जितने भी ये राजनेता लोग हैं या ऐसे लोग जो विदेश में जाकर के अच्छी सक्सेस प्राप्त करें, उनकी कुंडली के अंदर में विपरीत राज्यों का अच्छा बना हुआ
0: जी।
1: तो एक को एक के लिए तो खराब हो रहा, दूसरे के लिए अच्छा हो रहा। तो यहाँ देयर इज नो थंब रूल, आप मुझे कोई भी एक रूल बता दो ज्योतिष का, मैं आपको उसका अदर साइड बता दूंगा कि मैम ये तो हेड है, ये इसका टेल है। एग्जाम्पल आपने कहा सूर्य, सूर्य उच्च का, सूर्य उच्च का मीन्स ए पर्सन हु हैव ए ह्यूज कॉन्फिडेंस लेवल, ए पर्सन हु हैव ए वेरी सेल्फ रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल शिप।
0: करेक्ट,
1: बहुत पर्सन। अब इसका बैक साइड क्या हो गया, एक पर्सन जो बहुत इगोइस्ट है, घमंडी है, और वह अपनी ईगो और घमंड के आगे सब कुछ अपना नाश कर देगा अगर उसने अपनी ईगो घमंड को कंट्रोल नहीं किया तो।
0: बिल्कुल,
1: सूर्य वही है, सूर्य उच्च का उसके भी है, सूर्य उच्च का उसके भी है, एक ने उस सूर्य को यूज किया इंटेलेक्चुअल शिप में, अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। दूसरा आदमी, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही क्यों करूं, वहां पे उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो आपको समझना है कि सबसे मेरा जो एक यूनिवर्सल उपाय जो मैं करता हूं या जो मैं अपने आप को करता हूं, मैं 5 मिनट आत्ममंथन करता हूं, अपनी हर उस परमात्मा, उस परम ब्रह्म, परम शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, जिन जिन से मैं कनेक्टेड हूं, जिन जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन जिन्होंने मुझे इस राह पे अपने आप को अग्रसर होने के लिए मुझे एनहांसमेंट किया, मुझे बताया कि भाई तू बिजनेसमैन नहीं करेगा, तू इस बात पे आ, यहाँ सक्सेस मिलेगी। तो जिसने भी मुझे किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का। सबसे बड़ा आपको जो हम जो भटक रहे हैं, हमारी आदि प्रॉब्लम्स की वजह है, हम हमारे पितृ पूर्वज कुलदेवी और सती को भूल जाते हैं। उन लोगों को हम कभी भी याद नहीं करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और भटकते रहते हैं। हर एक ज्योतिषी बोल रहा है तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे कुल देवता का दोष है, दोष। अरे कोई किसी पितृ देवता, किसी कुल देवता की तुमसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं थी, प्रॉब्लम एक ही है, तुमने उनको परेशान किया या तुम उनको भूल चुके हो, उनको याद नहीं करते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तुम उनको नमन करो, तुम उनके नाम का दीपक लगा दो, उनको सिर्फ ये एहसास कर दिलवा दो कि भाई मैं कल भी आपको याद करता था, आज भी करता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके 5 पकवान नहीं चाहिए उनको।
0: बिल्कुल,
1: आप भगवान को रोज भोग लगाते हो, आपके भगवान के बुक, वो आपके भोग के बुके नहीं है, वो आपके सिर्फ
0: भाव के
1: जो आप भाव के बुके हैं कि यार ये खाता बाद में, पहले मुझे भोग लगाता है।
0: जी जी,
1: ये निष्ठा चाहिए होती है। तो सिंपल सा है, आत्ममंथन करें। मैं पब्लिक को देखता हूँ, एक ज्योतिषी ने बोला तुम 108 बार हनुमान चालीसा करना, दूसरे ने बोला तुम गीता पढ़ना, तीसरे ने बोला तुम दुर्गा के 108 नाम का जाप करना, चौथे ने बोला शिव जी का जाप करना। वो आदमी बेचारा घंटे दो घंटे तो पूजा पाठ में लगा
0: करता है। जी जी,
1: अब उसमें क्या रहता है, वो कहता है मैं शिव जी को भी मनाऊंगा, मैं दुर्गा माता को भी मनाऊंगा, मैं हनुमान जी को भी मनाऊंगा
0: करता है। जी जी,
1: अब उसमें क्या रहता है, वो कहता है मैं शिव जी को भी मनाऊंगा, मैं दुर्गा माता को भी मनाऊंगा, मैं हनुमान जी को भी मनाऊंगा, मैं

0: सबको मनाऊंगा। तो यहाँ कोई मनता मनता नहीं है, एक मन जाता है दूसरा नाराज होता है, क्योंकि तो उसका दिमाग क्या आ रहा है, यार शिव जी की तो पूजा हो गई, अब इसके बाद हनुमान जी की करूंगा, हनुमान जी के बाद में दुर्गा की करूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो कैलकुलेशन है सारा जी,
0: वो घड़ी देख करके ये करूंगा। अरे ऐसा नहीं होता है
1: जी,
0: तुम 5 मिनट सिर्फ किसी भी एक भगवान को पकड़ लो, बोल दो कि मैं तो सिर्फ आप ही की शरण में आ गया हूँ, मेरे को और कुछ नहीं पता है, जो कुछ करना है आपको ही करना। एटलीस्ट आपके बॉस को ये तो पता है कि भैया ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ही इसको प्रमोशन दिलाना है।
1: बिल्कुल,
0: मैं एक ऑफिस में हर इंसान को चापलूसी करता हूँ, चपरासी यार तू सर को बोलना ना यार मेरा प्रमोशन करा दे, उसके ऑफिस ऊपर वाला यार तू सर को बोलना ना मेरा प्रमोशन करा दे, तो सर एक दिन आके बोलेंगे यार ये इतनी चापलूसी की चेक लगवा रहा है, डायरेक्ट मेरे पास तो नहीं आया, क्यों करूं मैं इसका प्रमोशन।
1: बिल्कुल,
0: तो डायरेक्ट आप अपने परमात्मा से अंतर ध्यान करें, उनसे आत्मंथन करें, उनको धन्यवाद दें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, ये सबसे बड़ा है। 5 मिनट ही निकालें, पर निकालें उस 5 मिनट में सिर्फ आप हो और आपका भगवान।
1: करेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये एपिसोड सर, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप अपना इतना समय निकाल के, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके हर मिनट की वैल्यू है और किस तरह आपने 1 घंटा निकाला होगा हमारे लिए, तो मैं आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इतनी सही सटीक सरल तरीके से सारी बातचीत साझा करी कि हर एक जो श्रोता आज हमें सुन रहा है, जिसको आज से पहले ज्योतिष के बारे में नहीं भी पता हो, वो आज कुछ हमें सुन के कुछ लेके जाएगा और अपने जीवन में कुछ चेंज कर पाएगा। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद राज सर आपका।
0: मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा लास्ट में, आपने इतना कुछ बोल दिया
1: जी।
0: मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मैंने अगर अपना कुछ ज्ञान अगर आपके यहाँ शेयर किया है तो यही ज्ञान मुझे रिटर्न होकर के किसी न किसी रूप में और कुछ सीखने को मेरे को इनहेंस करेगा। तो मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि अगर मैंने यहाँ कुछ शेयर किया है और इसमें से मेरे से कोई 2-4-5 जने भी रियल एस्ट्रोलॉजी को समझ सकेंगे, जो भटक रहे थे, जिनका विश्वास उठ गया था, वो उनका इसमें भला होगा।
1: बहुत बड़ा
0: वही मेरा
1: सर आपका जी,
0: वही मेरा पुरुषार्थ होगा, वही मेरा प्रारब्ध होगा
1: जी। जी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है आप, और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको एक्सप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ जिंदगी अनप्लग्ड का आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य राजकुमार बिरला जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल, इतनी प्रेरणादायक बातें साझा करी। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आपसे अब लेती हूं इजाजत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी को पूरी तरह से जीते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ सिर्फ SN रेडियो पर। नमस्कार।

0: रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है, और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं, जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता, चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए, अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवमस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रंस ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई।
1: 70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया, छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

Piano, accordion, mandolin, organ, saxophone, trumpet, harmonium, congo, bongo, violin, guitar के साथ साथ सितार, सारंगी, सरोद, तबला, ढोलक, नाल, इन सभी का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी तर्जों को सजाने में लगे रहते। सैकड़ों फिल्मों के अत्यंत मनोग्राही संगीत से अलग उनको कुछ नया रचने में बहुत मजा आता था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना,

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के फनकार हैं मदन मोहन जी, जो हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। आइए दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मदन मोहन जी के बनाए हुए इस गीत से।

मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस बलों के साथ महालेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। मदन मोहन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष मध्य पूर्व में बिताए थे।

1932 के बाद उनका परिवार अपने गृह शहर चकवाल फिर पंजाब प्रांत पाकिस्तान झेलम जिले में लौट आया। उन्हें एक दादा दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया जबकि उनके पिता व्यवसाय के अवसरों की तलाश में बॉम्बे आए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की।

लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत कम समय के लिए एक करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी। हालांकि संगीत में उन्हें कोई खास प्रशिक्षण नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

सन 1943 में वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 साल तक वहां सर्विस की, फिर सेना छोड़ दी और अपने संगीत हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई लौटे। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। वहां वो उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इन दिनों के दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत बनाते थे। चलिए दोस्तों, सुने उनका ये गीत।

0: छत पे
1: संगीतकार मदन मोहन के मामले में संगीतकार खय्याम साहब का कहना है कि वो संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती हैं उन्हें उनका गहरा ज्ञान था। हालांकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण उन्होंने कभी नहीं लिया। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी सी अवधि के लिए ही काम किया। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। बस फिर क्या था, मदन मोहन जी की किस्मत बदल गई। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 और 1948 के बीच उन्होंने संगीतकार एस डी बर्मन को दो भाई के लिए और श्याम सुंदर को एक्ट्रेस के लिए संगीत सहायक की भूमिका भी निभाई। चलिए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

खाली जाम ले बैठा हूँ कब से इस मैखाने में, कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी

बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सब ने ठुकराया, कोई तो पास बिठा।

समझ कर

देखा ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सब ने ठुकराया, कोई तो पास बिठा।

कौन ये जाने कब मिल जाए, रास्ते में हमरा कोई, मेरे दिल का दर्द समझ कर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है। हुस्न की शोखियां जरा देखो, गाहे शोला है गाहे शबनम है। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, शम्मे महफिल में रोशनी कम है। बन गया है ये जिंदगी अब तो, बन गया है ये जिंदगी अब तो, तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय, 90.8 FM की जरखेज लहरों पर आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर रुमानियत और जज्बात से लबरेज आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों

जब ढलती हुई रात अपने आंचल में तन्हाइयों को समेटती है तो रूह को किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो सीधे दिल में उतर जाए। अमूमन हमने अपने अजीम फनकारों के फिल्मी नगमों को सुना है, मगर आज की महफिल कुछ जुदा है, कुछ खास है। आज हम उन अजीम आवाज़ों के उन पोशीदा शाहकारों को सुरों का जामा पहनाने जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर गज़लियत के रंग में रंगे हैं। आज की इस नशिस्त यानी महफिल में गुज़रे दौर के वो शहनशाह मौसीकी के बज़्म सजाएंगे जिन्होंने अपनी गैर फिल्मी गज़लों, हिजर और वसल, दर्द और मोहब्बत के ऐसे नक्श छोड़े हैं जो कभी धुंधले नहीं होते। जब अल्फाज सीधे रूह से निकलते हैं तो वो शायरी नहीं, एक मुकम्मल एहसास बन जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपने दिलों के दरीचे खोल दीजिए, खामोशी को ज़रा और गहरा होने दीजिए और डूब जाइए सुरों के इस सहर में। मुलाकात करते हैं आज की पहली मखमली गज़ल से। इस पुरसकून शाम का पहला नजराना पेशी खिदमत है उस अजीम फनकार की पैरवी में जिनकी आवाज़ का सोच सीधे रूह में सरायत कर जाता है। जी हाँ, मरहूम मुकेश साहब। यूं तो बंदिशों और फिल्मी दस्तूर में हमने उनकी गायकी के कई रंग मुलहजा किए हैं, मगर जब वो गैर फिल्मी महफिलों की जान बनते हैं तो उनका मिजाज एक अलहदा ही शक्ल अख्तियार कर लेता है। शायर शिव कुमार सरोज के इस बेहद नफीस और मुकद्दस कलाम को जब किशोर देसाई की मखमली धुनों का साथ मिला और उस पर मुकेश साहब ने अपनी बेसाख्ता सादगी बिखेरी तो हुस्न व इश्क की लाजवाब दास्तान मुकम्मल हुई। तसव्वुर की इंतहा तो देखिए, जहां महबूब के लबों की सुर्खी के आगे गुलाब भी अपना वकार खो देता है, वहां उनकी जुल्फों के साए में गहरी स्याह रात भी मात खा जाती है। अल्फाज की ये पाकीज़गी और सुरों का ये ठहराव आज के इस पुरकशिश माहौल को और भी हसीन बना देता है। तो आइए सुनते हैं और डूब जाते हैं मुकेश साहब की इस रूहानी गज़ल के दरिया में। मिसरा पेशे खिदमत है। तेरी अदा पे फिदा, तेरी अदा पे फिदा, हम तो क्या जमाना है, निसार तुझ पे मेरे दिल का ये खजाना है। तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा। फिर कहते हैं, तू मुस्कुराए तो जाती बहारें आ जाएं, दिले बीमार को फिर से करार आ जाए, तेरे करम का किसी से हिसाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। आपकी नजर।

सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। आ जाती हैं यादें जिनकी, जाने क्यों तन्हाई में। अश्कों के खामोश लबों पर आज भी एक अफसाना है। फिर कहते हैं, रातों का सन्नाटा जैसे समझाता हो राज कोई। यूं लगता है कि आज के जैसे देता हो आवाज कोई। ना जाने तकदीर में दिल की, ना जाने तकदीर में दिल की कब तक ठोकर खाना है। जिसने दिल को आंसू बख्शे, गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है, अब तक इसका दम भरता है, दिल भी क्या दीवाना है। इस मुकद्दस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है उस पाकीज़ा आवाज़ को, जिसमें छाई हुई खामोशी भी हजारों अफसाने बयां कर देती है। जी हाँ, रेशमी आवाज़ वाले मरहूम तलत महमूद साहब। तलत साहब की गायकी में जो एक रेशमी लर्जिश और नफासत है, वो सीधे रूह के तारों को छेड़ देती है। शायर जफर गोरखपुरी के इन पुरअसरार अल्फाज को जब मौसिकार सी के चौहान ने अपनी जहीन धुनों में ढाला, तो गम और तन्हाई का एक ऐसा हसीन साया वजूद में आया, जो दिल को अपनी आगोश में भर लेता है। तसव्वुर कीजिए, जब आधी रात के सन्नाटे में ऐसा महसूस होने लगे, कोई गुमशुदा सी आवाज़ हमें पुकार रही हो, तब दिल की बेबसी और तकदीर की ठोकरों का ये जिक्र और भी मुअस्सर हो जाता है। ये एक ऐसी दीवानगी है जहाँ दर्द ही दिल का सबसे अजीज सरमाया बन बैठता है। तो आइए, तन्हाइयों के इस पुरकशिश आलम में डूब जाते हैं और सुनते हैं तलत महमूद साहब की आवाज में ये बेहद सोज और गुदास से भरी नायाब गजल, जिसने दिल को, जिसके बोल हैं, जिसने दिल को आंसू बख्शे, गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है, दिल भी क्या दीवाना है। आपकी नजर।

दोस्तों अल्फाज से एहसास तक के इस पाकीज़ा सफ़र में अब वक्त हो चला है उस अजीम फनकार के हुनर को सलाम करने का, जिनके सुरों की पुख्तगी और गायकी का मियार मुकद्दस तरीन माना जाता है। जी हाँ, सुरों के सरताज मरहूम मन्ना डे साहब। अमूमन मन्ना डे साहब की आवाज़ में हमने हर मिजाज के गीत सुने हैं, मगर जब वो खुद अपनी ही बनाई बंदिशों में ढलते हैं तो उनकी गायकी का एक अलहदा और नहायत संजीदा रूप सामने आता है। मशहूर नगमाकार मधुकर राजस्थानी के इन पुरसर और हसीन अल्फाज को जब मन्ना दा ने अपनी जहीन मौसिकी से संवारा तो बिछड़ते हुए हुस्न और टूटे हुए ख्वाबों की एक मुकम्मल तस्वीर उभर आई। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब सुहाग और मोहब्बत की निशानी वो पाकीज़ा मोती नथली से जुदा होता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता बल्कि दिल का सारा धीरज और आंख की पूरी कायनात रो पड़ती है। सुरों की ये नफासत और इस अल्फाज की रवानगी आज के इस माहौल को दर्द से सरोबार कर रही है। तो आइए समातों को इस लाजवाब मौसीकी के हवाले करते हैं और सुनते हैं मन्ना डे साहब की इस बेहद नायाब पेशकश को। फरमाते हैं, रूप की अंगिया अंग में लागी, कैसे छुपाए लाज अभागी, लाज अभागी। मनवारे कहे आज, मनवारे कहे आज, भोर कभी ना होती रे। कजरारी अखियां रह गई रोती रे।

दोस्तों, अल्फाज और एहसास तक की हमारी पुरसोज महफिल में अब वक्त हो चला है। उस मसीहाए आवाज के हुजूर में अकीदत पेश करने का, जिनके सुरों में कायनात का सारा सोज और सुकून सिमट आता है। जी हाँ, सरजमीने मौसीकी के बेताज बादशाह मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने जब गैर फिल्मी महफिलों का रुख किया तो उन्होंने अल्फाज को सीधे रूप का लिबास पहना दिया। अजीम शायर राजा मेहदी अली खान साहब की इस बेहद पुरअसर और शिकस्ता दिल कलाम को अजीम मौसिकार मदन मोहन साहब की पुरदर्द धुनों का साथ मिला तो तन्हाई और हिजर की एक ऐसी इंतहा वजूद में आई जिसे सुनकर आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब महबूब के जुदा होने के बाद जिंदगी का हर लम्हा एक भारी पहाड़ जैसे लगने लग जाए और फिर मौत का इंतजार ही आखिरी आस बन जाए, तब दिल की बेबसी किस कदर गहरी होती है। रफ़ी साहब की आवाज़ का वो धीमा ठहराव और दर्द की ये पाकीज़गी आज की इस शाम को एक अलहदा ही सोच से सरोबार कर रही है। तो आइए तन्हाई के इस बेहद हसीन और मुकद्दस आलम में डूब जाते हैं और समायत फरमाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की ये नायाब गैर फिल्मी गज़ल। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग हैं। फिर कहते हैं चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कने तू कहीं आस पास है, आके तड़प रहा है जो तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी, तेरे बगैर।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस रूहानी सफ़र में अब तक हम तन्हाई और हिजर के रंगों में डूबे हुए थे, मगर अब वक्त हो चला है उस अजीम फनकार की तरफ बढ़ने का जिनकी आवाज़ में ज़िंदगी का हर मिजाज रहता है, रवा रहता है। जी हाँ, हृदय दिल किशोर कुमार जी। यूँ तो ये शाहकार एक फिल्मी दस्तूर का हिस्सा है, मगर इसकी सादगी और इसका मफहूम यानी मतलब किसी मुकम्मल और पाकीज़ा गज़ल से कम नहीं। शायर योगेश साहब की इन पुर उम्मीद अल्फाज पर जब मौसिकार राजेश रोशन ने अपनी बेहद मखमली और पुरसकून धुन से नवाजा, तो छाए हुए अंधेरों के दरमियां एक नई सुबह को नई सुबह की उम्मीद जाग उठी। तसव्वुर कीजिए कि जब दिल मायूसियों की गहराइयों में डूबा है और अचानक एक सोज भरी आवाज धाड़स बंधाए कि ये तन्हाई और उदासी के दिन हमेशा नहीं रहने वाले, कहीं तो रोशनी की एक किरण मिलेगी, तब रूह को अलैदा ही तसल्ली बख्श सुकून मयसर होता है। किशोरदा के सुरों का ये संजीदा हैरान ठहराव आज की इस महफिल को एक नया उफुक यानी हाइट यानी क्षितिज दे रहा है। तो आइए मायूसियों को कहते हैं अलविदा और इस हसीन उम्मीद के साए में समायत फरमाते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ये बेहद नायाब और रूहानी पेशकश। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो टलेंगे। फिर कहते हैं भले तेज कितना हवा का वो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े हैं सफर में तुझे फिर मिलेंगे।

तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, इन नज़ारों पे भी हल्का सा नशा छाया है। अपनी आँखों का नशा और भी बढ़ जाने दो। दोस्तों, हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है सरजमीन मौसीकी की उस अजीम फनकार के आखिरी नजराने की, जिन्होंने बरसों तक हिंदुस्तानी संगीत की तकदीर को संवारा। जी हाँ, मौसीकी शहंशाह मरहूम नौशाद साहब। फिल्म ताजमहल का ये शाहकार नौशाद साहब के उस फन का आखिरी चिराग है जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं हो सकती। अजीम शायर नक्श लायलपुरी साहब के इस बेहद हसीन, नाजुक और रोमानियत से लबरेज कलाम को जब नौशाद साहब के मुकद्दस धुनों का साथ मिला और उस पर हरिहरन साहब ने अपनी सोजो गुदास भरी मखमली आवाज का जादू बिखेरा, तो हुस्न और इश्क की एक मुकम्मल और अमर दास्तां वजूद में आ गई। तसव्वुर की इंतहा तो देखिए, जहां महबूब की जुल्फों के साए में और शाने पर बिखराने की जिद में जिंदगी का हर दर्द, यहां तक कि मौत का खौफ भी खूबसूरत हो जाता है। हरिहरन साहब के सुरों की ये नफासत और लफ्जों की ये पाकीज़गी आज की इस ढलती शाम को एक बेहद पुरकशिश और रूहानी एहसास से सरोबार कर रही है। तो आइए तसव्वुर के इस पाकीज़ा रंग में डूब जाते हैं और सुनते हैं हरिहरन साहब की आवाज में ये लाजवाब पेशकश। फरमा रहे हैं, सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, कैसा मंजर हो जहां, ऐसा मंजर हो जहां होश कहां रहता है। ये हंसी होंठ मेरे होंठों से मिल जाने दो, अपनी जुल्फें मेरे शानों पे बिखर जाने दो, आज रोको ना मुझे हद से गुजर जाने दो, आपकी नजर।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस रूहानी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ पहुँचे हैं और आज की इस आखिरी पेशकश के लिए हम याद कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ को जिसने हर धड़कन को जीना सिखाया। जी हाँ, बेहद अज़ीज़ मरहूम के साल 2008 के एल्बम हम सफ़र से ली गई ये पेशकश के फ़न का वो मुनफरिद रंग है जहाँ उनका मिजाज पूरी तरह से गज़लियत के सांचे में ढल जाता है। शायर महबूब खान के इन रूहानी अल्फाज को जब के साहब ने खुद अपनी मखमली धुन और अपनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा तो दिल की गहराइयों में उतरने वाली एक लाजवाब इबादत मुकम्मल हुई। ये एक ऐसा सूफियाना एहसास है जो आज की इस महफिल को मुकम्मल सुकून की तरफ ले जा रहा है। तो आइए समायतों को इस आखिरी नजराने के हवाले करते हैं। सुनिए के साहब की आवाज़ में ये रूहानी गज़ल। जिंदगी जख्म सही तू मगर मरहम है, जिंदगी जख्म सही तू मगर मरहम है, दर्द है दिल में अगर तू मगर हमदम है। आपकी नज़र।

तो दोस्तों, सुरों और अल्फाजों का ये पाकीज़ा कारवा जो आज हमारे अजीम फ़नकारों की गैर फिल्मी गज़लों के साए में शुरू हुआ था, अब अपने अंत तक पहुंच रहा है। वक्त की पाबंदी और घड़ियों की सुइयां अब हमसे विदा लेने का तकाजा कर रही हैं, मगर यकीन मानिए, ये सुर, ये शायरी और इन अजीम आवाज़ों का सोज हमारे दिलों के दरीचों में हमेशा रवां रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस शाम ने आपके दिलों को सुकून का एक नया एहसास बख्शा होगा। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का, कल फिर इन्हीं रूहानी लहरों पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जज्बातों के कुछ नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम को हर दिन आप तक लेकर आता रहता है। तो किसान साथियों, आज हम खेती बाड़ी इस कार्यक्रम में बात करेंगे जल संरक्षण के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, हमें जल संरक्षण करने की बहुत ही आवश्यकता है। हम जानते हैं जो वर्षा का जल है वह नदी नालों के माध्यम से बहकर निकल जाता है और हमें दूसरी और गर्मियों के समय जो फसल हमारी होती है उसमें बहुत ही मशक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमें सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम गर्मियों की फसल नहीं ले पाते हैं। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, साथ ही क्यों आवश्यक है जल का संरक्षण, हमारे लिए क्यों आवश्यक है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
2: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: अभी का समय चल रहा है मॉनसून का, और ये मॉनसून हम आपको बता दें पूरे देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर सभी राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है। लेकिन क्या जो मॉनसूनी बारिश होती है इसके जरिए जो पानी मिलता है उसका उतना सदुपयोग हम कर पाते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। और इसी सवाल से कई और सवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हमारे देश की बात कही जाती है तो यहां पर जिस तरीके से जलवायु में विभिन्नता है उसी तरीके से हम देखते हैं मॉनसूनी बारिश का जो वितरण है वो भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिस देश में हम बात करते हैं कि कैसे जो खेती है वो पानी के बिना हो सकती है, पानी की कमी के दौरान भी हमारे जो किसान हैं किस तरीके से अच्छी उपज ले पा रहे हैं, वहां ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और तब बात आती है वर्षा जल संचयन की। जी हाँ, आज इसी विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से वर्षा जल संचयन जो है यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको हम अपना सकते हैं, कर सकते हैं, और जो ये बारिश का पानी है इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग रूप में कैसे वो हो सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको हम देंगे। संदेश दे रही है समाज में कि कैसे पानी की बचत हम कर सकते हैं, किस तरह की भागीदारी, किस तरह का योगदान उनका रहा है पानी को बचाने में, जो अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जल जीवन है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका जो महत्व है वो इस दौरान काफी समझा जा रहा है और हमारे किसान भी जानते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।

विकास की अंधी दौड़ में हमने प्राकृतिक जल संसाधनों का इतना दोहन किया कि आज हमें कहीं ना कहीं पानी की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम अभी से सतर्क हो जाएं और पानी को बचाकर उसका संचयन शुरू कर दें, तो पानी की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्षा जल संचयन करना होगा। इस समय पूरे देश में मॉनसून के बादल बरस रहे हैं, लेकिन हम बरसात के इस पानी को इकट्ठा नहीं करते और सारा पानी बेकार हो जाता है। दरअसल वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम

0: बरसात के पानी को जरूरत की चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के पानी को एक निर्धारित की हुई जगह पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन के कई तरीके हैं, जैसे सतह जल संग्रह सिस्टम। सतह जल वो पानी होता है जो बरसात के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले हिस्सों में बहकर जाने लगता है। गंदी नालियों में जाने से पहले सतह जल को रोकने के तरीके को सतह जल संग्रह कहते हैं। बड़े बड़े ड्रेनेज पाइप के जरिए बरसात के पानी को कुओं, नदी, तालाबों में इकट्ठा करके रखा जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। दूसरा तरीका है छत प्रणाली। इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुली टंकियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें बरसात के पानी को इकट्ठा करके नलों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा तरीका है बांध। बड़े बड़े बांधों के जरिए बरसात के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिन्हें गर्मियों में या पानी की कमी होने पर खेती, बिजली बनाने और नालियों के जरिए घरेलू इस्तेमाल में लिया जाता है। चौथा तरीका है भूमिगत टैंक। इसके जरिए हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में बरसात के पानी को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। आमतौर से भूमि के ऊपर के हिस्से पर बहने वाला पानी सूरज के ताप से भाप बन जाता है, जिससे हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचा कर रख पाते हैं। पांचवा तरीका है जल संग्रह जलाशय। ये साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके से जमा किए हुए पानी को ज्यादातर खेती के कामों में लगाया जाता है। ये तो बात हुई वर्षा जल संचयन की, लेकिन इसके साथ साथ किसान खेतों में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें जिसमें कम पानी में सिंचाई की जा सके। इनमें से एक है फव्वारा सिंचाई पद्धति। इस विधि से सिंचाई में पानी की बर्बादी नहीं होती। बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी एक अच्छा साधन है। बूंद बूंद विधि से लगभग 60-70% पानी की बचत होती है। किसान कम पानी में सिंचाई कर सकते हैं। इस पद्धति में 50-80% तक पानी की बचत होती है।
1: तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग माध्यम हैं जिनके जरिए हम पानी की बचत कर सकते हैं, फिर चाहे सिंचाई के जो अलग अलग साधन है उनकी बात की जाए, या जिस तरीके से अभी तक मॉनसून की भी अगर स्थिति हम देखते हैं तो वो काफी बेहतर रही है कुछ एक क्षेत्रों में, हालांकि कुछ एक जगह कमी भी है। लेकिन यहां डॉक्टर मनोज, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राजस्थान जैसे क्षेत्र की हम बात करते हैं या आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर एक किसान को बड़ी उम्मीदें रहती हैं बारिश से जब मॉनसून आता है, कि ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आगे के लिए भी। कितना फायदेमंद है मॉनसून, और उसके साथ साथ जो एक संदेश है कहीं ना कहीं वो किसान भी देता है वर्षा जल संचयन का।
2: हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा मुख्य रूप से खेती मानसून आधारित है, और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि मानसून जून से शुरू होकर करीब करीब सितंबर तक चलता है, और हमारे किसान भाई यही उम्मीद करते हैं कि मानसून सामान्य रहे और जिससे उनको जो जल मिले उनसे उनकी खेती, न केवल ये वाली खरीफ सीजन की खेती और बल्कि अगली जो रबी सीजन की भी जो खेती है उसकी भी व्यवस्था हो सके। तो उस सब को देखते हुए इस समय मानसून की प्रगति संतोषजनक है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी कम है मानसून, लेकिन उम्मीद है कि हमारे देश में इस समय मानसून पूरा सामान्य रूप से थोड़ा सा अधिक रहेगा और सामान्य रहेगा। और किसान भाइयों से तो यही अनुरोध रहेगा कि जितना पानी गिर रहा है उसका संचयन करके, संरक्षण करके और उचित उपयोग करके उसका इस्तेमाल करें, जिससे उनकी खेती अधिक से अधिक अच्छी हो और उत्पादन बहुत अच्छा हो।
1: जी, और किस तरीके से मतलब माध्यम क्या है इसमें, अगर हम बात करते हैं कि कैसे ना सिर्फ उसका संचयन हम कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हमारे जो किसान है इस बारिश के पानी को इसका संचयन जो है, संरक्षण जो है वो कर सकता है?
2: बहुत साधारण तरीके हैं, हमारे किसान भाई बहुत लोग जानते हैं, मैं एक बार दोबारा उसको रिपीट करूंगा और बताऊंगा। जैसे ही बारिश होती है और यह बारिश होने की तैयारी हो रही है, कुछ जगह हो गई है, तो हमारे खेतों को बहुत साधारण तरीके से किसान भाइयों को जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में, तो हमारी मेड़ों की मरम्मत कर लें, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बनाकर और उनकी मरम्मत कर लें। और देखें, गांव में अगर तालाब है तो जिन नालियों के द्वारा पानी तालाब में जाता है उन नालियों की सफाई कर लें, बहुत खरपतवार आ जाती है, बहुत उसमें कोई सामान फेंक दिया जाता है वो बंद हो जाती हैं, उनकी पूरी तरह सफाई कर लें, जिससे भी जितना वर्षा का जल आए वो सारा सारा अगर हमारे यहाँ फार्म पॉन्ड है उसमें संचयन हो सके, या हमारे खेत में ही जो पानी गिर रहा है वो एक बूंद भी हमारे खेत से किसी और जगह ना जा सके। ये खेत की बात है, फिर हम बात करें गांव की, बात करें कि हमारे गांव का पानी गांव में ही रहे, और जितना पानी गिर रहा है वो सारा सारा हमारे खेती के लिए उपयोग में आ सके। उसके बाद जब अगर हमने संचयन कर लिया है उस पानी का, तो हम देखते हैं कि आज बारिश हुई, फिर एक हफ्ता या 10 दिन बाद बारिश हुई, और उस बीच में अगर आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो कोशिश करें कि उस जो पानी को इकट्ठा आपने किया है या संचयन किया है, उस पानी को कैसे हम, जैसे बैंक में आपके पैसा रहता है उसको हम बड़े ध्यान से उपयोग करते हैं, उसी तरीके से इसको उपयोग करें, चाहे वो हम बहुत ही आधुनिक तरीके से, कोशिश करें कि कम से कम इस पानी की को वेस्ट करें, और अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे तो हम सारा सारा पानी बचा भी सकेंगे, और कोशिश करेगी कि जो संचित पानी है वो रबी फसलों के लिए भी बचा रहे हमारे फार्म पॉन्ड में या तालाब में और जहां पर भी हमने पानी इकट्ठा किया।
1: तो ना सिर्फ देखिए जो खरीफ का सीजन है अभी, वहां तो आपकी जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति होगी ही, साथ ही इसके बाद का जो सीजन आता है रबी की जब हम बात करते हैं, तो वहां भी आपके लिए जो पानी है वो उपलब्ध रह सकेगा। कुछ अलग अलग विकल्प आपके पास है, माध्यम आपके पास है, और सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है, मदद भी जो है वो की जाती है, अनुदान भी दिया जाता है। अगर आप अपने खेत में भी अगर पॉन्ड बनवाते हैं, तालाब एक बनवाते हैं, चेक डैम, अलग अलग ऐसे माध्यम है जिनके जरिए आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ ज्योति जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी संस्था भी लगातार इस बात को बढ़ावा दे रही है कि जो पानी है हमें उसको बचाना है, लेकिन जब खेती में पानी की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और चुनौती हमारे लिए हो जाती है कि कैसे किसान जो है उसको अच्छी उपज भी लेनी है, जो फसल है उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है, और पानी को भी बचाना है, कैसे ये लगातार जो संदेश है वो दिया जा रहा है?
3: किसान के लिए एक्चुअली एक बहुत ही मुश्किल चॉइस रहती है, क्योंकि हमारी, जैसे मनोज जी ने कहा कि हम अभी कृषि प्रधान देश हैं, और वो भी ऐसा कृषि प्रधान देश जहाँ पर वर्षा के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है
1: जी।
3: पर जैसे अभी बात की गई कि किसान जो है वो मैं आज आपके माध्यम से किसान को ये रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ कि ये जो मिथ्या है कि अगर हम इरिगेशन कम करेंगे तो उसकी वजह से हमारी उपज में कमी आएगी, ये बिल्कुल एक मिथ्या है
1: जी।
3: अगर आप समय पर टाइमली सोइंग करें, टाइमली इरिगेशन करें, तो कोई कारण ही नहीं कि आपके यील्ड में कोई कमी हो, बशर्ते आप ये करें जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि खेत का पानी खेत में, जब बरसात हो तो उस वक्त आप माड़ बनाकर या फार्म पॉन्ड बनाकर अपने खेत के अंदर वर्षा का पानी को
1: संचित कर सकते हैं,
3: सिक्योरली अपनी ही जमीन के अंदर समेट के रख लें ताकि जरूरत पड़ने पर पौधे उसको निकाल पाएं। दूसरा, अपने खेत की तैयारी ऐसे करें, उसके ऊपर जो बेड फॉर्मेशन हो वो ऐसी हो कि जो है वो कम पानी जो है उसमें वेस्टेज मिनिमाइज हो, और पानी जो है वो प्लांट के रूट जोन को मिले, वो प्लांट उसमें फ्लडेड ना रहे। और तीसरा, जैसे इन्होंने कहा गांव का पानी गांव में, कि आप प्लानिंग ऐसी करें कि आपके गांव के ऊपर पड़ने वाली एक एक बूंद पानी जो है वो किसी ना किसी माध्यम से आपके गांव की जमीन में रिस जाए, पॉन्ड के थ्रू, या आपके यहाँ पर अगर कोई भी सूखे कुएं हों या ट्यूबवेल्स हों उनके अंदर आप बारिश के पानी को डाइवर्ट कर दीजिए थोड़ा क्लीन करके, ताकि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। आपकी जो साइड की नालियां हैं उनका तालाब कच्चा रखिए ताकि उसके थ्रू भी पर्कुलेशन हो जाए, और इस तरह का चेक डैम्स बनाइए, अगर कोई स्ट्रीम चल रही है चेक डैम्स बनाइए, बांध बनाइए, तो इस तरह से कैलकुलेट कीजिए कि आपके गांव से एक भी बूंद पानी जो है बाहर ना जाए, ताकि मॉनसून के खत्म होने के बाद जो ड्राई पोर्शन आता है उसमें आपके पौधों को जमीन की नमी के माध्यम से वो पानी मिलता रहे जिसकी उनको जरूरत है। पौधे को नमी चाहिए होता है, पानी नहीं, नमी चाहिए, तो नमी का इंतजाम कीजिए।
1: चलिए, जिस तरीके से जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमें करनी होगी, ना सिर्फ खेत का पानी खेत में बल्कि इसके साथ साथ गांव का पानी गांव में भी रहेगा। और खासतौर से डॉक्टर मनोज, जब से हम मान सकते हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब से लागू की गई उसके बाद से एक बड़ा बदलाव हमने देखा है कि ना सिर्फ जो किसान है पानी बचाने लगा है, क्योंकि वहां पर प्रति बूंद अधिक उपज की बात हम करते हैं, हर खेत को पानी पहुंचाने की बात हम करते हैं, तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है।
2: हाँ, जैसे आपने चर्चा की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उचित समय पे शुरू की गई, 2015 में इसको शुरू किया गया था
1: जी।
2: और इसमें हर रूप में पानी का हर रूप में इसका सहायता अनुदान दिया जाता है, चाहे वो पानी के संचयन के लिए, संरक्षण के लिए, जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी कि अगर आपके अपने खेत में आप तालाब बनाना चाहते हैं, सामुदायिक रूप से गांव में सामुदायिक रूप से तालाब बना के, और हमारे गांव में आपने देखा होगा साधारण तरीके से तालाब थे और वो तालाब अब वो भर गए हैं, तो हम कोशिश करें कि अब इस समय भी अभी समय है हमारे पास कि सारे श्रमदान करके उन तालाबों को मिट्टी निकाल दें, उससे उनकी जो पानी भरने की क्षमता है वो बढ़ सकेगी। और उसके बाद इन तालाबों को बनाने के लिए आपको अनुदान भी मिलता है अपने रूप से, अगर आप अपने खेत आपका बड़ा है और आप बनाना चाहते हैं या आप सामुदायिक रूप से बनाना चाहते हैं उसके लिए भी अनुदान मिलता है। आप अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें कि हम ये बनाना चाहते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको ये चर्चा में बताया था कि इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए जो आधुनिक विधियां हैं, चाहे वो फव्वारा सिंचाई हो, टपक सिंचाई हो, अंडरग्राउंड भूमिगल आपकी पाइपलाइन हो, उस पानी को जहां तालाब से आपके खेत तक ले जाने में अगर आप कच्ची नाली में उस पानी को ऐसे कीमती पानी को ले जाएंगे तो करीब करीब 30-40% पानी तो नालियों में ही चरह जाएगा
1: जी।
2: तो उसकी बजाय आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाएं या भूमिगत पाइपलाइन जिसे कहा जाता है, और उसमें भी आपको हर तरह की सहायता मिलती है। और इसलिए मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये समय आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर आप कोशिश करें जितना पानी गिर रहा है मैं या तो संचयन करूं, मेरी खेती में इस्तेमाल हो, और उस संचयन करके पानी को ऐसे इस्तेमाल करूं कि ज्यादा से ज्यादा समय तक वो पानी रबी फसलों के लिए उपलब्ध हो पाए।
1: डॉक्टर मनोज, हमारे किसान कर भी रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में भी आज जुड़े हैं अलग अलग राज्यों से किसान, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बात सभी कर लेते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो कम ही हो पाता है, लेकिन आप उनमें से हैं जिन्होंने लगातार कोशिश की कि कैसे पानी को बचाया जाए अपने गांव में। किस तरीके से शुरुआत हुई और आज के समय में क्या स्थिति आपके गांव में, अगर पानी की बात हम करते हैं क्या स्थिति है वहां पर?
4: हाँ जी सर, हम 2 साल से लगभग एक जूम सेमिनार कर रहे हैं
1: जी।
4: तो जूम सेमिनार पे हम खेती बाड़ी के प्रोग्राम करते हैं जिसमें फगवाड़ा गुंडग्रो एक तकनीक है जो किसान के लिए बहुत बढ़िया है, उससे बहुत पानी की बचत हो रही है। जूम शर्मा जी भी हमारे साथ है, जो हमसे जो किसान जुड़ते हैं लोग गाँव के लोग हैं उनको जानकारी देते हैं, और पंजाबी यूनिवर्सिटी है उसमें भी हम जाके देख के आए, तो हमको पता चल रहा कि जो बारिश का पानी है उसको हम पी भी सकते हैं और इसको पानी को नीचे भी धरती में पहुंचाया जाए, इसलिए हमने उसके लिए कोशिश की और ज्योति शर्मा जी को जूम सेमिनार किया और यूनिवर्सिटी जाके और भी लोग गए, हम जाके देख के आए। तो एक पंजाब में एक बरनाला है, बरनाला जिले का गाँव है प्रवाही
1: जी,
4: रवि कुमार शर्मा जी है, वो 6 साल से पानी या जो पी रहे हैं 6 साल से, उसका क्या हमने उसका प्रोजेक्ट देख के आए। उसके बाद हमने अपने घर में बनाया कि हमने आपको ऐसी नया मकान बना रहे हैं, उसमें हमने एक पानी को पीने के लिए बनाया है नीचे, वो जो छतों का है पहले उसको 10 मिनट बाहर चला जाएगा फिर उसको स्टोर हो जाएगा,
1: तो ना सिर्फ खेती में बल्कि उसको पिया भी जा सकता है, घर में उसको हम पी सकते हैं। आपने इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है?
4: हाँ सर, ये इस तरह ही प्यार किया है, जो रवि कुमार शर्मा 6 साल से पी रहे हैं
1: जी।
4: तो उसे हम देख के भी आए, तो पानी है इस तरह है, वो बनाया इस तरह है सारा कि उसमें जो ना धूप ना

0: के बाद अलग अलग योजनाएं जो हैं या हर किसी को जागरूक करने के लिए लगातार जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ज्योति जी जिस तरीके से भूजल स्तर की एक बड़ी समस्या रही है, आपको क्या लगता है क्या इसका एक बेहतर विकल्प हमारे पास है, समाधान जो है वो हमारे पास है, कैसे इसको फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं?
1: नहीं बिल्कुल, अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी जरूर होगा और हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जो मंत्रालय जल शक्ति अभियान लॉन्च करती है हर वर्ल्ड वाटर डे पे, उसमें जो उन्होंने 5 स्टेप्स कहे हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, आप रिचार्ज, आप बोरवेल रिचार्ज करेंगे, प्लांटेशन करेंगे और रिसाइकिल करेंगे वाटर और उसका रीयूज करेंगे, उन्होंने ये जो 5 स्टेप्स बताए हैं वो 5 स्टेप्स जो हैं, हमारा भी ऐसा एक फॉर्मूला है 5 आवर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो उसमें क्या है कि अगर हम वेस्टेज पानी की कम करें, थोड़े वाटर एफिशिएंट बने, वेस्टेज कम करें, अगर हम एक पानी का पुनः प्रयोग करें, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो कि एक बार यूज किए हुए पानी का हम पुनः प्रयोग कर सकें, जैसे कि हम अक्सर किचन में कोई चीज धोते हैं तो उसके बाद उस पानी का पौधों में प्रयोग करते हैं, तो अगर पुनः प्रयोग कर सकें तो वो। तीसरा आर क्या हो सकता है, रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर, जिसके बारे में अभी हमने बहुत की, तालाब के थ्रू, चेक डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर संभव प्रयास से रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर करें। रिसाइकल वेस्ट वाटर, एक बूंद पानी को हम 9 बूंद पानी बना सकते हैं अगर हम उसको रिसाइकल करते हैं, तो रिसाइकलिंग फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मिनिस्ट्री इस चीज को जानती है, इसीलिए जल शक्ति अभियान का एक अभिन्न अंग है। एंड फिफ्थ ऑफ कोर्स, पानी की हम इज्जत करना, फिर से याद करें कि हमारे पूर्वजों ने हमको पानी की इज्जत करना सिखाया था, क्योंकि जिस चीज की हम इज्जत करते हैं उसका ख्याल रखना हमें खुद ही आ जाता है, हम खुद ही समझ जाते
0: हैं। ये बेहद जरूरी है, देखिए ख्याल जो है हमें रखना होगा, शुरुआत हमसे ही होगी, और जैसा ज्योति जी ने कहा कि जो एक बूंद पानी है अगर आप उसको कर सकते हैं तो उसको 9 बूंद में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, और लगातार हमारे जो किसान हैं इस तरीके से ही कुछ काम भी कर रहे हैं। कुलदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया ना सिर्फ खेती किसानी बल्कि जो पीने का, जो बारिश का पानी है वो पीने के लिए भी आप उसको योग्य बना लेते हैं, कई जगह देखते हैं कि जो खारे पानी की समस्या रहती है वहां भी, क्या हम मान सकते हैं कि इस तरह से अगर जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किए जाएं, इस तरह के जो तकनीक है अपना ली जाए तो शायद ये समस्या दूर होगी और भूजल स्तर में भी सुधार होगा?
2: सर ये तो बहुत ही बढ़िया है, जिस जगह खारा पानी है ना उसके लिए तो इसका प्रचार करने की जरूरत है। जो गांव के लोग है उसकी प्रॉब्लम है कि इसमें जो खर्चा आता है, खर्चा काफी आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम है। कैसे जो कुछ समय है जो संस्थाएं काम कर रही है, जैसे खालसा एड है उसका बहुत काम है, उस तरह की जो संस्था है जिनके पास फंड है जहाँ सरकार है, एक प्रॉब्लम है उस जगह पर, उसके वो जाके 2-4 घरों में, 5 घरों में इस तरह के प्रयोग करके दिखा दें तो फिर लोग अपने आप कर लेंगे। और एक मैं और कहा चाहूंगा, जो भी लोग नया घर बनाते हैं वो पूरा संग बना लें, तो जब नया घर बनाएंगे तो पानी को इस तरह कर लें। एक और बात है सर, जो रिसाइकल की बात चल रही है कि रिसाइकल कैसे किया, एक संगे खालसा गांव है पंजाब में
0: जी,
2: तो क्या है कि उसके लोग यूके के वहां के है NRI लोग, उन्होंने इस तरह किया है कि जो भी सारे गांव का पानी है, जो नीचे का जो खरे के गलियों का पानी है, गंदा पानी है, वो सारे का सारे को रिसाइकल करके उसको साफ करके फिर पाइप उसकी चली जाती है, उस पानी से फिर सारे गांव के द्वारे उसकी पाइप लगा दी तो उससे काफ हो जाती है, पशु लहाए जाते हैं, सब्जियों को पानी दिया जाता है, तो आप तो एक पशु लहाएंगे वो फिर पानी नीचे चला आ जाएगा उसमें, तो फिर रिसाइकिल होकर चला जाएगा, इस तरह बार बार बोझ बार पानी घूमता रहता है
0: जी। बिल्कुल,
2: बार बार पानी का बहुत बढ़िया तरीका है जी, इस पर भी काम किया जाए तो बहुत अच्छा है सर,
0: काफी अच्छा होगा, और आप भी लगातार हम कह सकते हैं कि अच्छा सराहनीय कार्य जो है वो आप लगातार कर रहे हैं, दूसरे किसानों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं। फिलहाल कुलदीप साथ साझा करेंगे किस तरीके से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वही हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत भी, क्योंकि हमें भी अब आगे आना होगा इस पानी को बचाने के लिए, वर्षा जल संचयन करने के लिए।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
4: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: देखिए ये बात जो है हमारा किसान भी समझ चुका है, अपना योगदान वो इसमें दे रहे हैं, कैसे बारिश का जो पानी है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कुलदीप जी से जो कि पंजाब के एक सफल किसान थे। अब आइए रुक कर लेते हैं राम लखन जी का, ये हरियाणा के नुमेवास से हमारे साथ जुड़े हैं। राम लखन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विचार विमर्श में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप पानी की बचत कर रहे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर
3: जो बारिश का पानी है जी इसको इकट्ठा किया गया है
2: जी, कैसे इकट्ठा करते हैं आप इसको?
3: इसका गड्ढा कर लिया जाए
2: जी और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
3: सिंचाई के उससे उसमें खेत में प्रयोग किया जाए
2: जी। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो सतही सिंचाई करते हैं कि जो कच्ची नालियां हैं उसमें पूरी तरीके से जो पानी है बहता रहता है, आप किस तरीके से करते हैं?
3: हम तो इसी तरीके से करते हैं जी, कम से कम वो हो।
2: चलिए पानी जो है उसका कम से कम इस्तेमाल, यानी प्रति बूंद अधिक उपज जो है वो हम ले सकें। हमारे जो किसान हैं इस दिशा में आके बढ़ रहे हैं और खासतौर से डॉक्टर मनोज कहीं ना कहीं एक किसान को आवश्यकता ये होती है कि हमें मदद किस तरीके से मिल सकती है, और मदद ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अनुदान के रूप में हो बल्कि जानकारी भी अगर उनको मिल जाए, इस इंतजार में किसान रहता है आधुनिक तकनीक की जानकारी उन तक पहुंचे, प्रशिक्षण उनको मिल जाए, तभी शायद हम मान सकते हैं कि वर्षा जल संचयन जो है उसका महत्व और बेहतर तरीके से किसान समझ पाता है।
4: हाँ हमारा किसान बहुत जानकार है बट साथ साथ उसको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता रहती है, तो हमारी कोशिश रहती है बहुत से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र हैं और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हर जिले में एक है, वो वर्षा जल संचयन या वर्षा का पानी का कैसे उचित उपयोग करें या पानी को कैसे उचित तरीके से लगाएं, इस तरह का प्रशिक्षण हमारे किसान भाइयों के लिए करते हैं। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम अभी भी चर्चा में कर रहे थे कि वो पानी को कैसे खेत में अपने रुकें, पानी का आपका जो तालाब है उसकी कैसे सफाई करें, जो नालियां हैं उनका कैसे साफ करके रखें जिससे कि सारा सारा पानी जो आपके तालाब में ही इकट्ठा हो, और फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक विधियां इस्तेमाल करें। और इन प्रशिक्षण को देखकर वो किसान बहुत प्रेरित होते हैं, जैसे नई नई विधियां इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे किसान, जैसे हमारे अभी नू मेवास से जो आपने देखा होगा कि वहां पे उस क्षेत्र में बहुत रूप से फव्वारा सिंचाई होती है, कोशिश रहती है किसान की कि उस पानी को जो इकट्ठा हुआ है वो बहुत ही उचित तरीके से लगाया जाए, जितना पौधे को जरूरत है उतना ही लगाया जाए, ना कि केवल भरा जाए। भरने से सारा पानी भूजल में चला जाएगा, आपकी जो खाद है वो भी बर्बाद होगी। आप अगर फव्वारे से लगाएंगे तो जितना पानी चाहिए उतना ही लगाएंगे, उससे अब आप पानी को चूंकि आपने इकट्ठा कर लिया है और आप उचित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये रहेगी या पानी इतना बचेगा कि वो आपके आने वाले जो समय है यानी रबी फसलों के लिए उस समय बारिश जो कम होती है वहां पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। और ऐसी फसलों को लें जो मौसम की हो, ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में पानी की कम उपलब्धता है और आपने धान की खेती कर रहे हैं, केवल उन्हीं उन फसलों की खेती करें जो आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के अनुसार हो। जैसे अगर पानी कम उपलब्ध है तो कम पानी पीने वाली फसलों का आप उगाएं और कोशिश करें कि जितना बारिश का पानी बच रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि आपका और आपकी क्रॉप अच्छी रहे, आपकी फसल अच्छी रहे।
2: जी बिल्कुल, तो देखिए ना सिर्फ फसल अच्छी रह सकती है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी आर्थिक की अगर हम समझते हैं तो आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है। और ये खासतौर से ज्योति जी अगर देखा जाए, फिर चाहे हम ड्रिप की बात करें या स्प्रिंकलर की बात करें, इनके जरिए भी जो किसान है वो जान चुका है कि कैसे उसको पानी की बचत करनी है। लेकिन जब वर्षा जल संचयन की हम बात करते हैं तो आवश्यकता रहती है उस तरह की तकनीक या जो प्रशिक्षण है वो मिले, तो क्या आपके द्वारा या आपकी संस्था के द्वारा भी इस तरीके से जो जानकारी है वो दी जाती है अलग अलग जगहों पर?
5: हमारा तो एनजीओ इसी के लिए बनाया गया था
2: जी,
5: कि हम हर संभव तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो यू नो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट जैसे हम फार्मर्स के साथ हम मीटिंग्स करते हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम हर संभव प्रयास करते हैं लोगों तक एक ये जागृति लाना कि वर्षा जल संचय जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। दूसरा, कैसे करें, अपने घर में कैसे करें, अपने खेत में कैसे करें, गांव में कैसे करें, शहरी रूप में अगर शहर के आप प्राधिकारी हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम उनकी टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, ड्राइंग डिजाइन देना, और फिर कि आप उसके लिए सरकार में कहां कहां प्राविधान है जिनसे कि आप फंडिंग का सपोर्ट ले सकते हैं और आप कुछ खर्चा खुद करें और कुछ खर्चा सरकार जो है अपनी अलग अलग स्कीम्स के द्वारा आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो हमारा एनजीओ फोर्स जो है, हम गांव में और शहर में हर जगह इसका प्रचार भी करते हैं और मदद भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेन करते हैं, मतलब हर वो काम जो जरूरी है इसके लिए, डेमोंस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए या सपोर्ट क्रिएट करने के लिए, हम हर वो काम करते हैं। और आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहे इसके लिए मोस्ट वेलकम।
2: बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार जो मदद है वो की जा रही है। और वर्षा जल संचयन सिर्फ ये नहीं कि हम जो खेती बाड़ी में जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता वहीं तक, बल्कि हमारे जो किसान हैं इसका इस्तेमाल अपने घर में जो पानी पीने योग्य है उसके लिए भी करते हैं। और खासतौर से यहाँ रामलखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से इनका रुख कर लेते हैं। रामलखन जी, जानना चाहेंगे आपसे, कुछ किसानों को इस तरह की धारणा बन जाती है कि अगर हमने खेत में ज्यादा पानी दिया है तो तभी फसल अच्छी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अगर पानी कम मिलता है तब फसल अच्छी नहीं हो पाती?
3: ज्यादा देंगे तो वो बेकार ही तो जाएगा जी।
2: जी बिल्कुल, बहुत सटीक शब्दों में
3: देखो
2: जी रामलखन जी, बहुत सटीक शब्दों में आपने बात कही कि ज्यादा पानी वो तो बेकार ही जाएगा। खासतौर से यहाँ डॉक्टर मनोज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो कोशिशें वो की जाती हैं, जैसा आपने कहा कि सरकार द्वारा भी, और एक मिशन मोड जो है वो जरूरी हो जाता है, हर कोई पानी बचाने के लिए हम मान सकते हैं कि एक जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन वर्षा जल संचयन में जो भागीदारी है किस तरीके से उसको हम बढ़ा सकते हैं?
4: देखिए, ये सबकी जिम्मेवारी है, ये मतलब चाहे वो शहरी क्षेत्र के नागरिक हों या जो हमारे गांव के किसान हैं, सबकी जिम्मेवारी है कि जो वर्षा का पानी गुजर रहा है और निकल रहा है, क्योंकि हमारा पूरा जो वो पानी का चक्र है हमारे देश का, वो सिर्फ जून जुलाई अगस्त हमारे पूरे मुख्य नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जिससे पानी आता है मानसून से,
2: दक्षिण पश्चिम मानसून,
4: हाँ, जिसे कहा जाता है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में ही बारिश होगी, और उस पानी को किसी तरह भी हमें इकट्ठा करना है। अगर हम जाने देंगे तो वो पानी बहता हुआ नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाएगा, और वो न केवल आपके लिए बेकार है और पूरे क्षेत्र के लिए बेकार हो जाएगा। तो हमारी कोशिश रहे कि या तो हम खेती में उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, नहीं हो रहा है तो हम उसको भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करें, भूजल में किसी तरह उसको बिल्कुल साफ करके या फिल्टर करके उस पानी को उसमें, और हमारे जैसे मैडम ने बताया कि आपको रिसाइकल करें, रिसाइकल करके ही, जैसे आप रसोई में, खेत में और बहुत जगह हम पानी देखते हैं कि आपका जो गंदा पानी होता है उसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके आप अपने, अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो कोशिश करें गार्डन में सिर्फ वो जो रिसाइकल वाटर है वो ही इस्तेमाल करें, आपका जो स्वच्छ पानी आपके नलों में आता है उसको इस्तेमाल ना करें। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे का अगर किसान भाई तैयारी कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं इस समय, वो किसी तरह भी वो समतलीकरण करा लें अपने खेत का, फिर चारों तरफ मेड़ पक्की करें, मैं दोबारा वही बात बता रहा हूं, और जिससे कि वो एक तो पानी कहीं भी रुकेगा नहीं, और वो पानी जितना आएगा वो पूरा पूरा आपके खेत में ही इकट्ठा होगा, और उससे आपकी न केवल फसल अच्छी से रहेगी और आपके लिए वो जितना भी एक्सेस वाटर है या ज्यादा है उसको निकाल के, अगर आप ये देखते हैं कुछ फसलें ऐसी हैं कि ज्यादा बारिश हो गई तो जल निकासी की व्यवस्था करके, बट वो व्यवस्था ऐसे करें कि वो कहीं पे भूजल में जाके जुड़े हो और या आपके तालाब में जुड़े, इसलिए सारा पानी आपका एक जगह इकट्ठा हो सकता है।
2: जी डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है उसमें किसान को इतनी जानकारी नहीं हो पाती, किस तरीके से उसकी जो शुद्धता है या उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं कैसे, क्या एक छोटा सा प्लांट है या तकनीक कोई ऐसी अगर किसान चाहे या कुछ किसान मिलकर अगर इस तरीके से अपनाते हैं तो क्या ये संभव है?
4: बहुत सारी तकनीक आजकल हो गई है जो कि गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए आती है। आपने देखा होगा हमारे गांव में, जो नालियों में इस तरह की कुछ पौधे होते हैं जो जितना गंदा होता है पानी में वो उसको सी वो लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो उसको इस्तेमाल करके भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक तकनीक ऐसी डेवलप करी है जो गंदों का, गंदा पानी जो गांव का होता है चाहे वो शहर का होता है, उसको इकट्ठा करके और उसको ट्रीट करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीट करके उस पानी को आप खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और न केवल, और आपके जो गार्डन हैं उन सब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत साधारण तरीके से आजकल तकनीकें बहुत आ गई हैं जिनको हम इस्तेमाल करके उस पानी को शुद्ध करके और आपके अपने कार्यों के लिए, दैनिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से उसका सदुपयोग हम कर सकेंगे, और लगातार जो किसान है हमारे वो भी इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हरियाणा के एक और किसान है हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम जी मेवात से ही, इनसे आइए बात कर लेते हैं। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत विचार विमर्श में, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से, जी नमस्कार, किस तरीके से आपको लगता है कि जो वर्षा जल संचयन है, जो बारिश का पानी है, इसको हमें बचाना होगा और इसकी भी हर एक बूंद जो है वो कीमती है।
6: देखो सबसे बड़ी बात है, इसको जमीन, जो बारिश का पानी अगर वो जमीन में चला जाए
2: जी,
6: तो उस वो सबसे बढ़िया, उससे हमारा जो भूल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा, जल स्तर है
2: जी।
6: तो जैसे मैंने अपने घर में कर रखा है, जो पहले मेरे बोरिंग था एक, तो मैंने अपने घर का पानी उसमें डाल रखा है बोरिंग में
2: जी।
6: हाँ, तो उससे क्या है कि जो जल स्तर हमारा ऊपर आ जाएगा, खेत समतल होने चाहिए जी
2: जी,
6: जो हमारे खेत है बिल्कुल समतल होने चाहिए, जिससे हमारा खेत जो बारिश का पानी वो हमारे खेत में रुक जाए
2: जी। विक्रम जी, लेकिन आपको लगता है जो बाकी किसान है इस तरीके से जो प्रक्रिया है या तकनीक है इसको नहीं अपना पाते हैं और बारिश का जो पानी है वो बेकार चला जाता है?
6: हाँ बिल्कुल है जी, अभी हमारे जैसे यहाँ है जो फोर्स एनजीओ है जी
2: जी,
6: इन्होंने काफी जो लोगों को जागरूक किया है और इसका काफी असर देखने को मिल रहा है जी।
2: जी जाहिर तौर पर जो असर है वो
6: अब लोग जैसे
2: जी,
6: हाँ जी
2: बिल्कुल,
6: हमारे फोर्स एनजीओ वाले बताते हैं जी, यहाँ लोगों को जागरूक करते हैं, उनका काफी असर देखने को मिल रहा है
2: जी। जी अगर आप बताना चाहें किस तरह का असर आप देखते हैं
6: उसको, जैसे पहले हमारे फ्लड इरीगेशन करते थे
2: जी,
6: तो उसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद था, अब ज्यादातर लोग मिनी स्प्रिंकलर के ऊपर आ गए
2: जी,
6: जिससे हम 90% तक पानी बचा सकते हैं जी।
2: बिल्कुल,
6: दूसरा खेत में गोबर की खाद डालते हैं जिससे पानी खेत के अंदर नमी बनी रहती है जी
2: जी,
6: और कम पानी की जरूरत पड़ती है, और जैसे बताते हमारे जैसे पहले समय समय पर पानी ना देकर लगातार पानी चलाते रहते थे
2: जी बिल्कुल,
6: तो उनको जैसे बताया गया कि समयबद्ध पानी देना चाहिए, जैसे जब जरूरत हो फसल को तो ही पानी दे
2: जी,
6: वरना पानी बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है और उसका फसल को कोई फायदा नहीं होता, नुकसान करता है वो।
2: बिल्कुल, ये बात हर एक किसान तक जानना जरूरी कि जो पानी है अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो वो बेकार ही होगा, फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे फायदा नहीं हमें हो पाएगा। ज्योति जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी अपना जो अनुभव है विक्रम जी हमारे साथ साझा कर रहे थे, किस तरीके से क्या चुनौतियां भी आपको इसमें कुछ नजर आती है कि जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में किसानों को बताया जाता है तो एकदम से तैयार नहीं हो पाते या इस बात को नहीं समझते कि यही पानी है जिसका सदुपयोग हम कर सकते हैं या इसको रिसाइकिल करके आगे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
5: बिल्कुल, यहाँ पर दो तीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपना सर उठाती हैं
2: जी।
5: एक तो यह है कि हमारी मानसिकता ये है कि पानी का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेवारी है, और इसीलिए हर व्यक्ति ये सोचता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो शहरी हो, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये जिम्मेवारी सरकार की है, इसलिए हम इसमें भागीदार नहीं है। दूसरा जो है, लोगों के मन में ये धारणा है, एक गलत धारणा है कि जमीन के नीचे बहुत पानी है, आप जितना भी निकाल दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा और गहरा जाना पड़ेगा, पर मन में ये विचार है उनके कि पानी है और बहुत पानी है, और अगर हम जितना गहरा जाएंगे हमें पानी मिलता रहेगा
2: जी।
5: तो ये दोनों जो, और तीसरा ये है कि लोग आप आसपास देखते हैं कि वो इतना पानी बहा रहा है, ये फैक्ट्री इतना पानी ले रही है, हमारी वजह से पानी का स्तर कम नहीं हो रहा, दूसरों की वजह से कम हो रहा है, तो ये जो ब्लेम गेम है ये एक तीसरी प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर दोष डालता है, अपना जो रोल है उसमें उसको नहीं एक्नॉलेज करता, तो उसमें वो परेशानी हमें आती है जब हम लोगों को जागरूक करते हैं। पर मुझे खुशी है इस बात की कि इन पिछले कुछ सालों में शायद हर तरफ से इतना सुनने में आ रहा है पानी की प्रॉब्लम को लेकर, और लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारत की जो आगे जो बहुत तेजी से भारत देश आगे बढ़ रहा है उसकी तेज ग्रोथ में अगर कोई बाधा है तो वो पानी का बाधा है, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब हम लोगों को समझाते हैं तो लोगों को बात जल्दी समझ में आती है। दूसरा ये है कि मैंने देखा है कि प्योर लर्निंग, तो अगर हमें किसानों को समझाना है तो हमारी की कोशिश ये रहती है कि जैसे आपने अभी विक्रम जी से बात की, रामलखन जी से बात की, तो अब यही किसान जो है यही दूसरे किसानों को समझाते हैं तो हमारी कही हुई बात से ज्यादा उस बात का असर होता है। तो ऐसे ही अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्योर चैंपियंस क्रिएट करें, ऐसे लोग क्रिएट करें जो उन्हीं के कम्युनिटी के हों और वो अपनी सक्सेस स्टोरी उनसे शेयर करें, स्वयं शेयर करें, हमारे माध्यम से नहीं, स्वयं बात करें, और उससे बहुत असर होता है। तो परेशानी है पर मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे विपत्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग भी सही बात सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनको सपोर्ट भी सरकार की तरफ से, गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से बहुत मिल रहा है। तो मुझे आशा है कि अगले 5-10 साल में भूमिका काफी बदल जाएगी।
2: जी बिल्कुल, एक नई भूमिका जो है वो हम देख सकेंगे। जो भूजल स्तर है जो एक लगातार समस्या बनी हुई है उसमें भी सुधार देखिए हो सकता है अगर हम लगातार वर्षा जल संचयन करें। विक्रम जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसा अभी ज्योति जी ने कहा कि जो एक किसान है वो किसान की बात ज्यादा मानता है, आपको भी ऐसी लगता है जब आप दूसरे किसानों को बताते हैं कि वो बारिश का पानी है इसको सजो सकते हैं, इसका संचयन कर सकते हैं, तो आपकी बात ज्यादा मानी जाती है?
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: ये ज्योति जी आपने बहुत कैसे स्वाभाविक बात ये है कि जो किसान है वो दूसरे किसान की बात आसानी से समझता है, जबकि जो विशेषज्ञ हैं या वैज्ञानिक हमारे जब जाते हैं तब वो थोड़ा सा समय जरूर लेते हैं। लेकिन किस तरीके से अगर विक्रम जी की भी हम बात करें, हमने यहाँ कुलदीप जी का उनसे भी पूछा था, विक्रम जी के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे किस तरीके से विक्रम जी हों या दूसरे किसान हों इन्हें किस तरह की जो प्रशिक्षण है क्या वो दिया गया, फिर किस तरह की तकनीक अपनाकर ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो वर्षा जल संचयन है वो किया जा सके या जो पानी है उसकी और किस तरीके से बचत कर सकें?
5: जी, तो हमारा जो हमारे मेरे 2 दशक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आपको शुरू के जो 5-10 आपके लोग हैं जिनके माइंडसेट आपने चेंज करना है उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप केवल उनको बताकर पीछे नहीं हट सकते, आपको हर कदम उनके साथ चलना है, उनको कोई परेशानी आए तो उस परेशानी का हल निकाल के देना है। तो आप देख रहे थे जैसे विक्रम जी जब बात कर रहे थे उन्होंने केवल एक चीज की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ स्प्रिंकलर की बात नहीं की, उन्होंने गोबर की खाद की भी बात की, उन्होंने रूट जोन में वीट की नमी रूट जोन में हो उसकी बात की। अब तो अभी उनके पास समय नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे, पर एक्चुअली क्या है कि हमने उनको जैसे जैसे देखा कि उनके मन में कोई शंका आई तो हमने उस शंका को दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताया, उनकी पैदावार अच्छी रहे उसके लिए उनको जो भी सपोर्ट चाहिए हमने, चाहे वो सरकार से दिलाना हो चाहे खुद देना हो, हमने दिया। तो उसका नेट रिजल्ट यह है कि जब एक या दो बार वो उनको उनकी पैदावार में कोई कमी नहीं हुई, पानी भी बचा और जमीन की क्वालिटी भी हर साल बेहतर से बेहतर होती गई, हमने सॉयल टेस्टिंग भी की तो उन्होंने खुद देखा कि उनकी जमीन की क्वालिटी भी बेहतर हो गई है, भूजल की भी क्वालिटी बेहतर हो गई है, स्तर भी बढ़ गया है, और ये उन्होंने स्वयं जब देखा तो उन्होंने स्वयं ही लोगों से बात करनी शुरू की। तो कहने का मतलब यह है कि जो जब बदलाव लाना है तो उसमें जो पहले कुछ लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं उनके साथ हमें केवल कहकर पीछे नहीं हटना, हमें उनके साथ जुड़े साथ रहना है, उनको सक्सेस बनाना है, सक्सेस से लोग बदलते हैं।
2: जी बिल्कुल, और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि लगातार जो बदलाव है ये हमें दिखता रहे। जैसा आपने कहा कि पिछले 2 दशक की आपकी मेहनत रही है, लेकिन यही मेहनत है जो हम मान सकते हैं कि आने वाली शताब्दियों के लिए भी काफी लाभदायक रह सकती है अगर ये पूरी तरीके से सफल हो जाए। आगे भी आप हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताएंगे किस तरीके से वर्षा जल संचयन का फायदा उनको मिल सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार जल संरक्षण से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल कर रहे हैं किसान साथियों। आशा कर रहे हैं कि आपको ये सारी जो जानकारियां हमें मिल रही है इसका हम सदुपयोग करेंगे, इसका हम हमारे अपने घरों की छतों से जो पानी आता है उससे भी संरक्षण करेंगे, साथ ही जो छोटे छोटे हमारे जो नालों में जो पानी फालतू में बहकर जाता है वहाँ भी हम मेड़ बदान के सहायता से वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि वो जल को हम बचाएं और अधिक से अधिक जल को हम भूमि के अंदर अंदर ले जा सके, जिससे हमारे जो कुएं हैं वो उनमें पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ सके। किसान साथियों चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: वर्षा जल संचयन की किस तरीके से जो बारिश का पानी है इसका सदुपयोग किया जा सकता है, यहाँ डॉक्टर मनोज जानना चाहेंगे आपसे भी हम किस तरीके से जो प्रशिक्षण है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और अभी जिस तरीके से हम मान सकते हैं जो बारिश का मौसम है वो चल रहा है, मानसून जो है हर राज्य में दस्तक दे चुका है, तो क्या ऐसे में भी किस तरह का जो प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जाता है जिससे किसान जागरूक हो सके?
2: हाँ, इस वर्षा जल संचयन को अगर हम एक अकेले रूप में नहीं दे सकते, इसे हमें इंटीग्रेटेड वे में देखना पड़ेगा। उसमें सब चीज है, पानी का संचयन है, संरक्षण है, उचित फसल का चयन है और पानी जमीन की लेवलिंग है, प्रॉपर हमने उचित जो वो है उसकी गुणवत्ता वाले बीज हैं, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट है, इन सबको मिलाकर और साथ साथ उसका उचित प्रशिक्षण समय समय पर उसको किसान भाइयों को, हम लोग भी जाकर किसानों के खेत में भी जाके प्रशिक्षण देते हैं और या उनको भी आमंत्रित करते हैं अपने संस्थानों में या कृषि विज्ञान केंद्रों में, और उनको सारे सामूहिक रूप से अगर हम ये समझा पाते हैं कि ये पानी का असर बहुत लंबे समय तक जाने वाला है, इससे आपको अगर उचित पानी दिया, पानी इकट्ठा किया, संचयन किया, संरक्षण किया और उचित तरीके से उपयोग किया और उचित तरीके से लगाया पानी को और उचित आपने खाद दी, का ज्यादा खाद देने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा पानी देने से कोई फायदा नहीं हुआ, इन सबको सामूहिक रूप से इंटीग्रेटेड वे में अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा किसान ये देखता है कि अंत में उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है, उसे उत्पादकता बहुत अच्छी मिलती है और दाम भी बहुत अच्छा मिलता है और कम दाम में। तो जो हमारे भारत का लक्ष्य है कि हमारी किसान भाइयों की जो है इनकम डबल हो सके, वो उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वर्षा जल संचयन एक बहुत उपयोगी कदम है।
1: जी, यानी कदम एक लेकिन फायदे अनेक, देखिए इसके जरिए हमें मिल सकते हैं। और खासतौर से ज्योति जी, अगर देखा जाए, आप भी लगातार जब किसानों से रूबरू होती होंगी, अलग अलग गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां भी शायद इसी बात की जानकारी दी जाती होगी कि भले ही आपको एक कदम यहां पर उठाना है लेकिन उसके फायदे हमें कितने मिल सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, और मैं एक्चुअली शाहरुख खान साहब की बहुत बड़ी फैन हूं, तो उनकी एक पिक्चर है चक दे जी, और उसमें एक डायलॉग है, वो है कि ताकत से ज्यादा नियत की जरूरत है
1: जी।
3: तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है इस सेक्टर में वो यही रहा है कि जब नियत बन जाती है, जब हमारे किसान भाई ये नियत बना लें कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, अगर इन तीन चीजों के नियत बना लें तो आपकी सरकार, हम जैसे गैर सरकारी संस्थाएं, हर तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं, आपके इस काम में आपकी ताकत बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ नियत बनाइए।
1: जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का एक इस तरह का जो वैश्विक खतरा है वो भी हम देखते हैं और उस वजह से किस तरीके से जहां पर हम लगातार जो बारिश का असामान्य वितरण है वो हमारे सामने भी आता है, क्या ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा चुनौतियां रह सकती हैं और जो समस्या अभी है जो पानी कम होता जा रहा है ये और भी ज्यादा विकराल रूप ले पाएगी?
3: एब्सोल्युटली, ये जो परेशानी है क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ेगी और इसके लिए सबको आगाह होना है। बरसात होगी तो बहुत होगी, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, दरिया सूखेगी, तो इस संदर्भ में और इस चीज से हम आंखें बंद करके नहीं जी सकते
1: जी।
3: तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई और घर में रहने और हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति उसके लिए प्रिपेयर करे, क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ चले, अपने वर्षा जल संचय करें और ताकि जब अधिक बरसात हो तो बह ना जाए, वो आपके पास समेटी जाए, आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाए और जरूरत पड़ने

0: इतनी छोटी जगह में बिना पानी के रहेंगे तो शांति नहीं रह पाएगी। तो अपने घर परिवार को बचाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और अपने बच्चों को नौकरी देने के लिए, अगर आपके पास पानी नहीं होगी तो ना फैक्ट्री चलेगी, ना इंडस्ट्री चलेगी, ना कंप्यूटर बनेगा, कुछ नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए शहरी लोगों की शायद ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, समझ भी है, और उनको न केवल अपने यहाँ पर अपने गांव पीछे जो अपने गांव हैं उनके लोगों को भी पूरा सपोर्ट करना है कि वो हर प्रकार से वर्षा जल संचय करें।
1: और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो आवश्यकता है पानी की वो हम सबकी है, फिर चाहे हम गांव की बात करें, शहरों की बात करें, जो पानी है वो सब जगह एक सा है, उसका जो महत्व है वो एक है। और खासतौर से डॉक्टर मनोज आपसे भी जहां जानना चाहेंगे, लगातार जो जागरूकता है वो फैलाई जा रही है, किस तरीके से पानी की बचत हम कर सकते हैं, वर्षा जल संरक्षण जो है आपने बताया कि किसानों की जो आमदनी है इसके जरिए भी दोगुनी हो सकती है, और किस तरीके से यहां पर अब हमें कदम उठाने होंगे जिससे आने वाले समय में इस तरह की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो हमें नजर ना आए।
2: इसमें हम लोगों का एक आदमी का रोल नहीं है, सरकारी, गैर सरकारी, किसान, शहरी क्षेत्र के नागरिक, हर आदमी का इसमें एक रोल है जो पानी को इकट्ठा करने के लिए और पानी का उचित इस्तेमाल करने के लिए। उसके लिए हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय हो या भारत का कृषि मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे वो नहरी क्षेत्र में अब नहर न बना के अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क बनने की योजनाएं हैं और जैसा बन रहा है, और इन सबको तैयारी करके अगर हम पानी का इकट्ठा कर लेंगे तो उचित उपयोग जरूरी है। उचित उपयोग करेंगे तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, उचित तरीके से उगाएंगे तो हमारी उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी और अपने हमारा गांव और खुशहाल होगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारा देश आप समझ सकते हैं कि कितना तरक्की करेगा। आज इसी उसका स्टार्ट सबसे मुख्य रूप से पानी है। अगर पानी को हम बचा के रखेंगे तो हम ये मान के चलें कि चाहे वो हमारे पास बैंक में कितना पैसा हो, अगर पानी उपलब्ध नहीं है या हमारी जमीन के नीचे पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ाई गई या सतह रूप में हमने पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ाई गई तो ये सारी तरक्की बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरा तो सबसे अनुरोध है, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के नागरिक हों, गैर सरकारी संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं, जो हम लोगों के किसी मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, कृषि के वैज्ञानिक हैं, जो एक एक आदमी काम कर रहा है पानी को बचाने के लिए, उन सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी इस मिशन को हम कामयाब कर पाएंगे।
3: किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपने लगातार जल संरक्षण को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, आपने जाना कैसे आने वाला समय भयानक हो सकता है। किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत आवश्यकता है, हमें पानी के बचाव की आवश्यकता है, ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू अन्यथा पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस पद्धति में कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई हो सके, ऐसी सिंचाई को हमें करने की आवश्यकता है। साथ ही जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने हमें जैसे बताया कि फसलों को पानी की नहीं नमी की आवश्यकता होती है, तो किसान साथियों कहीं ना कहीं हमें इन बातों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास हमारे जितने भी जल स्रोत है उसमें से हम काफ़ी पानी बहाते हैं और पानी का काफ़ी पानी हम बर्बाद करते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें अपने रुख को मोड़ने की आवश्यकता है, हमें यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज़।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है, यानी कि यही जो नाइट्रोजन है, जो दोस्त है, वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
8: नमस्कार,
7: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
9: नमस्कार,
7: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
10: नमस्कार।
7: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
11: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आमतौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है, ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
5: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
8: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है।

0: बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण, जिसे अब कहा जा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
1: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
0: जी बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज, वो कितना है यह स्तर?
2: ये आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है, जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब, जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
3: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है।
0: जी,
3: और
0: जी।
3: खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको प्रभावित करता है।
0: डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यह नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है?
1: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात यह कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसे जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहाँ के सूक्ष्म जीव हैं, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सबका हमको ध्यान रखना है। जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी

0: जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
1: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए कि जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है, तो उससे हमारे में कैंसर और गोइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करे, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है।
2: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया, हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है? साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
1: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है, तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे, जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में, ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
3: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है, और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र है जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान है वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: जी बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है, इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि 4-2-1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर कीटनाशकों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, यानी ये समस्या है। इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4-2-1 मोटे तौर पर, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
3: डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे किसान यूरिया का, इसके लिए अब क्या उन्हें करना चाहिए?
0: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4-2-1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी, वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें, तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि

0: आपको जैसे ये है, जैसे ये है, ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है, पीलेपन में आ रहा है, उसका हरा रंग कम आ रहा है, तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे। अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है, पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा, और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को एक हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं, आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है, यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर। कहना यह भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें यह बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
2: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजनधारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन, इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं, तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है। इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए हैं, आगे भी कर रही है, और किसानों
1: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा, हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
3: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में है, नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है, और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की, और जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है, तो नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है, और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारे सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये
1: कदम उठाया गया है। किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है, तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
2: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है, ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है। और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
2: जी, बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
1: जी,
2: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है, जल में विलेय फर्टिलाइजर है, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं और निश्चित तौर पर पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे इससे पहले, मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें।
3: जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधों को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं।
1: अच्छा।
3: तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
0: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा वो ये होगा जो कि ना, जब देखिएगा अगर जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट, जो कि कह रहे हैं ना सूखा, सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे, उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरक के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता, किसान भाइयों आपकी क्षमता में अधिक सुधार होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
2: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपकी अनाज वाली फसलें, धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
2: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल ले रहे हैं तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारे मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहे, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं?
3: देखिए, जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, तो ये सब चीज ध्यान में रखकर हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम न केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती ये है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
1: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे। तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
4: जी। किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या ये उचित है? आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं, अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
1: जी,
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था उसका थीम था अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है
1: जी।
4: जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी

0: और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू, जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है। और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जाने। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
2: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं, इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब
1: के। डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
0: इसमें, जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस प्रकार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसपे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको, कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को, और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
3: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, इस दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष विशेष महत्व है। स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं, उनका प्रयोग करके और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी

0: पैदावार दे सकते हैं।
1: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM के साथ।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
8: हर घर

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में टैलेंट्स चूज करके लाते हैं जो आपको एक नई प्रतिभा की एहसास कराते हैं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, आज जो गायिका हमारे साथ हैं, उनकी गायकी सुनेंगे आप, उनके बारे में जानेंगे तो अमेज्ड रह जाएंगे। ये हैं मालविका श्याम जी। मालविका जी, हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय देना, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कौन है आप?
1: मेरा नाम मालविका श्याम है
0: जी।
1: मैं पुणे में बॉर्न ब्रॉट अप हूँ एंड वहीं रहती हूँ। मैं एक मलयाली से मेरी मैरिज हुई है, हमारा 22 ईयर ओल्ड बेटा है। हाँ, माय प्रोफेशन, मैं एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, और अब काफी सालों से मैं एक हाउसवाइफ का वेरी फुलफिलिंग रोल अदा कर रही हूँ।
0: शानदार, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड मैम, एक हाउस मेकर होना, एक परिवार को संभालना अपने में बहुत बड़ा काम है। कई बार लोग गलती करते हैं इस चीज को समझने में कि ठीक है ये तो छोटा मोटा काम है, लेकिन अभी आजकल सोशल मीडिया पर भी कितनी मीम्स आती हैं जहां पर ये पता चलता है कि एक होम मेकर कितनी मेहनत करती है, उसमें कितना मैनेजमेंट थॉट जाता है, कितनी क्रिएटिविटी होती है, कितना कंट्रोल चाहिए। बहुत खूब मालविका जी।
1: yes.
0: तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वालों को आपकी ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। बचपन में चलते हैं मालविका जी।
1: हाँ जी।
0: आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं बचपन में एक टीचर बनना चाहती थी।
0: वाओ, ओके। तो फिर उसकी तरफ आपने कुछ कदम उठाए?
1: नहीं, वैसे हम टीचर, मतलब टीचर होते ही हैं एक्चुअली हम, पर अभी मैं, मुझे लगता है टीचर फॉर्मली तो नहीं बनी, पर एक अच्छी स्टूडेंट बन गई हूँ लाइफ की।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। बहुत सोच समझ के, बड़ा ही मजाक मजाक में कह रहा हूं, डिप्लोमेटिक ही सही, लेकिन सब जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। यूं तो हम अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक स्टूडेंट बने ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, और सच्चाई ये है कि जिन्होंने भी सीखना बंद किया वो तभी बूढ़े हो जाते हैं, तभी वो मौत की तरफ चल पड़ते हैं। जब तक हम सीखते हैं तब तक हम जवान रहते हैं, तब तक हम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो दोस्तों, आपने सुना, चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। तो बचपन में अगर हम हैं तो मालविका जी, कोई ना कोई तो आपके फेवरेट टीचर रहे होंगे, कौन थे वो और क्या, किस वजह से वो आपके फेवरेट टीचर थे?
1: हाँ जी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारी एक हिस्ट्री की टीचर थी, मिसेस पीशा रोटी उनका नाम था
0: जी।
1: तो यू नो उनका वे ऑफ टीचिंग वाज रियली फैंटास्टिक। वो लेसन शुरू करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड बताती थी एंड सिनॉप्सिस भी उस चैप्टर में जो था उसका इतना अच्छे ढंग से वो पेश करती थी कि वो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, यू नो। एंड उनके इस वे ऑफ टीचिंग से मैं बहुत ही इम्प्रेस थी। तो मैं जब घर पे हर सब्जेक्ट का मैंने जो सेल्फ स्टडी करते थे ना घर आके हम, तो मैं हर सब्जेक्ट को वो टेक्निक से पढ़ना शुरू किया था एंड आई यूज टू लव स्टडिंग।
0: क्या बात है, बहुत खूब। क्या नाम था उनका? अमिन ने नाम है उनका,
1: पीशा रोटी नाम। हाँ, मिसेस पीशा रोटी।
0: मिसेस
1: पीशा रोटी ऐसा ही नाम था उनका, मिसेस पीशा रोटी।
0: ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना कि इनकी फेवरेट टीचर कौन थी और क्यों, तो चलिए अगला गीत सुनते हैं जो मालविका जी के परमिशन से मैं उनकी इन फेवरेट टीचर को ही डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: बहुत खूब। तो मालविका जी, आगे बढ़ते हैं, आप गायिका हैं, तो आपका पसंदीदा गायक तो कोई होगा, गायिका तो कोई होंगी, कौन है वो?
1: हाँ जी, बहुत सारे लोग पसंद हैं, बट अगर आप खाली एक या दो ही पूछेंगे तो
0: जी,
1: लता
0: एक
1: जी
0: या
1: एंड
0: दो
1: आशा
0: ही।
1: जी।
0: ओके ओके
1: लता जी एंड आशा जी,
0: ओके
1: बिकॉज ऑफ देयर वर्सेटैलिटी एंड मास्टरी ओवर देयर आर्ट, लाइक बहुत मुझे
0: बहुत खूब,
1: इंस्पायरिंग लगते हैं। या
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए एक और गीत सुनाते हैं अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को।

0: बहुत बढ़िया, अब कुछ मजे करते हैं, कुछ फन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसे बनी थी?
1: हाँ जी, एक बार आई रिमेम्बर, आई थिंक हम सेवेंथ में थे, तब मेरी मम्मी गई थी अपनी बहन के घर। आई थिंक हम लोग थोड़ा बड़े हुए बाद फर्स्ट टाइम वो हमको अकेला, मतलब मेरे पापा एंड हम दो सिस्टर्स को छोड़ के गई थी छुट्टियों पर। तो तब मेरे पापा ने एग की डिश बनानी सिखाई थी, सनी साइड अप, जो हम उसको ये भी कहते हैं ना, बुलजाई भी बोलते हैं।
0: जी जी जी,
1: बहुत बढ़िया बनी थी, सिंपल डिश है, मगर पहली बार किया था तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक लग रही थी, उसको ऐसे गिराओ पैन में, उसको ऐसे करो, तो मजा आया था। या
0: लेकिन वो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा?
1: यस
0: जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है, सुन के ही अच्छा लगा कि वो कितनी टेस्टी बनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: मालविका जी, आपको और बेहतर समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी हॉबीज के बारे में हमें बताइए ना। जब भी आपको वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं आप?
1: हॉबी मेरी सिंगिंग, दैट्स माय पैशन आल्सो। या तो मैं पूरा दिन भी गा सकती हूँ, जैसे ही अपने काम वाम खत्म हो जाते हैं तो आई लिसन टू म्यूजिक एंड सॉन्ग मैं सीखने के हिसाब से सुनती हूँ। पहले मैं एंजॉयमेंट के लिए सुनती थी, पर काफ़ी सालों से सीखने के हिसाब से, तो सॉन्ग को के हर एस्पेक्ट को सुन के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, यू नो, अपनी गायकी में कैसे लाना, वो ये चीज़ें मेरी हॉबी हैं। या
0: गाने के अलावा, म्यूजिक के अलावा, संगीत के अलावा कोई हॉबी है आपकी?
1: यस, मुझे डांस भी अच्छा लगता था, बट ड्यू टू सम स्पाइन इश्यूज वो मैं डिसकंटिन्यू, अब मैं नहीं डांस कर पाती हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू मेक ज्वेलरी, पर वो भी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज वो बैठ के वो करना वो अभी पॉसिबल नहीं। सो अभी तो मैं फुल फ्लेश पैशन मेरा सिंगिंग, आई कैन परस्यू चलते फिरते भी।
0: ओके, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बात। तो चलिए एक और गीत सुनवाते हैं हमारे सुनने वालों को।

0: बैठिए तब सुनिएगा।
1: एब्सोल्युटली।
0: तब आप उनको देख भी पाएंगे, उनको सुन भी पाएंगे।
1: यस।
0: अमेजिंग, बहुत खूब दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं।

0: आज तक की डेट में क्या रहा है?
1: एक्चुअली काफी फुलफिलिंग मोमेंट्स बोल सकती हूँ रहे हैं लाइफ में, पर लाइक एक सुपर ड्रामेटिक लाइक यस आई डिड इट जैसा जो मोमेंट होता है
0: जी.
1: ये कॉलेज टाइम का बता सकती हूँ, काफी ड्रामेटिक था. तो मैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन किए थे.
0: ओके.
1: तो या तो हम लोग स्टेट लेवल चैंपियनशिप में खेल रहे थे, तो हम बेल्ट वाइज काफी जूनियर थे, हमारी पूरी टीम एक ही लेवल में थे. एंड हमारी पूरी टीम बहुत स्किल्ड भी थी इवन दो हम लोग जूनियर लेवल पे थे. तो जब स्पारिंग के कॉम्पिटिशन शुरू हुए, दैट इज जो फाइट्स होते हैं, फाइटिंग कॉम्पिटिशन, तो एक टीम थी जिनमें बहुत सीनियर बेल्ट के लोगों को हमारे लेवल के बच्चों के, मतलब जो किड्स थे हमारे लेवल के लोगों के साथ खेलने पर उतारा था लाइक उन्होंने, टीचर ने. तो इट वाज अ चीटिंग, या इट वाज अ चीटिंग गन. तो ये हमारी टीचर को समझ में आया था, बट सब पता था, बट सम हाउ आई डोंट नो व्हाट पॉलिटिक्स इट वाज, मैं तो छोटी थी, मैं नहीं जानती थी, पर अलाउड हो गया था वो. एंड हमारे टीम के एक्चुअली सब लोग एक एक करके सब आउट होते जा रहे थे. मेरा टर्न आने तक लाइक मैं सबका ये ऑब्जर्व करके सम हाउ आई हैड, मतलब मेरा फोकस मैंने बनाया था एंड मैं 5 राउंड्स जीती थी. एंड वो 5 राउंड्स के बाद मैंने अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीता था.
0: ओह माय गॉड.
1: बट या मुझे काफी चोट भी आई थी, एकदम जैसे फिल्मी स्टाइल में वो सब मैचेस हुई थी. बट वो जो स्टार्ट टू सी माय टीचर एंड लाइक यू नो माय टीम सो हैप्पी, इट वाज लाइक
0: क्या बात है. काश, हाउ आई विश मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पाता कि आपकी अगर वो बाउट्स की उस फाइट की हम लोग वीडियो देख पाते तो शायद हम लोग एक लाइव मूवी देख पाते. क्या बात, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली फैंटास्टिक, बहुत खूब. तो दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में.

0: बहुत खूब। एक और फन क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन, क्रिएटिव। अगर आपको मौका मिले तो अंतरिक्ष से आए हुए किसी प्राणी से, किसी एलियन से मिलना चाहेंगी आप, और क्या पूछेंगी उससे?
1: हाँ, एलियन है। एवेंजर्स करके जो मूवी है उसमें लोकी करके कैरेक्टर है,
0: yes.
1: तो बहुत ही पसंद आए, एंड जिस ढंग से उन्होंने उस मूवी में उसको उनको पेश किया उनका कैरेक्टर,
0: okay.
1: तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को कूल रखते हैं।
0: wow.
1: फिर शैतानी में भी उनके एक प्यारापन होता है, एंड ही इज वेरी ह्यूमरस। तो पूछना तो मैं पता नहीं क्या चाहूंगी, वो मुझे नहीं समझ में आता, पर मैं उनके साथ रहना चाहूंगी एंड देखूंगी कि वो किस ढंग से उनका मतलब यू नो किस ढंग से वो सब चीजें डील करते हैं, उनका नजरिया, वो somehow I would like to experience that in his presence.
0: Okay, fantastic. Loki the demigod. क्या yeah. बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना, एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। अब ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन भी हो सकता है और मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका जवाब जरूर दें। आपके जीवन में आज तक की डेट में सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला, गिफ्ट आपको क्या मिला?
1: मेरे लिए सबसे प्रेशियस गिफ्ट है मेरी लाइफ, मेरे माता पिता ने मुझे दी है। एंड इस लाइफ के कारण मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले चुकी हूँ एंड ग्रोथ हो चुकी है विद दोज एक्सपीरियंसेस, लाइक वेरी थैंकफुल टू गॉड माय पेरेंट्स।
0: ओके ओके, अमेजिंग, फैंटास्टिक। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुन लें।

0: और अब हम उस अपने प्रोग्राम के उस जगह पर आ गए हैं मालविका जी, जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए ना।
1: जी, सुनने वालों से कहूंगी कि हमने माइंडफुली एंड रिस्पॉन्सिबली हम लाइफ जिए, खुद के लिए और दूसरों के भी लिए। एंड बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे सुना, राज जी, समीर जी, आपका, रेडियो टेंटिया सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर दिस, इस मौके के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर मीना को थैंक यू, बिकॉज उन्होंने एनकरेज किया मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर।
0: अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना, एंड थैंक यू सो मच मालविका जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत की, आपके बारे में हमने जाना, आपके गीत सुने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: थैंक यू समीर जी, थैंक यू।
0: बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ, सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड आपके सबसे प्यारे प्रोग्राम आज के कलाकार का मैं लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आपको बहुत बहुत खुशी होगी, बहुत मजा आएगा। आज के कलाकार को, आज की प्रतिभा को, आज की गायिका को जानकर, उनकी बातें सुनकर और उनके गीत सुनकर। हमारे साथ आज अनीता घोष मैम हैं। बाकी जैसा मैं हमेशा करता हूं, और हमारे आज के कलाकार का वो एक सिग्नेचर है कि हम चाहते हैं हमारे कलाकार खुद अपने बारे में बताएं, तो हमें ज्यादा डिटेल ज्यादा प्यारे तरीके से मिलती हैं। अनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे परिवार वाले और जितने भी आज लोग सुन रहे हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अनीता जी, मुझे बताइए कहाँ हो आप, क्या करती हो आप, अपनी पूरी जिंदगी क्या किया आपने, क्या आप एक होम मेकर थी, और अभी कहाँ रहते हो आप?
1: मैं मुंबई में कांदिवली में रहती हूँ।
0: बहुत बढ़िया। और आप मतलब कोई प्रोफेशन में हो, कोई टीचर हो या होम मेकर हो, क्या करते हो आप?
1: मैं पहले टीचर थी, उस दिन मैंने टीचिंग किया, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, बच्चों के साथ मैं जॉब और घर का बैलेंस नहीं कर पाई, तब मैं टीचिंग छोड़ दिया और होम मेकर बन गई।
0: बहुत बढ़िया।
1: और मेरे बच्चों को अच्छा से पाल पोष के बड़ा किया।
0: क्या बात है, दैट इज अमेजिंग। मैं सच बता रहा हूँ अनीता मैम, इससे बड़ा काम सच में इस दुनिया में कोई होता नहीं है। मैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू सारी महिलाओं को करवद रिक्वेस्ट पेश करते हुए कहना चाहूंगा कि घर संभालना इस दुनिया का सबसे भारी काम होता है दोस्तों, और अनीता मैम ने उसको बेखूबी किया। तो अनीता मैम, मुझे ये बताओ कि आपके गाना गाने की शुरुआत कैसे हुई, ये संगीत का शौक, संगीत से मोहब्बत, संगीत से प्यार आपको कब से हुआ?
1: मैं एकदम बचपन से ही संगीत से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरा नाना रेडियो आर्टिस्ट थे, वो क्लासिकल आर्टिस्ट थे, और उसके बाद मेरा मामा भी क्लासिकल गाते हैं, और उसके बाद मैं बचपन से ही सीखी हुई हूँ। नाना के साथ मेरा शुरू हुआ है सारे गामा सीखने का, फिर उसके बाद एक म्यूजिकल स्कूल में मुझे डाला था, क्योंकि नाना थोड़ा हाई लेवल में सिखा रहे थे।
0: ओके।
1: तो काफी दिन मैंने वो म्यूजिकल स्कूल से सीखा हूँ, और उसके बाद फिर नाना के पास गई और उनसे मैंने क्लासिकल सीखा, लेकिन बाद में वो चर्चा थोड़ा बंद हो गया था बीच में। अभी क्या है, अभी बच्चे बड़े हो गए, मैं फ्री हो गई हूँ, तो अभी अच्छा से चर्चा कर सकती हूँ गाने का।
0: ओके। तो लेकिन मुझे ये बताइए ना मैम, आपने नाना जी से सीखा था, तो वो कहाँ पर सिखाते थे, यही मुंबई में या कहीं और?
1: नहीं नहीं नहीं, कोलकाता में।
0: अच्छा अच्छा। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के तो कल्चर में, संस्कृति में ही रविंद्र संगीत रहता है, तो संगीत के तो बहुत बहुत नजदीक हैं आप लोग, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने जाना कि अनीता मैम कहाँ हैं, क्या करती हैं और किस तरह से वो संगीत से जुड़ी हुई है, तो चलिए शुरुआत करें इस प्यारे से प्रोग्राम को अनीता मैम के ही गाए हुए इन गीतों से। तो आइए ना सुनते हैं ये प्यारे से गीत।

0: बहुत सुंदर अंता जी, बहुत ही प्यारी शुरुआत, बहुत ही प्यारा आरंभ। अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आपके संगीत के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और फिर कोशिश करेंगे आपसे आपके बारे में बात करने की। तो पहले संगीत, किस तरह का संगीत पसंद करती हैं आप? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके तो डीएनए में, आपके तो जीन्स में, आपकी तो संस्कृति में रविंद्र संगीत या प्योर क्लासिकल संगीत घुला मिला है। फिर भी आपने जितना भी सीखा, आपकी खुद की कुछ तो पसंद होगी। किस तरीके का संगीत आपको पसंद आता है? क्लासिकल, फोक, बॉलीवुड, क्या चीज?
1: मुझे सेमी क्लासिकल जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है वो मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमेशा क्लासिकल मुझे इतना पसंद नहीं आता है कभी भी।
0: वेरी नाइस।
1: तो ये गाना मैं बचपन से ही मॉडर्न एज सब म्यूजिक गाना गाती हूँ। नाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे यही पसंद है, सेमी क्लासिकल मेलोडियस सॉन्ग्स जो है ना बॉलीवुड का, ये मुझे पसंद है।
0: ओके, और कौन से समय के आपको पसंद होंगे? मतलब 60s के कह लूं या आज की 20s के, 2000s के, कौन से?
1: नहीं, मुझे 80s 90s के गाने पसंद आते हैं बहुत।
0: ओके, 80s 90s के। और कौन फीमेल सिंगर हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं?
1: देखिए, लता जी वो तो कोई चॉइस के बाहर ही है, वो तो है सूरों की रानी। उनको उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे भी मुझे पसंद है बहुत आशा जी को, आशा ताई मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद अलका याग्निक,
0: अलका याग्निक
1: बहुत पसंद है।
0: ओके,
1: यस,
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाना आपने कि अनीता जी बिल्कुल सोबर तरीके से, बिल्कुल पवित्र तरीके से, मासूम तरीके से संगीत को अपने पास रखती हैं और वो संगीत के पास रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए उनके मासूम से इन दो गानों का आनंद उठाएं और फिर वापस आए अनीता जी के पास, सो हम उनको और जान सकें। पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत सुंदर अनिता जी। चलिए अब थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं। यूं तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई अनिता जी? आपका नेटिव टाउन?
1: कोलकाता में।
0: कोलकाता में। और शुरुआत की पढ़ाई लिखाई भी उधर ही हुई होगी?
1: उधर ही हुई है।
0: ओके, तो अपने बचपन को जरा याद कीजिए और हमें बताइए ना, कोई एक बहुत ही प्यारी सी शैतानी, कुछ ऐसी शरारत आपने की हो जो आपको आज तक याद हो, मासूम सी, जिसमें किसी का नुकसान ना हुआ हो, कोई भी शैतानी हमें बताइए ना।
1: बचपन की शैतानी तो बहुत सारे रहते हैं।
0: तो हमें अपने बचपन में ले चलिए ना, हमें छोटी वाली अनीता से मिलाइए ना।
1: वो बचपन में स्कूल में क्या था, एक नए टीचर आई थी, तब हम 7th स्टैंडर्ड में थे। नए टीचर आई थी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक तो नए है और बहुत खरोस थी। और
0: आपने ये डिसाइड कैसे कर लिया कि वो खड़ूस है?
1: आके हमें डांटने लगे ना, नाम पूछा और डांटने लेना, ये टीचर है, थोड़ा सॉफ्टली पूछना चाहिए था।
0: अच्छा, अच्छा,
1: और बचपन में ऐसा होता ही है ना, नए कोई आए तो उसके पीछे थोड़ा पड़ जाओ। तो जब बोर्ड में लिख रहे थे, पीछे से कोई ना कोई पेंसिल रबर उनके पीठ में फेंक रहे थे। जब भी पीछे मुड़ के देखे तो सब चुप। ऐसे करते करते बहुत परेशान हो गई थी वो टीचर। फिर हम सब को लेके ऑफिस रूम में लेके गए और पनिशमेंट मिला था हमें। वो मुझे आज तक पसंद है।
0: आप सोचो यार दोस्तों, मतलब ठीक है, कितने छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन ये मैसेज जो है ना, ये संदेश सारे टीचर्स को है कि इतने छोटे बच्चे भी पहचान जाते हैं कि वो टीचर अच्छी है या खड़ूस। तो क्या आप सब लोग खड़ूस टीचर बनना चाहेंगे? बच्चे मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, आप उनसे कैसे प्यार से बात करोगे, कैसे उनको अपनाओगे, ये कहानी से हमें ये पता चलता है। बहुत सुंदर।
1: नहीं, और एक बात है, जब नए किसी से हम मिलते हैं ना
0: जी,
1: तब हमें थोड़ा सॉफ्टली
0: बातचीत
1: करना चाहिए। शुरू में अगर एटीट्यूड दिखाए तो लोग पसंद नहीं करेंगे ना। और छोटे बच्चे हो तो अलग ही बात है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। दोस्तों हमारे बीच में जो भी टीचर्स हैं, मेरी वाइफ भी टीचर हैं, हम सब लोगों को एक संदेश है, इतने छोटे मासूम बच्चों के साथ तो हमारा व्यवहार कुछ अलग ही होना चाहिए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए ये प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं अनिता जी के ही गाए हुए, और फिर वापस आएंगे इसी तरह की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए।

0: बहुत खूब अनीता जी, प्यारे प्यारे गीत और प्यारी बातें। चलिए अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए। आप कोलकाता से पढ़ाई लिखाई करके जब मुंबई आ गई, और आपने बताया कि गीत संगीत तो आपके आसपास हमेशा से ही था, तो आपको
1: बिल्कुल
0: गाने के लिए, आप गाएं इसके लिए किसने प्रोत्साहित किया, वो कौन थे? हो सकता है कोई मित्र रहे हों, कोई सहेलियां रही हों, या माता पिताजी रहे हों, या कोई भाई बहन, कोई कजिन रहे हों, वो कौन थे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि नहीं अनिता जी आपको गाना चाहिए? कौन थे वो, उनके बारे में बताइए ना।
1: वो मेरी मम्मी थी। वो मम्मी हमेशा चाहती थी, बचपन से गाना सीखने के पीछे उनका ही इंटरेस्ट था। वो खुद कभी गाना नहीं गाए, लेकिन हमेशा चाहती थी मैं गाना गाऊं। और जब शादी के बाद बच्चे हो गए, गाने में थोड़ा ढीला पड़ गया, वो हमेशा बोलती थी हारमोनियम निकालो गाना गाओ। लेकिन मैं तब कभी नहीं करती थी, क्योंकि हारमोनियम निकाल के गाना गाने को बहुत कंटा लाता था मुझे। तो अभी लगता है कि मैं गाना गाती हूँ तो अगर मम्मियां जिंदा होती तो कितना खुश हो जाती
0: जी। ओके ओके ओके। तो दोस्तों ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल और इमोशनल पॉइंट है कि अनिता जी की माता जी उनको हमेशा प्रोत्साहित करती रही। उनके अलावा अनिता जी, उनके अलावा किसने प्रोत्साहित किया आपको, और किसने?
1: और किसी ने नहीं, वो मेरा ही इंटरेस्ट है गाने में।
0: ओ,
1: मेरा खुद का इंटरेस्ट है, उसमें ही मैं करती हूँ।
0: ओके ओके ओके। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि फोकस्ड एक अप्रोच है एकदम। लेकिन दोस्तों जानने की कहानी ये है कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो हमें सही राह एक बार दिखाता जरूर है, बाकी फिर हम पर निर्भर करता है हम उस राह को पकड़े और आगे चले। चलिए इस बात पर थोड़ा सा आगे चलते हैं और इन गीतों का आनंद उठाते हैं। अनिता जी ने बहुत मेहनत से हमारे लिए इनको रिकॉर्ड किया, पेश करता हूं।